आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 अगस्त 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। सुबह के 6 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने

0: वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जाँच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं और लीजिए अब आपको सुनाते हैं आज का चिंतन। चिंतन का विषय है स्वाध्याय।

सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ। हम कितने भी ज्ञानी ध्यानी हो जाएं, कुछ न कुछ सीखने समझने की गुंजाइश सदैव बनी रहती है। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। निरक्षर लोग भी ज्ञानी बन सकते हैं, बशर्ते वे निरंतर सीखने का अभ्यास करें। हम जब छोटे होते हैं, अक्षर भी ठीक से नहीं लिख पाते, तब निरंतर अभ्यास करवाए जाने के कारण हम अक्षरों को लिखना सीखते हैं। उसके बाद लिखे हुए वाक्यों को पढ़ना सीखते हैं। धीरे धीरे हम स्मृत होते चले जाते हैं। जो लोग सीखने की दुनिया से दूर रहते हैं, वे जीवन भर निरक्षर बने रहते हैं। हमें सीखने से ही आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। गुरु हमसे बड़ा हो यह जरूरी नहीं, हमसे गुरु छोटा भी हो सकता है। जो हमें बेहतर गुरु सिखाए वह हमारा गुरु, फिर चाहे वह छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। बस सीखने की ललक होनी चाहिए। हमारे माता पिता ने बचपन से ही सीखते रहने के जो संस्कार दिए, वे अब तक हमारे काम आ रहे हैं। माता पिता के संस्कारों के कारण ही आज भी हम सीखने में परहेज नहीं करते, समय समय पर तकनीकी जानकारी हासिल करते रहते हैं। तो चलिए आज हम सब मिलकर इस सुप्रभात वेला में संकल्प करें कि हम नित्य कुछ नया सीखेंगे।

0: समूसौर में देशगान के साथ ही वंदना का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। सुबह के 6:30 होने को है। लीजिए अब आपको सुनाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित रामचरितमानस गान की 144वीं कड़ी। गायक है सुरेश वाडकर, संगीतकार सतीश भाटिया।
1: एपिसोड नंबर 144 144।

राम राम की रट लगाते हुए दशरथ जी उस पक्षी की भांति बेहाल हो रहे हैं जिसके पंख काट दिए गए हों। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य की भांति राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंखध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा विरुदावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मान तक पीड़ा देने लगी। राजद्वार पर मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहां कैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए। मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ, सोच से व्याकुल राजा यूं पड़े थे जैसे जल से उखड़कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब समाचार पूछना। किसी कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर चले।

अभी आपने सुना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित श्री रामचरित मानस गान की 144वीं कड़ी। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल। सुबह के 6:40 हो रहे हैं और आइए अब आपको जानकारी देते हैं आज प्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों की। सुबह 6:45 पर करसारी बात कार्यक्रम प्रसारित होगा। वार्ता होगी आंवलों में संरक्षण कार्य। 7:00 मधु खंडेलवाल का कविता पाठ प्रसारित किया जाएगा साहित्य धारा में। 8:45 पर कार्यक्रम झलकी आत्मविश्वास प्रसारित होगा।

सुगम संगीत का कार्यक्रम श्रोता हमारे केंद्र से सुन पाएंगे सुबह 9:15 पर, दोपहर 12:10 पर और दोपहर 3:30 पर।

शाम 7 बजे प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम में चर्चा होगी उद्यानिकी में पादप वृद्धि नियामकों का प्रयोग। वार्ताकार होंगे राकेश कुमार शर्मा। सात बजकर 30 मिनट पर खेतीबाड़ी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। बातचीत होगी बार बार गाय भैंस का फिरना, कारण और निवारण। 8 बजे संसद की साप्ताहिक समीक्षा प्रसारित की जाएगी।

0: इसके अलावा स्पॉट स्कैन कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा और राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती भी हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा रात 9:30 पर। 10 बजे प्रसारित होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रमों की कार्यक्रम रूपरेखा में। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में सुनिएगा कर सारी बात कार्यक्रम।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल। सुबह कर 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कर सारी बात।
4: कर सारी बात सुनवाड़ा सगड़ा श्रोतावा ने आशा धाबाई का घना बहुत राम राम सा। श्रोतावा आज के कर सारी बात में आपा बात करेला आवड़ा की खेती में संरक्षण कार्य की। काश्तकार भाया आप सभी जानो छो कि आवड़ो व्यवसायिक दृष्टि से खासो महत्व राखे छे। इको फल स्वाद में अम्लीय और कसेलापन लिया हुआ होवे छे, जिके मायने विटामिन सी चोखी मात्रा में पायो जावे छे और इको ज्यादातर उपयोग आपा चटनी और मुरब्बा का रूप में करा छा। आयुर्वेद और यूनानी दवाया में भी इको खासो प्रयोग करो जावे छे। काश्तकार भैया बात करा अबार में तो सर्दी के मायने आवड़ो सेहत के लिए खूब ही गुणकारी होवे छे। आओ सा बात कर लेवा चा आवड़ा की फसल से चोखो उत्पादन लेबा के ताई आपा कुण कुण से आशा काम करा, किन तरीका से आवड़ा की जो फसल छे आवड़ा की जो खेती छे उमे संरक्षण कार्य करा जिसो की आपना जो आवड़ा को उत्पादन छे वो काश्तकार भैया ने भरपूर मात्रा में मिले और वानवा की मेहनत को पूरा फायदो मिल सके। काश्तकार भाया आप चौकी तरह से जानो छो कि कोई भी फसल में अगर संरक्षण कार्य पूरी तरह से कर लियो जावे तो आप वो फसल से चोखो उत्पादन ले सका जा। छोटी छोटी पर घनी मोटी बातें है जो कि फसल संरक्षण में जरूरी होवे छे। जिया कि फसल के मायने लागवाड़ा जो प्रमुख कीट छे जो प्रमुख व्याधियां छे वहां से की तरीका से आप अपनी फसल ने बचावा सुरक्षित रखा जिसो की उत्पादन भी सुरक्षित लियो जा सके। सबसे पहली बात करा छा आंवड़ा के मायने प्रमुख कीटा की, तो छाल भक्षक जो कीट होवे छे वो आंवड़ा की फसल ने खासो नुकसान पहुंचावे छे। इता ही समझदारी यही छे कि आपा समय रहता इको नियंत्रण कर सका। यो एक हानिकारक कीट छे और कीट आंवड़ा को जो पेड़ होवे छे उनकी छाल ने खावे छे और छिपबा के लिए डाली के मायने गहराई तक सुरंग बना लेवे छे जिके फलस्वरूप जो पेड़ की डाली होवे छे वह सूख जावे छे कमजोर हो जावे छे और फिर पूरो जो आंवड़ा को पेड़ छे वो ही नष्ट हो जावे छे। इका नियंत्रण के ताई काश्तकार भाया सूखी जो पत्तियां और शाखावां होवे छे वाना आपाने काट देनी चाहिए और काट जड़ा देनी चाहिए। एंडोसल्फान 35 EC 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनार शाखावां और डालियां पर छिड़काव करनी चाहिए और जो सुरंग यो कीट अंदर बनावे छे उस सुरंग ने अच्छी तरह से साफ कर उनके मायने पिचकारी की सहायता से 305 ml मिट्टी को तेल हर एक सुरंग के मायने डाल देनी चाहिए या फिर फाहो बनार सुरंग के अंदर रख देनी चाहिए और बाद में सुरंग ने ऊपर से गीली माटी से बंद कर देनी चाहिए। इन तरीका से अगर आप यो कारगर उपाय अपनावेला तो यो जो छाल भक्षक कीट छे इसु काफ़ी हद ताणी नियंत्रण आपने आंवला की फसल में आपा कर सकेला और उत्पादन चोखो प्राप्त कर सकेला। प्रमुख कीटा के बाद में अगर बात कर लेवा कि प्रमुख असी कुण कुण सी व्याधियां छे जो कि आंवला का जो वृक्ष होवे छे वाने नुकसान पहुंचावे छे तो आवसा जाना चा आंवला में रोड़ी रोग जिन्हें आप रस्ट का नाम से भी जाना चा वो भी खासो नुकसान खासकर उदयपुर संभाग में यो रोग बत्ती मात्रा में आ जावे छे। इका प्रकोप से अगस्त महीना में आंवला की जो पत्तियां छे वहां पर रोड़ी का रूप में धब्बा बनवा लाग जावे छे। पत्ता पर काला धब्बा बने छे जो कदे कदे पूरा फल में भी फैल जावे छे। रोगी फल पकबा के पहले ही झड़ जावे छे जिसू की काश्तकार भाई ने आंवला को उत्पादन खूब प्रभावित करे छे। वहां को उत्पादन खूब कम होवे छे और आर्थिक हानि होबा की संभावना भी बनी रहे छे। इताई काश्तकार भाई जरूरी छे कि आपकी आंवला की जो फसल छे उन्हें रोड़ी रोग यानी कि रस्ट रोग से नियंत्रण कर ले। अब बात जब नियंत्रण की चाल रही छे तो आपने बता देवा कि नियंत्रण के ताई आपने करनू काई छे। रोड़ी रोग यानी रस्ट से नियंत्रण के ताई बेलीटोन 1 ग्राम या घुलनशील गंधक या फिर क्लोरोथानेनिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का हिसाब से 3 छिड़काव जुलाई का महीना में 15 से 30 दिन का अंतर पर करनी चाहिए। नियंत्रण ताई बेलीटोन 1 ग्राम या घुलनशील गंधक या फिर क्लोरोथालीन 2 ग्राम प्रति लीटर का हिसाब से छिड़काव कर जुलाई महीना में 15 से 30 दिन का अंतराल पर अगर दोहरावेला तो फड़ा ने रोग से आप लगभग पूरी तरह से नियंत्रण कर पावेला। बात कर लेवा छा फल सड़न की। ई रोग से फड़ा पर भूरा रंग का धब्बा पड़ जावे छे जो बाद में आंवड़ों को जो फल छे उन्हें सड़ाबा लाग जावे छे। तो काश्तकार भाया ई को नियंत्रण करबो खासो जरूरी छे। अब नियंत्रण के ताई आपने काई करनो छे। नियंत्रण के ताई आपने मैन को जेब 2 ग्राम प्रति लीटर का हिसाब से छिड़काव करनी छे जिसू की आपा फल सड़न रोग से आपना आंवड़ा की जो फसल छे उन्हें बचा सका। इके बाद में बात कर लेवा चा आंतरिक काला धब्बा रोग की। यो बोरोन की कमी से हो जावे छे और आंवड़ों का जो फल हो छे उन्हें माइनस कालो कर देवे छे। इका नियंत्रण के ताई 6 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी का हिसाब से छिड़काव करनी चाहिए। और अगर लागे कि एक बार छिड़काव से नियंत्रण कौन हुयो तो फिर से आपका हिसाब से इस छिड़काव ने 10 से 15 दिन के मायने एक बार फिर से दोहरा लेनी चाहिए। इसके साथ साथ ही गाल कीट यो भी आंवला की फसल ने खासु प्रभावित करे छे। ई कीट को प्रकोप होबा से आंवला की जो टहनिया हुए छे उनका आगे को जो भाग छे यो गाल की जिया फूलर रूप ले लेवे छे जिमे कीट की लट अवस्था पाई जावे छे। इसू पौधा की जो पड़वार छे वा रुक जावे छे। कहबा को मतलब यह छे कि गाल कीट को प्रकोप अगर आपका आंवला का जो पौधा छे वहां पर हो जावे लो तो वहां पौधा की बढ़वार रुक जावे छे। और जब बढ़वार रुक जावे ली तो उत्पादन ने तो प्रभावित करे ली। इतना ही जरूरी छे कि टाइम रहता आपा ई गाल कीट को नियंत्रण कर लेवा। अब बात करा छा कि नियंत्रण कताई काश्तकार भाई करे काई। तो काश्तकार भाया गाल कीट का नियंत्रण कताई जिस आपने लागे कि नियंत्रण हो गो छे तो आप गाल कीट से ग्रसित जो टहनिया हुए छे वाने काट दो और काटर या तो जड़ा दो या फिर गाड़ दो और मोनोक्रोटोफॉस या एंडोसल्फान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनार 15 दिन का अंतराल पर 3 बार छिड़काव जरूर करनो छे। याद रखो सा एक बार छिड़काव कर रही आपने रुकनों को ने 3 बार इस छिड़काव ने 15-15 दिन का अंतराल पर जद आप दोहरावेला जद ही पूरी तरह से गाल कीट को नियंत्रण आपकी आंवला की फसल पर कर पाओला। अब काश्तकार भाया थोड़ी सी बात कर लेवा छा फला की तुड़ाई और उपज की। कलमी आंवलों को पेड़ 4 से 5 बरस को होता फल देबा लाग जावे छे। इका फूल मार्च और अप्रैल में आवे छे और इका फल नवंबर से दिसंबर में तोड़बा लायक हो जावे छे। एक पूर्ण विकसित कलमी आंवला को पेड़ 50 से 100 किलो ताई पैदावार दे देवे छे। तो काश्तकार भाया आप अगर उन्नत किस्मा को चुनाव करो समय पर बुआई करो पौध लगावा की जो विधियां छे उनको पूरो ध्यान रखो अंतर शस्य क्रियाएं टाइम पर करो खाद और उर्वरक को पूरो ध्यान करो और साथ ही साथ फसल ने कीट और बीमारियां और व्याधियां से पूर्ण रूप से वहां को संरक्षण करो तो आप जो भी फसल ले वो उनमें निश्चित तौर पर पूरो और चोखो उत्पादन ले पाओला। काश्तकार भाया दी गई जानकारी कृषि विभाग द्वारा प्राप्त संदर्भ सामग्री पर आधारित छी।
0: आपने सुना कर सारी बात कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर नाथद्वारा करौली भरतपुर झुंझुनू अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 6:55 होने को है और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकर न्यगादीत् यत् पाकिस्तान देशेन सह भारतस्य सम्बन्धाः केवलं आतंकवाद मुक्तौ एव अग्रेसारयितुं शक्यन्ते। अद्य लोकसभायाम् एकस्मिन् लिखितोत्तरे डॉ जयशंकर स्पष्टीकृतवान् यत् पाकिस्तानः अद्यापि अतिसीम्नि भारतं विरुध्य आतंकवादं अस्त्ररूपेण उपयुङ्क्ते। मन्त्री अब्रवीत् यत् पुलवामा आतंकी आक्रमणानन्तरं भारतेन पाकिस्तानदेशाय प्रदत्तम् अति वरीयान् राष्ट्रस्य इति प्रत्याहृतम्। सहैव ततः आयातितानां सर्वेषां वस्तूनामुपरि सीमाशुल्कं 200% यावत् वर्धितम्। भारतं भारतीयानां जलपोतानां नाविकानां च सुरक्षां संरक्षां च प्रति अत्यधिकं प्राधान्यं ददाति। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् एतत् संसूचितवान्। सः अवोचत् यत् खातीक्षेत्रेषु स्थिताः सर्वे भारतीयोपक्रमाः सम्बद्धदेशानां पत्तनपोत परिवहन जलमार्ग मन्त्रालयेन सह निरन्तरं सम्पर्के सन्ति। सः अवोचत् यत् भारतम् अन्ताराष्ट्रिय जलमार्गेषु सुरक्षितस्य निर्बाधस्य च नौसञ्चालनस्य तथा वाणिज्यस्य अबाधित प्रवाहस्य निरन्तरं समर्थनं करोति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य धारा।
2: साहित्य धारा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मधु खंडेलवाल से कविता पाठ।
3: आकाशवाणी के सम्मानित श्रोता और साहित्य प्रेमी साथियों, आप सभी को मेरा सादर रिमझिम वाला प्रणाम। सावन केवल वर्षा की ऋतु नहीं बल्कि भारतीय संवेदनाओं का सबसे भीगा हुआ अध्याय है। ये वो मौसम है जब धरती हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है, बादल प्रेम के गीत गुनगुनाते हैं, पपिये की पुकार विरह की पीड़ा जगाती है और झूलों की मधुर थिरकन मन को बचपन की गलियों में यूं चुप कैसे लेकर चली जाती है। इन सावन की फुहारों में आइए ना इस बरसात के मौसम में सुनते हैं कुछ कविता और गीत। मैं डॉक्टर मधु खंडेलवाल, तो आइए मैं पहले आप सबको सुनाने जा रही हूँ एक बरसात पर गीत। लगता है मोहब्बत की शुरुआत का मौसम, लगता है मोहब्बत की शुरुआत का मौसम, आ जाओ सनम आ गया बरसात का मौसम, आ जाओ सनम आ गया बरसात का मौसम। कहना है जो आँखों के इशारे से कहो तुम, कहना है जो आँखों के इशारे से कहो तुम, बारिश है नहीं आज सनम बात का मौसम। देखिए गुजारिश है, वो सामने भीगे हुए पानी में खड़े हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है श्रोताओं, वो सामने भीगे हुए पानी में खड़े हैं, काबू में भला कैसे हो जज्बात का मौसम, आ जाओ सनम जिद छोड़ दो।

आया मुलाकात का मौसम, आ जाओ सनम। और देखिए, दिल लेके सनम दर्द दो या दिल मुझे अपना, दिल लेके सनम दर्द दो या दिल मुझे अपना, बीघा हुआ आया है यह सौगात का मौसम, आ जाओ सनम आ गया बरसात का मौसम। और श्रोताओं, आप जानते हो जब सावन की रिमझिम हरियाली, प्रेम और इस आत्मीयता में जब कुछ प्रेम घुलता है, बूंदों का शोर आता है और हवाएं जो गुनगुनाती हैं, तो मैं कुछ गीत आपके सामने पेश कर रही हूँ। काश कोई बूंद तेरा पैगाम ले आए, काश कोई बूंद तेरा पैगाम ले आए और भीगी पलकों पर तेरा एक सलाम ले आए। और ये मैं मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को जो आज मुझे यहाँ आकाशवाणी से सुन रहे हैं, उनको समर्पित करती हूँ। बादलों की ओट से जब चांद मुस्कुराता मिला, आज बादलों की ओट से जब चांद मुस्कुराता मिला, यूं लगा जैसे तेरे पैगाम ले आया। एक बूंद आकर मेरी हथेली पर ठहर गई, आज एक बूंद आकर मेरी हथेली पर ठहर गई, जैसे तेरे होठों की कोई नर्म शाम ले आया। मैंने आंखों से उसे चुपचाप रुखसत कर दिया, वो मेरे एहसास तेरे नाम ले आया। और काश हर बरसात यूं ही दरमियां ठहर सके, काश हर बरसात यूं ही दरमियां ठहर सके और हर मौसम तेरा पैगाम ले आया। बारिश की रुत जब काले मेघ आकाश में उमड़ते हैं और किसी किसी के लिए जब पहली बारिश प्रेम के बाद आती है तो गीत गुनगुनाने लगती है, सुर गुनगुनाने लगते हैं। एक और गीत आइए आपको मैं सुनाती हूँ, जिसका शीर्षक है आया सावन।

सावन। और देखिए सावन बेग पानी बरसात हवाएं ठंड इस सब में अपनी एक अलग मधमास है, लेकिन आपको कुछ चीजें भी ध्यान रखनी है। तब कहती हूँ

0: देखकर बारिश की बूंदों को और सुनिए इस कविता को मेरे साथ। बरखा की पहली बूंद गिरी, मन ने तेरा नाम लिया, भीगी भीगी उस खामोशी ने तेरा ही पैगाम दिया। हवा चली तो लगा कि जैसे तूने मुझको छू ही लिया, भीनी भीनी मिट्टी महकी तेरा आंचल याद किया, दूर कहीं तुम दूर सही पर दिल से कब दूरी होती है, बारिश की हर कोमल बूंद में तेरी ही मौजूदगी होती है, बूंद बूंद में तेरा चेहरा रिमझिम में तेरी मुस्कान, भीगी पलकें कहती रही बस, भीगी पलकें कहती रही बस, मुझको सदा तू ही पहचान। बादल बोले धीमे धीमे तेरा मेरा एक ही राग, भीगी रात की हर धड़कन में महका तेरा मेरा अनुराग। बरखा थम भी जाए तो क्या, बरखा थम भी जाए तो क्या, यादों का सावन रहता है दूर बसे हो फिर भी तुमसे दिल हर पल मिलता रहता है। कल फिर बारिश जब भी होगी मैं तेरा ही नाम लिखूंगी, कल फिर बारिश जब भी होगी मैं तेरा ही नाम लिखूंगी, हर बूंद में तेरा एहसास लिए, हर बूंद में तेरा एहसास लिए चुपके से मुस्काऊंगी। बादल बोले धीमे धीमे भीगी रात की एक धड़कन में महका तेरा अनुमान लिए, बरखा थम भी जाए तो तेरी याद आऊंगी। और श्रोताओं, जब बारिश का मौसम हो और तेज बारिश की बूंदें आपको वो आवाजें दे रही हो जो कानों में घुलती हैं और आपको हर और प्रेम और मोहब्बत से भरे हुए उस माहौल में लेकर जाती है, तो हम दौड़कर कहते हैं, जब सावन बन जाता पानी दिल में आग लगाता पानी। दोस्तों, जब सावन बन जाता पानी दिल में आग लगाता पानी, काबू में जज्बात न आए शोले जब भड़काता पानी, इसके बिन कुछ नहीं है जीवन। बिल्कुल, आप जानते हैं पानी के बिना कोई जीवन नहीं है। तब कहती हूँ कि इसके बिन कुछ नहीं है जीवन, जीते जी अपनाता पानी, प्यास जमी की तब बुझती है जब बादल बरसाता पानी। और दोस्तों, आब जमी में बचा नहीं है, आब जमी में बचा नहीं है, क्यों बेकार बहाता पानी, इसमें नहीं है फिरका परस्ती, इसमें नहीं है फिरका परस्ती, सबकी प्यास बुझाता पानी जब सावन बन जाता पानी। इस आत्मीयता से वर्षा की बूंदों जो इस तपती हुई धरा को स्पर्श करती है, उसके इस प्रेम से और उस वादे से हम बारिश की हर बूंद को बचाएंगे, सहेजेंगे और प्रेम के इन बंधनों में बंधकर पानी के इस अमूल्य निधि को, अपनी इस धरोहर को बचाकर रखेंगे। आइए इस सावन रिमझिम में भीगते हैं। सावन में हम उन झूलों को, उन हरियाली तीज को और उन अपनी सारे चीजों को, पुरानी अपने रिवाजों को अपने साथ रखते हैं। मेहंदी लगाइएगा, सावन के गहने पहनिएगा, सावन के लहरिए पहनिएगा, झूले खाइएगा, कुछ गीत गुनगुनाइएगा। बहुत सारा प्यार आप सभी को।
1: अभी आप सुन रहे थे मधु खंडेलवाल से कविता पाठ। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: साहित्य धारा।
3: अभी आपने सुना साहित्य धारा का कार्यक्रम। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज पर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो

0: गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल। सुबह के 7:14 होने को है और अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से। गीत में आवाज़ें हैं एलिसा मेंडोंसा और मोहित चौहान की। गीत को लिखा जावेद अख्तर ने और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुना रहे हैं फिल्म जब वी मेट से। आवाज़ है शान और उस्ताद सुल्तान खान की। गीत के बोल है इरशाद कामिल के और संगीत प्रीतम का।

आइए सुनते हैं अगला गीत, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से। इस गीत को गाया है डोमिनी सिरिजो और मैंडोनसा और साथियों ने। गीत के बोल लिखे जावेद अख्तर ने और संगीत दिया शंकर एहसान लॉय ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुना रहे हैं बार बार देखो फिल्म सी। इस गीत को गाया है जसलीन लोय और प्रतीक कुहड़ ने। बोल प्रतीक कुहड़ के और संगीत जसलीन रॉय का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत प्रस्तुत है बर्फी फिल्म से, आवाज़ निखिल पॉल जॉर्ज की और बोल है स्वानंद किरकिरे की। गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म रवैया वस्तवैया से आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीत को लिखा है प्रिया पांचाल ने और संगीतबद्ध किया सचिन जिगर ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत प्रस्तुत है रेड फिल्म से। इस गीत को गाया है राहत फ़तेह अली खान ने, गीत के बोल लिखे मनोज मुंतशिर ने और संगीतबद्ध किया तनिष्क बागची ने।

0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत प्रस्तुत है तमाशा फिल्म से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की। गीत को लिखा इरशाद कामिल ने और संगीत है ए आर रहमान का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुना रहे हैं फिल्म स्वदेश से। आवाज़ें हैं उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की। गीत को लिखा जावेद अख्तर ने और संगीत दिया ए आर रहमान ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुबह के 8 बजने को है और अब से थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। उसके बाद प्रसारित होगी मॉर्निंग न्यूज़ और उर्दू खबरनामा।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित, और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमता को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
3: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
5: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
3: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
6: यूपीआई के जरिए लेन देन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेन देन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
3: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
7: We have seen the comments.
8: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
7: Regulate the flow of foreign funds.
3: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
8: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
3: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
10: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
11: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
12: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
13: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान क्यूआर कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर ओपीडी रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार पल।
14: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, एनटीए के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, सीबीआई का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, एनटीए के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, एनटीए के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जलभराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
15: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to present IIT Delhi's highest honours to meritorious students during its convocation ceremony today. UPI transactions to remain free for consumers and small merchants, clarifies Apex Digital Payments Body PCI. India rejects objections raised by a US lawmaker on proposed FCRA bill, says legislation is country's internal matter. Jharkhand government holds first formal talks with protesting students over alleged irregularities in recruitment examinations. US Senate passes Russia sanctions bill seeking 100% tariff over five countries. And heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan and Odisha today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. He will address over 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars, who will be conferred their degrees during the ceremony. We have more from our correspondent.
16: Prime Minister Narendra Modi will present the institute's most prestigious honours, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medal to the meritorious students during the ceremony. Further, Mr. Modi will also inaugurate Param Pragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility established at the Sonipat campus of IIT Delhi. The state-of-the-art facility is expected to significantly enhance the institute's capabilities in AI, data science, advanced computing and interdisciplinary research. In a social media post, the Prime Minister has said that IIT Delhi has always made a rich contribution in the fields of research and innovation. Mr. Modi said that he looks forward to being among the students and teachers of this pioneering institute. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
15: Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu has thanked Prime Minister Modi after the two leaders reviewed progress in various aspects of partnership. Mr. Netanyahu wrote in a social media post responding to Mr. Modi's post regarding the conversation between the two leaders. During the phone call on Thursday evening, both leaders reviewed progress on various aspects of the India-Israel Special Strategic Partnership and also discussed the current situation in West Asia. Payments Council of India, PCI, has announced that UPI will continue to be free for consumers. We have a report.
17: In a statement, the PCI affirmed that every Indian can continue to make instant digital payments without any transaction charges. It also noted that small merchants will not be charged for accepting digital payments. The PCI added that banks, fintech companies, NPCI and the RBI have been investing in technology, cybersecurity, fraud prevention and innovation to maintain UPI's reliability. The PCI clarified that any applicable merchant service charges, which are commercial arrangements solely between merchants and payment providers, do not mean that consumers pay to use digital payments. It highlighted that UPI has become a critical national digital infrastructure used daily by many citizens. The PCI further noted that as transaction volumes continue to grow, sustained investment in security, resilience, innovation, fraud prevention and infrastructure will remain essential to ensure UPI reliably serves consumers and businesses for years to come. With Bhanu and Suparna, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
15: India has rejected the objections raised by a US lawmaker on the proposed Foreign Contribution Regulation Amendment Bill, saying that its legislative matters are its internal affairs, in which the decisions are taken by the Parliament. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this during a media briefing in New Delhi while replying to a question in this regard.
7: We have seen the comments. Legislative matters concerning India are our internal affairs on which decisions are taken by the parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of foreign funds.
15: On safety and security of Indian vessels and seafarers, Mr. Jaiswal said New Delhi attaches high priority to the issue. He said Indian missions all across Gulf region are in constant contact with the Ministry of Shipping and Maritime Authorities in those countries. He said India continues to call for a safe and unimpeded navigation and free flow of commerce through international waterways.
7: While we are coordinated with Ministry of Shipping and local authorities in West Asia in the Gulf region, we continue to call for safe and unimpeded navigation and free flow of commerce through international waterways. We also call upon all parties to refrain from targeting civilian infrastructure and civilians, especially commercial vessels and seafarers.
15: Replying to the defense pact between Pakistan, Turkey and Saudi Arabia, the spokesperson said the development is being closely followed. On recent defense pact between Pakistan and Somalia, Mr. Jaiswal said India continues to follow these developments closely. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will inaugurate the new office of the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited today in Mumbai. The Home Minister will also interact with the representatives of State Urban Cooperative Bank Federations and District Associations of Maharashtra. During the program, a memorandum of understanding will be exchanged between the corporation and the National Forensic Sciences University. The collaboration will play an important role in strengthening cybersecurity, technological capabilities and institutional capacity in the urban cooperative banking sector. Mr. Shah will later attend the BSE International Convention Center alongside Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. He will also inaugurate a security operations center to strengthen the cybersecurity of urban cooperative banks. Union Education Minister Prahlad Joshi has reaffirmed that government is committed to ensure timely and effective execution of programs aimed at strengthening India's education ecosystem. He said this while chairing a meeting with senior officials of the Education Ministry held last night after returning to New Delhi from the 13 BRICS Education Ministers meeting. In a social media post, Mr. Joshi said the meeting reviewed various ongoing initiatives of the ministry and discussed implementation priorities to ensure their timely and effective execution. He said that the meeting also provided an opportunity to align government's efforts with the vision of building an inclusive, future-ready and globally competitive education system. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. The first formal talks between the Jharkhand government and the students' delegation were held late yesterday evening amid the ongoing agitation over alleged irregularities in the JPSC and JSSC examinations. Meanwhile, the investigation into the matter and political activities surrounding the issue have also gathered pace. Our correspondent has filed this report.
18: During the nearly 1.5 hour meeting, the students reiterated their demands for transparency in the recruitment examinations, an impartial probe into the alleged irregularities, and comprehensive reforms in the recruitment process. Four state ministers and the development commissioner represented the government in the talks. The ministers said the government would take positive steps on the students' demands and assured them that all issues raised during the meeting would be placed before the chief minister. The students described the talks as positive, but said their sit-in protest and hunger strike would continue until a written decision is taken and concrete action is initiated on their demands. They also said that if no satisfactory decision is taken,

0: Payments Body, PCI. India rejects objections raised by a US lawmaker on proposed FCRA bill, says legislation in country's internal matter. Jharkhand government holds first formal talks with protesting students over alleged irregularities in recruitment examinations. US Senate passes Russia sanctions bill seeking 100% tariff over five countries. And heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan and Odisha today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज असनाद की सालाना तकसीम की तकरीब में होनहार तलबा को आईआईटी दिल्ली के आला तरीन एजाजात से नवाजेंगे। डिजिटल पेमेंट्स के आला तरीन इदारे पीसीआई ने वजाहत की है कि यूपीआई लेन देन सारिफीन और छोटे कारोबारियों के लिए मुफ्त रहेगा। भारत ने एक अमरीकी कानून साज की तरफ से मुजवजा एफसीआरए बिल पर जाहिर किए गए एतराजात को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने कहा है कि कानून साजी मुल्क का अंदरूनी मामला है। झारखंड सरकार ने भर्ती इम्तहानात में मुबैना बदउनवानियों पर मुजाहरे करने वाले तलबा के साथ पहली मरतबा बाकायदा बातचीत की। अमरीकी सेनेट ने रूसी बंदिशों से मुतालिक उस बिल को मंजूरी दे दी है जिसमें 5 मुल्कों पर 100% महसूल आयात करने के लिए कहा गया है। और मशरकी राजस्थान और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली के 57वें तकसीम असनाद तकरीब से खिताब करेंगे। वो 587 पीएचडी स्कॉलर समेत 3000 से ज्यादा ग्रेजुएशन करने वाले तलबा से भी खिताब करेंगे जिन्हें तकरीब के दौरान डिग्रियों से सरफराज किया जाएगा। पेश एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी तकरीब के दौरान आईआईटी दिल्ली के आला तरीन एजाजात जिनमें सदर का गोल्ड मेडल, डायरेक्टर का गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और इम्तियाजी नंबरों से कामयाब होने वाले तलबा को परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल्स अता करेंगे। इसके अलावा जनाब मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में कायम एआई से आरास्ता आला कारकर्दगी वाली सुपर कंप्यूटिंग सहूलत प्राम प्रज्ञा का भी इफ्तिताह करेंगे। इस जदीद तरीन सहूलत से इदारे की एआई डेटा साइंस एडवांस कंप्यूटिंग और मुख्तलिफ मजामीन पर मबनी तहकीकी सलाहियत में इजाफा होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीरे आज़म ने कहा कि आईआईटी दिल्ली में हमेशा ही तहकीक और इख्तिरा के शोबों में आला ताउन दिया है। न्यू डेस्क से शिवांगी मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: भारत की रकूम के लेन देन से मुतालिक कौंसिल पीसीआई ने ऐलान किया है कि यूपीआई सारिफीन के लिए मुफ्त ही रहेगा। कौंसिल ने एक बयान में तस्दीक की है कि हर भारतीय लेन देन पर बगैर कोई चार्जेस दिए डिजिटल वसीले से रकूम का फौरी लेन देन कर सकता है। कौंसिल ने यह भी कहा है कि अगर कोई कारोबारी डिजिटल वसीले से कोई रकम हासिल करता है तो उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पीसीआई ने यह भी कहा कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और आरबीआई टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, घोटालों की रोकथाम और इख्तिरा के मैदानों में यूपीआई की मोतबरियत को बरकरार रखने के लिए सरमाया लगा रहे हैं। पीसीआई ने वजाहत की है कि कारोबारी खिदमात पर आयद ऐसे कोई भी चार्जेस जो कारोबारियों और रकूम फराहम करने वाली कंपनियों के दरमियान महज कारोबारी इल्तजामात हों, उनका मतलब ये नहीं है कि ये चार्जेस सारिफीन डिजिटल पेमेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए अदा कर रहे हैं। उसने खास तौर पर कहा है कि यूपीआई एक ऐसा अहम कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचा बन गया है जिसे बहुत से शहरी रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। भारत ने एक अमरीकी कानून साज की तरफ से बैरूनी अतियात के जाब्तों में तरमीम से मुतालिक भारत के मुजवजा बिल पर एतराज जाहिर किया है। भारत ने कहा है कि कानून साजी से मुतालिक उसके मामलात उसके अंदरूनी मामलात हैं जिनके बारे में पार्लियामेंट फैसले करती है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने यह बात नई दिल्ली में नामा निगारों को जानकारी देते हुए एक सवाल के जवाब में कही। भारतीय जहाजों और जहाजियों की हिफाजत और सलामती के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले को आला तरीन तरजीह देता है। उन्होंने कहा कि पूरे खत्ते खलीज खत्ते में भारतीय मिशन जहाजरानी की वजारत और समुद्र से मुतालिक

0: आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास चेहरे पर छलकता है और सामने वाले के चेहरे को पढ़ लेता है। कमजोर जीव का शिकार हमेशा खतरनाक जीव करता है, यह प्रकृति का नियम है। अगर कमजोर जीव थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ाकर खतरनाक जीव के सामने खड़ा हो जाए तो उसे भी दुम दबाकर भागना पड़ता है।
1: तब हमें क्या करना चाहिए सर?
0: आत्मविश्वास बढ़ाओ, बहादुर बनो, शेरनी की तरह निडर बनो। कमजोर के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है रत्ना। अगर कोई तुम्हें डराता है तो डरो मत, चुनौती दो। चुनौती का भय दिखाना ही आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस।
1: लेकिन सर, जब कोई हमें पकड़ने की या छूने की कोशिश करे तब हमें क्या करना चाहिए?
0: अच्छा, एक बात बताओ
1: जी,
0: शेर या चीते को कोई छू सकता है?
1: नहीं
0: नहीं ना, अरे सपने में भी नहीं। दोनों पहले गुर्राते हैं फिर दहाड़ मारते हैं। तुम भी गुर्राओ, दहाड़ मारो। अगर ऐसा एक बार कर दिया ना तो तुम्हारा साहस और बढ़ जाएगा, निडरता आ जाएगी।
1: एक बात पूछे हम?
0: हाँ पूछो।
1: हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई लड़का तुम्हें छेड़ रहा है तो उसकी आंखों में मिर्च स्प्रे कर दो, उसे गलत जगह पर मारो, और हाँ उसकी आंखों में अंगुली डाल दो।
0: अरे नहीं नहीं, ये आत्मरक्षा नहीं है। हम सभी विज्ञान पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि 14 से 24 वर्ष की उम्र में शरीर में हार्मोनल चेंजेज आते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों में कुछ ऐसी घटनाओं का जन्म लेना आम बात है। लड़कों को समझाया जा सकता है, और सभी लड़के एक जैसे भी नहीं होते। हिंसा करना कतई उचित नहीं है। जिस प्रकार लड़कियों के लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार लड़कों के लिए भी सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है।
1: लेकिन सर, घर में तो माँ पापा दादी नानी चाची पूरा का पूरा परिवार ही हमें यही करने को कहता है।
0: एक काम करो, तुम तो केवल अपना डर बाहर निकालो। वो लोग वही रीति रिवाज को निभाते आ रहे हैं जो उनको दिए गए हैं। ऐसे मामलों में रीति रिवाजों का डर दिखाकर डांटते रहने से हमारी ताकत खत्म हो जाती है।
1: लेकिन सर, ऐसी प्रॉब्लम आए ही नहीं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: सतर्क रहना चाहिए।
1: कैसे?
0: रत्ना, हर जीव सतर्क रहता है। छोटी सी चींटी से लेकर बड़े से बड़ा जानवर भी सतर्क रहता है, और सतर्कता से ही सभी सुरक्षित रहते हैं। सतर्कता चूकी और शिकार हुए, और यही होता है हमारे साथ।
1: लेकिन हमें इसका पता कैसे चलेगा?
0: हमारा शरीर इसका आभास कर लेता है, इसलिए पूर्वाभास करना बहुत जरूरी है। माँ दादी नानी सभी यही तो सिखाते हैं, पूर्वाभास और सतर्कता। लेकिन साथ ही डर दिखाकर हमें और डरा भी देते हैं, जिससे सतर्कता और पूर्वाभास समाप्त हो जाता है।
1: पर सर, इन सब का पता कैसे चलता है?
0: मान लो रत्ना, तुम्हारी गली में कुत्ता है और वो तुम्हें देखकर भौंकता है, तो तुम क्या करोगी? उसके पास जाओगी?
1: ना पापा ना।
0: नहीं ना, और अगर कोई दारू पिया शराबी लड़खड़ाता हुआ गली में आ रहा है और तुम उसके पास से गुजरना पसंद करोगी?
1: बिल्कुल नहीं।
0: नहीं ना, अरे तो यही तो सतर्कता है कि हम परेशानी के पास ही ना जाएं। जब कोई समस्या सामने दिखती है तो उससे दूर रहना और बचना, यही सतर्कता है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। समझ गई ना?
1: जी समझ गई।
0: गुड।
1: माँ।
2: हाँ रत्ना, आ गई? चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। आज तो मुझे बड़ा डर लग रहा था।
1: डर? क्यों माँ?
2: पता है, आज पड़ोस वाली लड़की का अपहरण हो गया।
1: पड़ोस वाली? कौन? वो निशा?
2: हाँ निशा। आंटी का तो रो रो कर बुरा हाल है। पता नहीं बेटा अब क्या होगा, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। तू आ गई, अब जाकर मुझे चैन मिला।
1: माँ परेशान मत हो, निशा आ जाएगी। पर वैसे निशा है तो बहुत ही भोली और कमजोर।
2: पता नहीं कौन से जानवर थे, कॉलेज के लिए निकली थी और वापस ही नहीं आई।
1: माँ निशा तो कॉलेज जाती है, पढ़ी लिखी है और इतनी बड़ी है, फिर भी उसका किडनैप हो गया।
2: हाँ बेटा, अब जानवर चूहे को मुंह में दबा कर ले जाए तो चूहा भी क्या करेगा?
1: सतर्क रहेगा और क्या। सतर्कता चूकी और मौत के आगोश में। पता है माँ, आज ही हमारे सेल्फ डिफेंस टीचर ने हमें सिखाया है कि हर जगह सतर्क रहना चाहिए।
2: बहुत अच्छा सिखाया सर ने।
1: माँ एक बात बताओ।
2: हाँ बताओ।
1: वो आज हमारी स्कूल बस का ड्राइवर है ना, वो मुझे घूरे ही जा रहा था। पता है एक जगह तो एक्सीडेंट ही हो जाता।
2: अच्छा, पर उसने कुछ गलत तो नहीं किया ना तेरे साथ?
1: नहीं माँ, मैं ना वहाँ से उठकर पीछे की सीट पर चली गई थी।
2: बहुत अच्छा किया बेटा तूने। कल मैं उसकी शिकायत स्कूल में करूंगी। हाँ
1: नहीं माँ, अगर आवेश में आकर उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो? तुम ही कहती हो ना पुरुषों का तो स्वभाव ही होता है आवेश में आने का। तुम चिंता मत करो माँ, मैं उसे पूरी तरह अनदेखा कर दूंगी।
2: ठीक।
1: और हाँ, अपनी सीट भी बदल लूंगी, फिर वो मुझे कुछ नहीं कह सकेगा। और अगर फिर भी परेशान किया तो मैं प्रिंसिपल से कह दूंगी।
2: पर ये तू क्या कह रही है?
1: हाँ माँ, सुरक्षा का मतलब किसी को उत्तेजित करना तो नहीं होता ना, और अगर उत्तेजित करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, हमारा डर बढ़ेगा। हमें तो आत्मविश्वास रखना चाहिए और शांत रहकर समस्या से दूर हो जाना चाहिए, इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है।
2: क्या बात है, आज तो मेरी बेटी बड़ी समझदारी की बात कर रही है। आखिर सीखी कहाँ ये बातें?
1: वो स्कूल में हमारे सर ने बताया था ना कि हमेशा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
2: बहुत अच्छे।
1: माँ आज से आप भी ना मुझे कमजोर रहने के उपदेश देना बंद कर दो। ऐसी बातें क्या करो जिससे कि मेरे अंदर ना साहस, उत्साह और जोश पैदा हो।
2: मैं कमजोर उपदेश?
1: और नहीं तो क्या माँ, हमेशा तो कहती रहती हो यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। और लड़की हो ना, ज्यादा नहीं बोलते, तेज नहीं हंसते, पुरुषों के बीच में जाके नहीं बैठते हैं, शर्म का पर्दा रखते हैं। अब तुम्हें बताओ माँ, ये सारी बातें पुराने जमाने की दकियानों सी बातें हैं कि नहीं? और ऐसी ही बातें ना हम लड़कियों को कमजोर बना देती हैं। आत्मविश्वास की कमी के कारण ही उनके साथ में गलत होता है। जो डर कर और कमजोर बनकर चलता है ना, उसे कोई भी डरा सकता है। इसीलिए हमें निडर बनाया करो, और ये निडरता एक माँ ही अपनी बेटी में ला सकती है ना माँ।
2: अच्छा मेरी निडर बिटिया, चलकर हाथ धो ले, जल्दी से तेरे लिए खाना लगा देती हूँ।
1: एक बात और माँ।
2: अब क्या है?
1: आप ना पापा को भी समझाना कि बिना बात हमें नहीं डांट लगाए, और अगर हमारी गलती हो या हम कोई गलती करने जा रहे हो तो हमें प्यार से बिठाकर समझाएं कि हमें ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी है।
2: अच्छा अच्छा ठीक है, समझा दूंगी उनको भी। अब तो खाना खा ले
1: मेरी प्यारी माँ।
2: मेरी प्यारी गुड़िया।
3: आत्मविश्वास, अभी आपने कलावत केएल की लिखी ये झलकी सुनी। भाग लेने वाले कलाकार थे विनोद कृष्ण भट्ट, अनीता प्रधान, अनीता गोयल और चंचल शर्मा। तकनीकी सहयोग ओपी शर्मा का और प्रस्तुतकर्ता सुनील गंजू। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर की प्रस्तुति थी।
4: अभी आपने सुना आत्मविश्वास झलकी को। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। सुबह के 9 बजने को है और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
5: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। सुबह के 9 बजने का है और प्रस्तुत है हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक में पंचायत और निकाय चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कराने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जोजड़ी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एक हफ्ते के भीतर निगरानी समिति बनाने के निर्देश दिए और प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कल जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय तिरंगा रैली से होगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। श्री मोदी मेधावी छात्रों को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक, शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक और परफेक्ट 10 स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित परम प्रज्ञा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने शोध और नवाचार के क्षेत्र में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस प्रतिष्ठित संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच आने को लेकर उत्साहित हैं। प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव अब वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही पंचायत राज और नगरीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकार अब आरक्षित सीटों के निर्धारण के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू करेगी। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि राजस्थान कृषि और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 और राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
1: हमारे किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में मजबूती देने के लिए ये राजस्थान एग्रो फूड प्रोसेसिंग नीति हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर फल, सब्जी, मसाला, अनाज, तिलहन, दलहन, औषधीय उत्पाद, लघु वन उपज, शहद, दूध, पशु आहार, इन सभी की इकाइयों को मजबूती मिलेगी। इसके अंदर कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे और सप्लाई चेन भी स्थापित करी जाएगी। उसी के साथ राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 भी लाएगी, जिसके अंदर फूड पार्कों को मजबूती दी जाएगी, उसके लिए भूमि आवंटित की जाएगी और उसका संचालन के अलग अलग श्रेणी बनाई गई है।
0: मंत्रिमंडल ने मजदूरी संहिता नियम 2026 को भी स्वीकृत किया है। इसके तहत श्रमिकों के काम के घंटे तय किए गए हैं, साथ ही उनका महंगाई भत्ता वर्ष में 2 बार संशोधित होगा। प्रदेश में ईकेवाईसी नहीं कराने वाले करीब 27 लोगों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए गए हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि इससे पात्र और जरूरतमंद परिवारों को योजना का फायदा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला है। नवम्बर 2024 में शुरू किए गए गिवअप अभियान के तहत करीब 67 लाख लोगों ने

0: स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से लाभ छोड़ा है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि राज्यों के बीच अनुभवों का आदान प्रदान और आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग भविष्य की चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कल इंदौर में पश्चिम क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की 13वीं बैठक में ये बात कही। इस दौरान श्री शर्मा ने राजस्थान पुलिस के साइबर अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में किए गए नवाचारों की जानकारी भी साझा की। बैठक में अंतर्राज्यीय अपराधों की रोकथाम और साइबर अपराध नियंत्रण पर भी चर्चा हुई। साथ ही गुमशुदा बच्चों की तलाश, मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक और तकनीक आधारित पुलिसिंग सहित अन्य विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की जोजुड़ी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को एक हफ्ते के भीतर निगरानी समिति बनाने का निर्देश दिया है। इस समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। इसमें पर्यावरण, वन, जल संसाधन और उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ये समिति नदियों में हो रहे प्रदूषण की लगातार समीक्षा करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन नदियों का पानी गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुका है। कई जगहों पर फैक्ट्रियों का गंदा पानी अवैध रूप से नदियों में छोड़ा जा रहा है। इससे नदी, पर्यावरण और वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसा शिकायत तंत्र बनाने का भी निर्देश दिया है जिससे लोग नदी प्रदूषण या पर्यावरण से जुड़े मामलों की आसानी से शिकायत कर सकें और उन पर जल्द कार्रवाई हो सके। उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेल परिसर और रेलगाड़ियों में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर जुलाई माह में 269 लोगों पर कार्रवाई की है। इस दौरान 38 स्टेशनों और 231 ट्रेनों में जांच कर कुल 5,38,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और धूम्रपान मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है।
1: हम लोग स्टेशन पे भी ड्राइव कर रहे हैं, ट्रेनों में भी ड्राइव कर रहे हैं। इस स्टेशन पे लगातार सीसीटीवी कैमरा की मदद से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। ट्रेन में भी कोच में टीटी और आरपीएफ दोनों मिलके ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं। साथ में ही ट्रेन में एक ऑटोमेटिक स्मोक डिटेक्टर भी लगे हुए हैं जिसको FSDS रेलवे की भाषा में बोला जाता है, उसके द्वारा भी स्मोकर को पकड़ा जा रहा है। तो सभी यात्रियों से, सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि रेलवे सबकी कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, इसके सेफ और सिक्योर संचालन में सभी लोग सहयोग करें और धूम्रपान किसी भी परिस्थिति में रेलवे परिसर में और ट्रेन में ना करें।
0: प्रदेश में कल से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कल सभी जिलों में तिरंगा प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 10 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा, वहीं 11 और 12 अगस्त को तिरंगा प्रदर्शनी और मेले लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कल जयपुर में राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का नेतृत्व करेंगे। ये रैली सुबह 9:30 बजे अल्बर्ट हॉल से होकर चौड़ा रास्ता और त्रिपोलिया गेट होते हुए बड़ी चौपड़ तक जाएगी। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने रैली से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा, यातायात, पेयजल, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश में हो रही बरसात से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। तापमान में आई गिरावट से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। राज्य के पूर्वी इलाकों में बरसात से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भरतपुर में अत्यधिक बरसात को देखते हुए जिला कलेक्टर ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज का अवकाश घोषित किया है। हनुमानगढ़ में सुबह से ही कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बरसात का दौर बना हुआ है। पाली में बादल छाए हुए हैं और रिमझिम बरसात हो रही है। राजधानी जयपुर में भी सुबह से ही फुहारों का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश भागों में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। आज भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं सीकर और झुंझुनू के लिए बरसात का ऑरेंज अलर्ट है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक में पंचायत निकाय चुनाव और वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कराने के फैसले सहित कई महत्वपूर्ण फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जोजड़ी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एक हफ्ते के भीतर निगरानी समिति बनाने के निर्देश दिए और प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कल जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय तिरंगा रैली से होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और हमारी वेबसाइट newzoneair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। अब से थोड़ी ही देर में 9:15 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सुगम संगीत।
2: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
3: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
4: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
5: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
6: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
7: 60s की मेलोडीज हो या 70s का मैजिक,
8: तेरे बिना जिया जाए ना।
9: 80s में था डिस्को, 90s का मूड रोमांटिक।
10: दिल है के मानता नहीं।
7: 2000s में था बदलाव पे जोर।
9: और अब है पार्टी सॉन्ग्स का दौर।
11: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
7: You said, we played.
9: This is 101.2 FM, जयपुर का अपना FM।
12: सुनते जाओ, सुनाते जाओ, संग हमारे गुनगुनाते जाओ।

गीत संगीत कथा साहित्य नाटक झलकी ज्ञान विज्ञान खेल स्वास्थ्य और मनोरंजन का खजाना आकाशवाणी जयपुर का आमेर चैनल 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी जयपुर का आमेर चैनल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल FM बैंड 101.2 MHz पर। इस समय सुबह के 9:15 हुए हैं और अब वक्त है सुगम संगीत का। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं वीणा मोदानी की भजन।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

0: अभी आपने सुना सुगम संगीत में वीणा मोदानी का भजन। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। इस समय सुबह के 9:30 हो रहे हैं और अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। विनायक शर्मा का सितार वादन, राग अहीर भैरव।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: कार्यक्रम चल रहा है शास्त्रीय संगीत।

अभी आपने सुना शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। सितार वादन कर रहे थे विनायक शर्मा और राग था अहीर भैरव। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो जयपुर।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। हमारे सभी श्रोताओं का हेलो जयपुर कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। FM बैंड 101.2 MHz पर आप जुड़ चुके हैं। आपके साथ मैं सक्षम सैनी। आज के हेलो जयपुर कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वुमेन्स अचीवर के बारे में, जहां हम चर्चा करेंगे उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ विश्व में अपनी पहचान बनाई बल्कि उन सामाजिक सीमाओं और बाधाओं को भी तोड़ दिया जो अन्य किसी को अपने लक्ष्य पाने से विचलित कर देती है, जो उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह हमसे नहीं होगा। पर इन चुनौतियों के बावजूद ये महिलाएं अपनी आप को समाज के सामने प्रस्तुत करती है, अपना नाम ऊँचा करती है। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी ही महिला के बारे में जिन्हें भारत की रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। क्या आपने इससे पहले कभी इनके बारे में सुना है? तो आज चर्चा होगी इन्हीं के बारे में, पर उससे पहले सुनते हैं ये छोटा सा गीत।

रितु करीधर जी, रितु करीधर रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। इनका जन्म 13 अप्रैल सन 1975 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था और उन्हें अपने बचपन में छत पर बैठकर चमकते हुए तारे देखना और उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था, जो आप सभी ने भी अपने बचपन में कभी ना कभी किया ही होगा और उससे बहुत इन्जॉय भी किया होगा। पर रितु करीधर की आसमान को लेकर जिज्ञासा हम सभी से कुछ अलग थी। वह सोचती थी कि तारे इतनी दूर है फिर भी क्यों दिखाई देते हैं, चांद कभी आधा तो कभी पूरा क्यों होता है। और यही वह सवाल थे जिन्होंने उनके भीतर विज्ञान की पहली चिंगारी भड़काई और उन्हें स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए प्रेरित किया। वो अखबारों में इसरो और नासा की नई खोजों के बारे में पढ़ती और अखबार की उन खबरों की कटिंग अपने पास संभाल कर रखती जैसे कोई अपने सपने को सहजता है। उस समय उन्हें नहीं पता था कि यही सब आगे चलकर उनका लक्ष्य बन जाएगा, उनकी जिद बन जाएगा। और आइए इसके साथ सुनते हैं अगला गीत।

0: आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर FM बैंड 101.2 MHz पर। हेलो जयपुर का ये सेगमेंट जारी रहेगा विश्व दर्पण के बाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। भारत ने प्रस्तावित FCRA विधेयक पर अमेरिका के सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया। अमेरिका के सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक पारित किया। और कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर अमेरिका के एक सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: We have seen the comments.
3: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: रेगुलेट द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स।
1: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
3: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
1: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
4: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर कल नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रस्तावित भारत श्रीलंका हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट इंटरकनेक्शन और संपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना समेत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने सीमा पार बिजली व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, पारेषण बुनियादी ढांचा और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत और भूटान ने भी विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। केंद्रीय विद्युत और आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री ल्योम्पो जेम शेरिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने चल रहे सहयोग की समीक्षा की और जल विद्युत विकास, सीमा पार विद्युत व्यापार, पारेषण संपर्क, नवीकरणीय ऊर्जा और क्षमता निर्माण पर बात की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस तथा चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को भारी मतों से पारित कर दिया है। दावा

0: किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। एक रिपोर्ट।
1: लिंडसे ओग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक के समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के रक्षा विभाग ने पूर्व वायुसेना सचिव फ्रैंक कैंडल की गोपनीय जानकारी तक पहुंच की अनुमति तत्काल प्रभाव से वापस ले ली है। उन्हें किसी भी संवेदनशील पद पर नियुक्त किए जाने से भी रोक दिया गया है। एयरफोर्स वन की क्षमताओं से जुड़ी गोपनीय जानकारी कथित तौर पर मीडिया के साथ साझा करने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कोटे डी आइवर के 66वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत इस अफ्रीकी देश के साथ अपने करीबी पुराने और दोस्ताना रिश्तों को बहुत महत्व देता है। उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदगी से पता चलता है कि दोनों देशों के बीच दोस्ती और सद्भावना के रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं। कोटे डी आइवर 7 अगस्त 1960 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से आजाद हुआ था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आपसी साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री नेतन्याहू ने कल श्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में ये बात कही। बृहस्पतिवार को टेलीफोन पर बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने भारत इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा होगी। बैठक में संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने पर भी विचार किया जाएगा। बैठक के अंत में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा को अपनाया जाएगा। इसमें भविष्य में सांस्कृतिक सहयोग के लिए साझा दिशा और रोड मैप तय किया जाएगा। विदेशी मेहमानों को मध्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी मिलेगा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बंदूक नियंत्रण के लिए नए कानून लाने का वादा किया है। बैंकॉक के बाहरी इलाके में एक किशोर द्वारा की गई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत और 22 लोगों के घायल होने के बाद ये फैसला किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: 14 वर्ष के इस किशोर ने पहले अपने घर में दादा दादी की हत्या की और फिर वो नोनथाबुरी के डेबिरसिरिन में अपने स्कूल गया। स्कूल में उसने 5 शिक्षकों की हत्या की और फिर खुदकुशी कर ली। बाद में एक घायल छात्र की भी मौत हो गई। हमले के बाद प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल ने कहा कि वो ऐसे कानून लाने की योजना बना रहे हैं जो सार्वजनिक जगहों पर हथियार ले जाने पर रोक लगाएंगे। नए कानून के अंतर्गत सिर्फ ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों को ही बंदूक रखने की अनुमति होगी। दक्षिण पूर्व एशिया में आम नागरिकों के पास बंदूक होने की दर थाईलैंड में सबसे अधिक है। यहां नागरिकों के पास लगभग 1.3 करोड़ हथियार हैं। माना जाता है कि इनमें से लगभग 40 लाख हथियार गैर कानूनी तरीके से रखे गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगी। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जापान की नंबर 1 खिलाड़ी हिना अकेची को 3 गेम के रोमांचक मुकाबले में हराया। वहीं रक्षिता रामराज ने हमवतन और तीसरी वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने प्रस्तावित FCRA विधेयक पर अमेरिका के सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया। अमेरिका के सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक पारित किया। और कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हेलो जयपुर के इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से

स्वागत है। हम बात कर रहे थे रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया यानी रितु करिधल के बारे में। रितु करिधल का सपना स्पष्ट था, और जब सपना स्पष्ट होता है साथियों, तो उसे पाने के लिए हमारी मेहनत और भी बढ़ जाती है। रितु ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से MSc फिजिक्स की पढ़ाई सन 1996 में पूरी करी, और इसके थोड़े ही समय बाद सन 1997 में इसरो में इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने IISc बेंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MTech की पढ़ाई भी करी, और पढ़ाई के दौरान मेहनत करते हुए कई बार उन्हें अपनी प्रतिभा को लेकर अपने मन में उठते सवाल परेशान करते थे। कभी उन्हें थकान होती थी, जैसे कि आपके या हमारे साथ भी कई बार होता ही है। परंतु रितु ने कभी उनसे हार नहीं मानी, कभी उन्होंने रुकना नहीं सीखा। उन्होंने सीखा था कि आत्मविश्वास किसी को दिया नहीं जाता, बल्कि उसे मेहनत से कमाना होता है, और उनकी इसी लगन और मेहनत की वजह से आगे चलकर सन 2007 में माननीय पूर्व राष्ट्रपति और हमारे देश के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा उन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि उनके वैज्ञानिक जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ, जिसमें उनकी मेहनत और लगन साफ झलकती थी। पर आगे आने वाला समय रितु करिधल की इस मेहनती स्वभाव और लगन की अच्छी परीक्षा लेने वाला था, और इस बारे में संपूर्ण देश में बात होने वाली थी। क्या थी वो बात, आगे सुनेंगे। पर उससे पहले ये गीत।

साथियों, अब तक हमने ऋतु करिधल के उस सफ़र को देखा जहां एक बच्ची साधारण परिवार से आते हुए आंखों में आसमान को लेकर कई सवाल लेकर आई थी, जहां अखबारों में पढ़ी गई अंतरिक्ष की खबरें धीरे धीरे उसके सपनों का हिस्सा बन रही थी, और जहां उनकी मेहनत और निरंतर सीखने की चाह ने उनके सपनों को दिशा दी थी। लेकिन हर सपने की असली परीक्षा तब होती है जब उसे हकीकत में बदलना होता है। जैसा कि कहते भी है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दे, जिन्हें पाने के लिए हम दिन रात एक कर दें, जिन्हें पाने के लिए हम बहुत मेहनत करें। ऋतु करिधल के जीवन में वह परीक्षा आई मंगलयान के रूप में। मंगलयान का नाम सुनते ही हमारे मन में लाल रंग का एक ग्रह उभरता है, लेकिन इस नाम के पीछे सिर्फ एक अंतरिक्ष यान नहीं था, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत और परिश्रम था, जिसका एक महत्वपूर्ण भाग बनने वाली थी ऋतु करिधल।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: मिशन मंगलयान, जिसके पीछे था भारत का साहस, भारतीय वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत, सैकड़े लोगों का सामूहिक प्रयास और एक ऐसा मिशन जिसे उस समय दुनिया में सबसे कठिन अंतरिक्ष अभियानों में गिना जाता था, जिसे लगभग असंभव मान लिया गया था। और ऋतु करिधल को इस मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। ऋतु करिधल इस मिशन में डेप्यूटी ऑपरेशन डायरेक्टर की भूमिका निभा रही थी। साथियों, मंगलयान, जिसे हम मार्स ऑर्बिट मिशन के रूप में जानते हैं, भारत का पहला इंटरप्लैनेट यानी अंतर्ग्रहीय मिशन होने वाला था, जिससे पहले कि भारत किसी भी अन्य प्लैनेट पर नहीं गया था। इसे 5 नवंबर सन 2013 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-25 के माध्यम से लॉन्च किया जाना था और लगभग 10 महीने की

मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफल हो पाए थे। लेकिन ज़रा सोचिए, धरती से ये मंगल तक की दूरी क्या सिर्फ किलोमीटर में नापी जानी संभव है? यह दूरी तकनीकी और चुनौतियों के बीच की दूरी थी। यह दूरी थी गणना और अनिश्चितता के बीच की, विश्वास और जोखिम के बीच की, जिसे कम करने में ऋतु करिधल और उनके ही जैसे कई वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगलयान जैसा महत्वपूर्ण मिशन, जिस पर देश के करोड़ों देशवासियों का विश्वास टिका हुआ था और जिसमें जरा सी भी चूक सालों की मेहनत और परिश्रम पर पानी फेर सकती थी, पर हमारे देश के वैज्ञानिकों के साथ डेप्यूटी डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही ऋतु ने अपनी मेहनत से इस असंभव कार्य को संभव बनाया। ऋतु करिधल की भूमिका हमें यह सिखाती है यहाँ पर कि नेतृत्व का अर्थ केवल सामने खड़े होकर निर्देश देना नहीं होता, बल्कि नेतृत्व का अर्थ होता है सबसे कठिन समय में शांत रहना, सही निर्णय लेना और पूरी टीम पर विश्वास बनाए रखना। और इसी विश्वास के कारण हमारे देश को वह उपलब्धि प्राप्त हुई जो आज हमें गौरवान्वित महसूस करवाती है।

साथियों, बड़ी मंजिलें एक बड़ी छलांग से नहीं, छोटे छोटे सही कदमों से हासिल होती है, और शायद यही ऋतु करिधल की यात्रा का सबसे खूबसूरत संदेश है। एक छोटी बच्ची जो आसमान को देखकर सवाल पूछना, अखबारों में अंतरिक्ष की खबरें पढ़ना, विज्ञान की पढ़ाई करना और इसरो तक पहुंचना, और फिर एक दिन उसी अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मंगल तक भारत की यात्रा में योगदान देना, यह केवल एक करियर की कहानी नहीं है। यह कहानी है जिज्ञासा से लक्ष्य तक, लक्ष्य से मेहनत और मेहनत से उपलब्धि तक पहुंचने की कहानी। तो अगली बार जब रात में आप आसमान की ओर देखें, तो शायद आपको सिर्फ चांद और तारे ना दिखाई दें, शायद आपको यह भी दिखाई दे कि इंसान की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। और यदि एक साधारण सी जिज्ञासा इतिहास रचने वाली यात्रा की शुरुआत कर सकती है, तो आपके भीतर उठने वाला एक छोटा सा सवाल भी आपकी ज़िंदगी को एक बड़ी दिशा दे सकता है। और मंगलयान की इस ऐतिहासिक सफलता के बाद ही ऋतु करिधर को भारत की रॉकेट वुमेन के रूप में जाना जाने लगा था। ऋतु करिधर और उनकी पूरी टीम को इसरो टीम अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी यह सफलता की कहानी हम सभी को यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं है, बल्कि उस सफ़र का नाम है जहां आप हर डर को पीछे छोड़ देते हैं, हर परेशानियों को पार कर जाते हैं। पर ऋतु करिधर का जीवन हमें केवल सफलताओं के बारे में नहीं सिखाता, केवल मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि हमें अपनी असफलताओं से भी सीखने के लिए प्रेरित करता है। हमें यह विश्वास दिलाता है कि अगर आप एक बार असफल हो जाते हैं

चांद था, और चांद का वह भाग जहाँ तक विश्व का कोई अन्य देश उस समय तक पहुँच नहीं पाया। जी हाँ, यह मिशन था चंद्रयान 2, जिसमें भारत का लक्ष्य चांद के दक्षिण ध्रुव पर जाकर अध्ययन करना था, और इसके अंदर ऋतु करिधाल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऋतु करिधाल इस के अंदर मिशन डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही थी, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थी मुथिया वनिता। और भारत का चंद्रयान मिशन 2 पहला ऐसा मिशन रहा जिसमें महत्वपूर्ण चरणों का समन्वय जिम्मेदारी दोनों महिलाओं के द्वारा संभाली गई। साथियों, कल्पना कीजिए एक और मंगलयान की ऐतिहासिक सफलता का अनुभव, और दूसरी ओर उससे भी अधिक कठिन मिशन की जिम्मेदारी। ऐसा समय किसी को भी विचलित कर सकता है, परंतु ऋतु कभी इस बात से विचलित नहीं हुई। उन्होंने हमेशा अपना 100% देने की कोशिश की। चंद्रयान 2 मिशन, जिसके 3 मुख्य हिस्से थे, ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, जिसे सितंबर 2019 में लॉन्च किया जाने वाला था, परंतु सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर चंद्रमा के बेहद करीब पहुंचा, लेकिन अंतिम चरण में लैंडर से संपर्क टूटने के कारण अपने मिशन में सफल ना हो पाया, और भारत का सॉफ्ट लैंडिंग का मिशन पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण करोड़ों देशवासियों का विश्वास डगमगा गया। संपूर्ण देश में निराशा का भाव फैल गया, परंतु ऋतु करिधाल उस समय जरा विचलित नहीं हुई। यह कठिन समय था और हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, मेहनत करते रहे, और उनकी इसी तरह की कोशिश की वजह से भारत का चंद्रयान 3 मिशन फिर से एक उसी लक्ष्य को लेकर उड़ान भरता है, और इस बार अपनी सफलता से भारत को चांद के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंचा देता है, और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन जाता है। इस तरह ऋतु करिधाल का जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी भी जीवन की चुनौतियों से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। जैसा कि प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता में भी कहा गया है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती।

हेलो जयपुर के वुमेन सेगमेंट में हमने देखा ऋतु करिधल का अब तक का मंगलयान का और चंद्रयान टू मिशन का एक सफ़र, जिसमें कहीं उन्हें सफलता मिली, कहीं असफलता मिली, कहीं उन्हें सीखने का मौका मिला, कहीं उन्हें महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिली। परंतु ऋतु करिधल का जीवन केवल विज्ञान के स्पेस मिशनों तक सीमित नहीं रहा। उन्हें स्पेस मिशनों के साथ साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका 20 से ज़्यादा रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में पब्लिश करने में भी करी और रिसर्च के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी यह सभी उपलब्धियां समाज के उन रूढ़िवादी विचारों पर एक प्रबल प्रहार करती है जो यह मानती है कि विज्ञान, गणित, अनुसंधान और इंजीनियरिंग जैसे विषय महिलाओं की समझ के बाहर के हैं, महिलाएँ इन विषय में कुछ नहीं कर सकती। ऋतु करिधल का आज का यह उदाहरण हमें यह बताता है कि महिलाएँ पुरुषों के समान ही गणित, विज्ञान, अनुसंधान और इंजीनियरिंग जैसे कार्य क्षेत्रों में कार्य कर सकती है और पुरुषों से भी बढ़कर योगदान दे सकती है। और उनकी प्रयास आनंद परम की कविता की इन पंक्तियों को यथार्थ साबित करती है कि कोशिश कर हर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। ऋतु करिधल ने अपने विज्ञान में योगदान के लिए कई अवार्ड से सम्मान भी प्राप्त किया। उन्हें वर्ष 2017 में वुमेन अचीवर्स इन एरोस्पेस का सम्मान प्राप्त हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट की उपाधि से भी ऋतु करिधल का सम्मान किया था। ऋतु करिधल सन 2024 में यूपी का गौरव सम्मान भी प्राप्त कर चुकी है और इनके विज्ञान क्षेत्र में समाज के लिए अमूल्य कार्यों को पहचान दिलाना अपने जीवन का लक्ष्य बन गया है। ऋतु करिधल का जीवन उस ऊंचाई तक पहुंचाता है जहां पर महिलाओं के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ गलत साबित होती है। ऋतु करिधल का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण सीख देता है, जैसे जिज्ञासा सफलता की पहली सीढ़ी है। हर बड़ा सपना एक छोटे से सवाल से शुरू होता है, जैसे कि ऋतु करिधल का स्वयं का सफ़र शुरू हुआ था। केवल एक छोटा सा सवाल कि चांद कभी आधा और कभी पूरा क्यों होता है, और इसी सवाल ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और ऋतु करिधल को भारत की रॉकेट वुमेन के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। जैसे ऋतु का सफ़र शुरू हुआ एक छोटे से सवाल से, तो अगर आप भी ऐसे ही जिज्ञासु हैं और अपने जीवन में उन छोटे से छोटे सवालों को संभाल कर रखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो क्या पता ये छोटे सवाल आपके बड़े भविष्य को आकार दे रहे हो। तो इन छोटे सवालों को अपने साथ संभाल के रखिए। तो चलो सुनते हैं एक छोटा सा गीत।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

आप सभी सुन रहे हैं हेलो जयपुर का कार्यक्रम FM बैंड 101.2 MHz पर। हमने अभी रितु करिधल के बारे में चर्चा की। रितु करिधल का जीवन हमें बहुत सी सीख देता है, जैसे कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यदि आपके पास कोई सपना है, कोई लक्ष्य है जिसे आप पाना चाहते हैं, तो उसे पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और निरंतर प्रयास ही आपको वह सफलता दिला सकते हैं। रितु करिधल ने कई असफलताओं का भी सामना किया, परंतु कभी भी उनसे विचलित नहीं हुई और उन असफलताओं से सीखती चली गई। और ऐसा ही यदि हम सब करते हैं, तो हम भी अपनी असफलताओं से आगे निकलकर एक मजबूत इंसान बन पाएंगे, जिससे आत्मविश्वास हम सभी के अंदर आएगा और आत्मविश्वास से बड़े लक्ष्य को साधना संभव हो जाता है। और इन सभी सीखों के अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो कि रितु करिधल के जीवन से हम सीख सकते हैं, वह है टीम वर्क का महत्व। रितु करिधल ने अलग अलग लोगों के साथ कार्य किया, अलग अलग समय उनके सामने नेतृत्व करने की चुनौतियाँ आई, परंतु उन्होंने अपनी टीम को पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने का सामंजस्य प्रदान किया। ऐसे ही रितु करिधल ने अपने स्पेस सेक्टर के अंदर महत्वपूर्ण योगदान को हमारे देश के लिए प्रस्तुत किया था। रितु करिधल की कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है। और उन्हें यह साबित भी कर दिया है कि आसमान सीमा नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। आज जब हम रात को आसमान की ओर देखेंगे, तो सिर्फ तारे नहीं देखेंगे, बल्कि हम रितु करिधल के उस संघर्ष, उस मेहनत और जुनून को भी देखेंगे जिसने उन तारों तक पहुंचने का रास्ता बनाया। रितु करिधल जैसी महिलाएं न केवल भारत की शान हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। वह आगे आने वाली पीढ़ियों को यह समझाती है, उसके लिए प्रेरित करती है कि विज्ञान लिंग भेद नहीं करता है। विज्ञान में महिला पुरुष समान रूप से भागीदारी निभा सकते हैं। और यह केवल विज्ञान की ही बात नहीं है, यह आज हर क्षेत्र के अंदर हमारी महिलाएं संभव करके बता रही है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर सपनों में सच्चाई हो और प्रयास में निरंतरता हो, तो कोई भी ऊंचाई असंभव नहीं है, कोई भी वह मंजिल नहीं है जिस तक आप पहुंच ना पाए। तो ये थी रितु करिधल की कहानी जो कि आपने सुनी हेलो जयपुर की वुमेन्स सेगमेंट में।

आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय 11 बजने को है और अब समय हो चुका है फरमाइशी फिल्म संगीत का। फरमाइशी फिल्म संगीत के लिए आप हमें अपने पसंदीदा गाने मोबाइल नंबर 2200600 या 2200700 पर भेज सकते हैं।

फरमाइशी फिल्म संगीतकार पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं जिंदा दिल फिल्म से अलका याग्निक की आवाज़ में, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

फरमाइशी फिल्म संगीत का अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं साजन का घर फिल्म से, आवाज़ कुमार सानू और साधना सरगम की। इस गीत की फरमाइश की है सांभर से प्रेम कुमार ने।

कार्यक्रम चल रहा है फरमाइशी फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत प्रस्तुत है नाम फिल्म से। आवाज़ें हैं पंकज उदास और साथियों की, बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश की है खुदाबक खलीफा ने बाड़मेर से गांव फलीदा की बावड़ी।

फरमाइशी फिल्म संगीत का अगला गीत आपको सुना रहे हैं ज्योति बने ज्वाला फिल्म से, जिसकी फरमाइश आई है रामनगर से ममता लखोटिया के द्वारा।

0: परमाइशी फिल्म संगीत का अगला गीत प्रस्तुत है सनम बेवफा फिल्म से, आवाज़ विपिन सचदेव की और बोल है सावन कुमार की, संगीत दिया है महेश किशोर ने। इस गीत की फरमाइश की है जबलपुर से अशोक सिंह ने।
1: ओ लाले दी जान गुले गुलजार रुक जा।

कार्यक्रम चल रहा है फरमाइशी फिल्म संगीत। फरमाइशी फिल्म संगीत का अगला गीत प्रस्तुत है बेताब फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और शबीर कुमार की। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया राहुल देव बुरमन ने। इस गीत की फरमाइश की थी सुनीता झालानी ने बरकत नगर जयपुर से।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। कार्यक्रम चल रहा है फरमाइशी फिल्म गीत, जिसके अंदर अगला गीत प्रस्तुत है रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और साथियों की। गीत के बोल लिखे वर्मा मलिक ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत की फरमाइश आई है अधिराम द्वारा कोटपुतली से।

विश्व फिल्म संगीत की अगली फरमाइश आई है मोहम्मद रफ़ी मुंगड़ा बालोत्रा से। ये सुनना चाहते हैं आज और कल फिल्म का गीत, जिसमें आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। गीत के बोल लिखे सहीर ने और संगीत बत किया रवि ने।

कार्यक्रम चल रहा है फरमाइशें फिल्म संगीत। कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है फिल्म एक नारी दो रूप से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये फरमाइश की है हेमा राठी शास्त्री नगर जयपुर के द्वारा।

फरमाइश हुई फिल्म संगीत की, अगली फरमाइश है असनान खान की सिक्कर से। ये सुनना चाहते हैं महबूब फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल लिखे आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने। तो ये रहा गीत आपके रेडियो सेट्स पे।

फरमाइशी फिल्म संगीत का अंतिम गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, फिल्म बेवफा से बेवफा। इस फिल्म में गीत में आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की, बोल सावन कुमार की और संगीत उषा खन्ना का। ये फरमाइश आई है मोहम्मद शाहरुख घाटगेट से।

तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम फरमाइशी फिल्म संगीत में। फरमाइशी फिल्म संगीत का यह सिलसिला अब यहीं समाप्त होता है। कल आपसे फिर मिलेंगे।

0: आपने सुना हेलो जयपुर कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के अमेर चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है, तब तब

0: चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं

भुगतानों के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक, यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं

परस्पर बातचीत अलावा इसके वार्ता सुनवाई जाएगी। काकोरी कांड की वर्षगांठ, काकोरी कांड के 100 वर्ष, वार्ताकार होंगे महेश चंद शर्मा। दिन में 2:30 पर सुनिएगा राजस्थानी लोक संगीत, कलाकार होंगे गिरधर प्रजापत। दिन में 3:30 से हम आपको सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनवाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गीत और भजन विजेंद्र गौतम से। फिल्म संगीत के कार्यक्रम होंगे दिन में 12:40 पर, दिन में 1:05 पर, दोपहर 3 से। अलावा इसके श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गाने आपके साथ कार्यक्रम में सुनेंगे शाम को 4 से। युवा साथी अपना युववाणी कार्यक्रम शाम 5 से सुनेंगे।

शाम को 7 बजे से सुनिएगा किसान वाणी कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे बातचीत उद्यानिकी में पादप वृद्धि नियामकों का प्रयोग, जानकारी देंगे राकेश कुमार शर्मा। इस बातचीत के अलावा लोकगीत सुनवाए जाएंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अलीना भारती से चंद गैर फिल्मी गज़लें।

आपने सुना मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ आबरू फिल्म का गाना। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब एक और गीत आपको मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ही सुनवा रहे हैं। इस गाने को हमने आमने सामने फिल्म से लिया है। गीत रचना आनंद बख्शी की है। इस गाने के लिए संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया है।

आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आखिर में हम आपको आन मिलो सजना फिल्म का गीत किशोर कुमार के स्वर में सुनवा रहे हैं। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं। इस गाने के लिए धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई है।

0: आपने सुना किशोर कुमार का गाया हुआ आन मिलो सजना फिल्म का गाना। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं। हम आपको बता दें कुछ और फिल्मी गाने आप हमारे केंद्र से दिन में 1:05 पर सुनेंगे। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। हमारे केंद्र से अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। दिन का 1 बजा चाहता है। कुछ ही पलों में आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज वे केवल अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर रहे हैं बल्कि जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से इस पल को पूरी तरह से जीने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में उन्हें परिसर में बिताए समय और यादों की कमी महसूस होगी। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और उनके सफल भविष्य की कामना की। प्रदेश में आगामी पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण और निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। हनुमानगढ़ में नगर परिषद की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत आज विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, अपात्र नाम हटाने और विवरण में संशोधन के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। वहीं पाली में जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्वाचन प्रकोष्ठों को सक्रिय करने और राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर बैठक करने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने लोगों से मॉनसून के दौरान अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया है। साथ ही लगाए गए पौधों को जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा है। वे आज बूंदी में सघन पौधरोपण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में 1100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पेड़ पौधे लगाने के साथ ही उनकी देखभाल और संरक्षण की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग ने पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान की नीति भी लागू की है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद हैं। इससे पहले पुलिस परेड ग्राउंड में अतिथियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज भीलवाड़ा के पॉलीटेक्निक कॉलेज में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया। मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 10 से 12 अगस्त के दौरान दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती इलाकों को छोड़कर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन मध्यम बारिश हो सकती है। इस बीच भरतपुर के बयाना में भारी बारिश के बाद बांध बारेठा में पानी की आवक बढ़ गई है। बांध में जलस्तर भराव क्षमता के नजदीक पहुंच गया है। जल संसाधन विभाग ने कुकुंद नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले करीब 50 गांवों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों से नदी नालों से दूर रहने और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की अपील की गई है। प्रशासन के अनुसार बारिश जारी रहने पर बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। पिछले 24 घंटे में अलवर के थाना गाजी में सबसे अधिक 93 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पिछले 28 कार्य दिवसों में 14 भर्तियों के अंतिम परिणाम जारी किए हैं। आयोग के अध्यक्ष कर्नल केसरी सिंह ने बताया कि इस अवधि में 11 विचारित सूचियां और साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थियों की 36 सूचियां भी जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि आयोग युवाओं के भविष्य और उनके समय की अहमियत को समझता है। भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरा करना आयोग की प्राथमिकता है। जुलाई 2026 से अब तक जारी अंतिम परिणामों में चिकित्सा शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और संस्कृत कॉलेज शिक्षा से जुड़े विभिन्न पद शामिल हैं। भारतीय भुगतान परिषद पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में अब आपको जीवन धारा फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। युगल स्वर आशा भोसले और सुरेश वाडकर के हैं। गीत रचना आनंद बख्शी की। इस गाने के लिए धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई है।

जो गीत अब आप सुनेंगे उससे हमने काला पत्थर फिल्म से लिया है। गाने में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें आप सुनेंगे। साहिर की इस गीत रचना के लिए संगीत राजेश रोशन का है।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं। कन्हैया फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। गीत में आवाज़ें लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की हैं। शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा, गाने के लिए संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे गुलजार की गीत रचना। इसके लिए संगीत खय्याम ने दिया है। थोड़ी सी बेवफाई फिल्म के इस गाने में आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं।
1: लाख कस्में दी, लालच दिए, पर जाने वाले लौटे नहीं। सिर्फ राहों पे उड़ते हुए सन्नाटों का गुबार छोड़ गए। कब तक कोई सन्नाटे फांकता रहे? जिंदगी तो चलती रहती है, सिर्फ गिले रह जाते हैं। और वफाओं पे झुके हुए सजदे, शायद कोई आए, कोई आवाज दे कहीं से।

आज की फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको पहली फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। गीत को हेमलता और सुरेश वाडकर ने गाया है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: हेमलता और सुरेश वाडकर के गाए पहली फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला जगत कार्यक्रम।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

उनकी छोटी छोटी खुशियां, अपनों की मुस्कान, किसी की मदद करना, एक स्नेहिल शब्द या मन से किया गया धन्यवाद, यही हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। इन्हीं छोटी छोटी खुशियों का महत्व अगर हम समझ जाएं, तो जीवन का हर पल आनंदमय हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, दुख के पल अगर हम ये सोचकर जिएं कि ये जो समय है ये बहुत अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, आने वाली खुशियों के पल हमें जरूर मिलेंगे, तो हर पल में हमें सुकून होगा और हमारे चेहरे पर मुस्कान होगी। खुशियां हमारे अंदर निहित होती हैं, इसे अगर हम बाहर ढूंढेंगे तो वो शायद हमें कभी ना मिले। और खुशियों के महत्व को समझने के लिए भी सखियों, आज का दिन बहुत खास है। 8 अगस्त हैप्पीनेस हैपेंस डे के रूप में हम जानते हैं, और ये दिन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता अपनाएं और अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटें। वैसे ये एक दिन का विषय नहीं है, हमें हर पल यही कोशिश करनी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, हमें हमेशा यही सोचना है कि जो पल आज हमें कठिन लग रहा है, मुश्किल भरा लग रहा है, दुख भरा लग रहा है, वो पल बहुत समय तक नहीं रहने वाला। तो बस यही खुशी की एक वजह अगर हम महसूस कर लें तो हर पल हमारा खुशनुमा हो जाएगा। तो प्यारा सा संकल्प तो सखियों हम ले ही सकते हैं कि हम अपने शब्द, अपने व्यवहार और अपने स्नेह से किसी न किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि सच्ची खुशी वही है जो बांटने से बढ़ती है। इसी सकारात्मक सोच और मुस्कान के साथ कार्यक्रम का हम आगाज करते हैं, और एक प्यारा सा गीत है ना, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ ही।

0: स्वागत है एक बार फिर से। कार्यक्रम है महिला जगत स्टूडियो से आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो सखी सोनल। सखियों, ये बात तो हम सभी समझते हैं कि जिस देश की बेटियां जागरूक हों और नागरिक अपने इतिहास को याद रखें, उस देश का भविष्य सदैव उज्जवल रहता है। स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं बल्कि हर पीढ़ी की जिम्मेदारी भी है। और आज हम बात कर रहे हैं हमारी आजादी के इतिहास के दो महत्वपूर्ण पड़ावों की, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ और साथ ही गोवा क्रांति दिवस। जी हाँ, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टेंट मैदान से करो या मरो का ऐतिहासिक आह्वान किया था। ये केवल एक नारा नहीं था बल्कि पूरे देश को स्वतंत्रता के लिए एकजुट करने का संकल्प था। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता और असंख्य वीरांगनाओं ने साहस, नेतृत्व और देशभक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। सखियों, इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त कर भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना था। गांधी जी सहित अनेक बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद पूरे देश में जन आंदोलन फैल गया। छात्रों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कई स्थानों पर लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, हड़तालें की और अंग्रेजी शासन का विरोध किया। यद्यपि ये आंदोलन तत्काल स्वतंत्रता नहीं दिला पाया, लेकिन इसने अंग्रेजी शासन को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब भारत पर अधिक समय तक शासन करना संभव नहीं है। इसी आंदोलन ने स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई को नई दिशा दी और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए अंतिम और निर्णायक संघर्ष करना होगा। इसीलिए उन्होंने देशवासियों से कहा कि वे अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजी शासन का हर स्तर पर विरोध करें। भारत छोड़ो आंदोलन हमें ये सिखाता है कि जब किसी राष्ट्र के नागरिक एकजुट होकर अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आज स्वतंत्र भारत में हमारा दायित्व है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखें। और इसी क्रम में हम याद करते हैं गोवा क्रांति दिवस। जी हाँ, जो हमें पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति के लिए हुए संघर्ष की याद दिलाता है। गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों ने वर्षों तक संघर्ष किया और अंततः 1961 में गोवा स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना। यह दिवस हमें बताता है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर जागरूकता, एकता और साहस आवश्यक है। और आज के इस कार्यक्रम से हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनके त्याग और बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, जिनके त्याग और बलिदान ने हमें स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया। उनके आदर्श हमें सदैव देश प्रेम, सेवा और राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा देते रहेंगे। तो हमारा संकल्प खुद से यही होना चाहिए कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास का परिचय भी कराएंगे। तभी तो शहीदों के सपनों का भारत तभी साकार होगा जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों का सम्मान करेगा। देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कर्म, संस्कार और व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ सखियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और मिलकर सुनते हैं एक वार्ता। 9 अगस्त अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, इसी विषय पर ये वार्ता हम सुनते हैं। वार्ताकार हैं महेश चंद्र शर्मा।
1: देश को ब्रिटिश राज से मुक्ति दिलाने में बेशक अहिंसक आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन इसमें क्रांतिकारियों के सशस्त्र आंदोलनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन हो या काकोरी एक्शन प्लान, देश की आज़ादी के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ऐसे वीरों की शहादत की स्मृति में हर साल देश में 9 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 100 साल हो गए हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जान न्योछावर करने वाले खुदीराम बोस पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें ब्रिटिश राज ने 11 अगस्त 1908 में केवल 18 साल की उम्र में बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी थी। उनका जन्म बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था में माता पिता का निधन होने से उन्हें बड़ी बहन ने पाला पोसा था। 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर जंगे आज़ादी में वे कूद पड़े, रिवॉल्यूशन पार्टी के सदस्य बने। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद छिड़े आंदोलन में कई कार्यक्रमों दौरान वे वंदे मातरम के पर्चे बांटते रहे। पहले 28 फरवरी 1906 में पुलिस की पकड़ से भाग निकले, फिर 16 मई 1906 को पकड़े गए, लेकिन कम उम्र होने की वजह से चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर हुए बम विस्फोट में भी वे शामिल थे। युगांतर क्रांतिकारी नेता वीरेंद्र कुमार घोष के संपर्क में आए, जो मुजफ्फरपुर बिहार के अत्याचारी अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद को चुना। दोनों मुजफ्फरपुर पहुँचे और किंग्सफोर्ड की प्रत्येक गतिविधियों पर निगाह रखी।

0: किंग्सफोर्ड के निवास के पास ही क्लब था जहां वे रोज शाम को परिवार के साथ क्लब जाते थे। 30 अप्रैल 1908 को रात 8:30 बजे जब मिसेज कैनेडी और उनकी बेटी लाल बग्गी में बैठकर क्लब से घर लौट रही थी, उसमें किंग्सफोर्ड के होने का अंदेशा था। खुदीराम ने बग्गी पर बम फेंक दिया जिसमें मिसेज कैनेडी और उनकी बेटी मारी गई, लेकिन किंग्सफोर्ड इसलिए बच गए कि वे कुछ देर बाद क्लब से घर लौटे थे। किंग्सफोर्ड के मारे जाने का अनुमान लगाकर दोनों क्रांतिकारी भाग निकले। 25 मील दूर जाकर पूसा रोड रेलवे स्टेशन, जो अब खुदीराम बोस के नाम पर है, पहुंचे। वहां पुलिस ने उन्हें घेर लिया। प्रफुल्ल चंद ने तो खुद को गोली मार ली, पर खुदीराम पकड़े गए। उन पर 8 जून 1908 को हत्या का मुकदमा चला। मुकदमा 5 दिन चला और उन्हें 13 जून को मौत की सजा सुना दी गई। 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। शहादत के बाद वे इतने लोकप्रिय हुए कि बंगाल के जुलाहे उनके नाम की एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। विस्फोट की धमक पूरे देश में गूंजती हुई ब्रिटेन और समूचे यूरोपीय महाद्वीप तक जा पहुंची। आज के दिन ही ठीक 100 साल पहले महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आज़ाद, मन्मथ नाथ, बनवारी लाल, केशव और मुरारी लाल ने काकोरी एक्शन प्लान को अंजाम देकर ब्रिटिश शासन को न केवल चुनौती दी बल्कि अपनी शहादत की बदौलत देश के युवाओं में देशभक्ति का संचार भी कर दिया था। ये सभी क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य थे। इस पार्टी का लक्ष्य सशस्त्र तथा संगठित क्रांति के जरिए भारत में एक प्रजातांत्रिक संघ स्थापना के साथ शोषणहीन शासन प्रणाली स्थापित करना था, जिसमें सभी प्रांतों को अपने घरेलू विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता, प्रत्येक वयस्क को मताधिकार प्रदान करना था। सशस्त्र क्रांति के लिए हथियार जुटाने थे जिसके लिए धन प्राप्ति जरूरी थी। अंग्रेज शासक भारतीयों पर जुर्म ढाते, उनसे जबरन धन वसूली करते थे। क्रांतिकारियों की सोच थी कि क्यों ना अंग्रेज शासन के खजाने को लूटकर ही हथियार खरीदे जाएं, जिन्हें पूरे देश में क्रांतिकारियों तक पहुंचाया जाए, जो अंग्रेज अफसरों को निशाना बनाएं, ताकि अंग्रेज घबराकर भारत छोड़ने को मजबूर हो जाएं। अतः 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी के पास आठ डाउन सहारनपुर लखनऊ रेलगाड़ी को आउटर सेक्शन पर रोककर अंग्रेजों का खजाना लूटने की रणनीति बनाई गई। दल का नेतृत्व रामप्रसाद बिस्मिल ने किया। चेन खींचकर रेलगाड़ी रोकी, सशस्त्र हस्तक्षेप कर ब्रिटिश सरकार के खजाने के 4,669 रुपए एक आना 6 पैसे लूट लिए। इस अप्रत्याशित घटना ने अंग्रेजी शासन को न केवल चिंतित किया बल्कि उसे काफी हद तक डरा भी दिया। विशेष जांच टीम गठित की गई। बाद में क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां हुई। मुकदमे की सुनवाई लखनऊ के स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में 9 मार्च 1927 तक हुई। ब्रिटिश कोर्ट के जज लुईस स्टुअर्ट ने इस घटना को एक भयंकर साजिश की शुरुआत माना। फैसला सुनाया गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मोहम्मद अशफाक खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी, दो को कालापानी सहित 16 अन्य लोगों को 4 से 14 वर्ष तक अलग अलग सजाएं सुनाई गई। यह हकीकत है कि 4,000 रुपये की लूट पर कार्रवाई करने के लिए सरकारी कवायद पर ब्रिटिश सरकार के 8,00,000 रुपये खर्च हुए। बाद में 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, 19 दिसंबर को रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला को फैजाबाद में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दे दी गई। फांसी से पूर्व इस एक्शन प्लान के सभी कैदियों पर, चूंकि राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप था, उन्हें राजनीतिक कैदियों के बतौर मिलने वाली सुविधाओं को लेकर देशव्यापी आंदोलन भी छेड़ा गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित करके काकोरी एक्शन प्लान के कैदियों के साथ विशेष व्यवहार किए जाने की मांग की। 22 जून 1927 को संयुक्त प्रांत की काउंसिल में भी यह सवाल बड़े जोर शोर से उठाया गया। पंडित मनमोहन मालवीय और पंडित गोविंद वल्लभ पंत आदि अनेक नेताओं ने प्रांतीय गवर्नर और यहाँ तक कि वायसराय से मिलकर इन क्रांतिकारियों की सजाएं कम करने की प्रार्थना की, किंतु सभी प्रार्थनाएं अस्वीकार कर दी गई। इतना अवश्य हुआ कि इन सब कार्यवाहियों की वजह से फांसी की पहली तारीख जो 16 सितंबर थी वह पहले 18 अक्टूबर हुई और अंततः 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। अशफाक ने फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले शेर पढ़ा, फना है हम सबके लिए, हम पे कुछ नहीं मौकूफ, बका ए फकत जाने की ब्रिया के लिए, तंग आकर हम उनके जुल्म से बेदाद से, चल दिए सुए अदम जिंदा ने फैजाबाद से। रामप्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम और भारत माता के नारे लगाने के बाद फांसी के तख्ते पर शेर पड़ा, अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की अड़सत अब दिले बिस्मिल में है। बिस्मिल के जेल में रहते हुए सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त आदि अनेक नवयुवक सक्रियता से इस दल से जुड़ गए थे। बाद में भगत सिंह के नेतृत्व में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना कर दिया गया था।
1: सखियों, अभी हमने सुनी वार्ता और वार्ताकार थे महेश चंद्र शर्मा। सखियों, कहते हैं जो अपने कर्म से इतिहास लिखते हैं वही युगों तक प्रेरणा बन जाते हैं, और जो अपनी लेखनी से समाज को आईना दिखाते हैं वो कभी समय की धूल में नहीं खोते। जी हाँ, आज हम ऐसे ही दो महान विभूतियों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। एक ओर भारत के चौथे राष्ट्रपति, श्रमिकों के अधिकारों के समर्थक और सादगी के प्रतीक वराहगिरी वेंकटगिरी, जिन्हें हम वीवी गिरी के नाम से जानते हैं, और दूसरी ओर हिंदी साहित्य के यशस्वी कथाकार, नाटककार और संवेदनशील चिंतक भीष्म साहनी। 8 अगस्त 1915 को हम एक महान हिंदी साहित्यकार भीष्म साहनी जी की जयंती मनाते हैं। एक अमर लेखक जिनकी लेखनी ने समाज की सच्चाइयों को अत्यंत सहज भाषा में हमारे सामने रखा। वे केवल लेखक नहीं थे बल्कि एक संवेदनशील समाज चिंतक भी थे। उनका प्रसिद्ध उपन्यास तमस आज भी भारतीय साहित्य की महान कृतियों में गिना जाता है। इसमें इन्होंने सांप्रदायिकता, विभाजन की पीड़ा और मानवीय संवेदनाओं को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी रचनाएं हमें ये सिखाती हैं कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी मानवता है। और आज के कार्यक्रम महिला जगत के इस मंच से भीष्म साहनी जी को याद करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी कहानियों में महिलाओं के संघर्ष, आत्मसम्मान और सामाजिक वास्तविकताओं का सशक्त चित्रण मिलता है। वो मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने का दायित्व भी निभाता है। साथ ही अगर हम बात करें वीवी गिरी जी की, जिनकी जयंती हम मनाते हैं 10 अगस्त को, उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व सत्ता से नहीं बल्कि सेवा, संघर्ष और ईमानदारी से जन्म लेता है। वीवी गिरी जी का जन्म 1894 में हुआ। इन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिए आजीवन कार्य किया और स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति बने लेकिन उनकी पहचान हमेशा एक जनसेवक और कर्मयोगी की रही। इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब समाज का प्रत्येक वर्ग सम्मान और न्याय के साथ आगे बढ़ सके। महिलाओं के संदर्भ में भी उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और आत्मनिर्भरता मिले। आज की महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, साहित्य, खेल और उद्यमिता हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। ऐसे में वीवी गिरी जी के आदर्श हमें सामाजिक समानता और कर

कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देते हैं। यदि हम इन दोनों व्यक्तित्व को एक साथ देखें तो पाएंगे कि एक ने अपने कर्म से समाज को दिशा दी और दूसरे ने अपनी लेखनी से समाज को जागरूक किया। एक ने श्रमिकों और लोकतंत्र की आवाज को बुलंद किया तो दूसरे ने मानवीय संवेदनाओं को शब्द दिए। आज की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में ईमानदारी, संवेदनशीलता, समानता और कर्तव्य निष्ठा जैसे मूल्यों को अपनाएं। क्योंकि बात तो सही है कि कलम हो या कर्म, दोनों का उद्देश्य एक होना चाहिए। समाज में प्रेम, समानता और विश्वास का दीप जलना चाहिए। महान वही नहीं जो ऊंचे पद पर पहुंच जाए, महान वो है जो अपने जीवन से दूसरों का मार्ग प्रकाशित कर जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ सखियों, समय हो चला है कि हम ले आपसे अनुमति। फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए इजाजत आपकी अपनी रेडियो सखी सोनल को। करती हूँ नमस्कार।

0: His comments come amid a legal dispute over the construction project. A federal appeals court has blocked work on the proposed White House ballroom. Trump has described the court ruling as a national security threat and a national disgrace, and said his administration would challenge the decision before the U.S. Supreme Court. At least three people, including a child, have been killed in overnight Russian missile strikes near the Ukrainian capital Kyiv. The attacks hit areas east of Kyiv in the early hours today. Regional Military Administration Chief Temur Kachenko said three people were also injured in the ballistic missile strikes. India opened its medal account on the third day of the World Athletics Under-20 Championships in Eugene, USA, with Ashish Yadav winning silver in the men's javelin throw. The 19-year-old produced his best effort of 74.09 meters in his third attempt to finish second. Ashish became only the second Indian after Neeraj Chopra to win a silver in the event at the World Athletics Under-20 Championships. South Africa's Jan Hendrik Heymans won the gold with a throw of 80.5 meters. Indian shuttler Ashmita Chaliha has reached the women's singles final of the Korea Masters Super 300 Badminton Tournament in Asan, South Korea. Ashmita defeated fellow Indian Rakshita Ramraj in the semi-final today. Ashmita will face China's Qiu Han in the women's singles final tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat. Urges IIT students to keep national interests at the center of their decisions. Jharkhand government holds a second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and GSSE examinations. Seven people killed and 11 injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Orissa today. Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal suspended due to bad weather conditions. And in men's javelin throw, Ashish Yadav wins silver at World Athletics Under-20 Championships in United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर

0: निर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही CID ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी

0: समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र के शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
1: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
3: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं गिरधर प्रजापत।
5: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
6: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
7: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

0: राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं गिरधर प्रजापत।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

आपने सुना राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार थे गिरधर प्रजापत। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव और FM बैंड पर। दिन के 3 बजे हैं। डीजी अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत त्रिशूल फिल्म के गाने से कर रहे हैं। आवाजें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशोदास की। साहिर के लिखे इस गाने के लिए खय्याम ने संगीत तैयार किया है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको मक्कार फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। गाने को लता मंगेशकर और मन्ना डे ने गाया है। अमित खन्ना के लिखे इस गाने के लिए संगीत राजेश रोशन का है।

0: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए वर्मा मलिक की गीत रचना, जिसके लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है। नागिन फिल्म के इस गाने में आप मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें सुनेंगे।
1: हालत कुछ अपनी भी ऐसी है मेरी जान, लेकिन कश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं। ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। उफ़, तुम्हारी आंखें, आज तुम्हारी आंखें प्यार के शरारे बरसा रही हैं, और इनकी ताब लाने के लिए मुझे सहारा चाहिए, जाम का। अगर आपकी इजाजत हो तो
2: आज तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन जल्दी।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं। लता मंगेशकर का गाया हुआ लीजिए अब सुनिए लोफर फिल्म का गाना। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा, गाने के लिए धुन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने बनाई है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको आनंद बख्शी का रचा हुआ गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर सुनवा रहे हैं। जब जब फूल खिले फिल्म के इस गीत को मोहम्मद रफ़ी ने गाया है।

आज की फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के आखिर में जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने पाकीज़ा फिल्म से लिया है। गीत की गायिका है लता मंगेशकर। कमाल अमरोही के लिखे इस गाने के लिए संगीत गुलाम मोहम्मद ने दिया है।

लता मंगेशकर के गाए पाकीज़ा फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं विजेंद्र गौतम। आप सुनेंगे इनके गाए गीत और भजन।

आपने सुना सुगम संगीत कलाकार थे विजेंद्र गौतम। आपने सुने इनके गाए गीत और भजन। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं आपके साथ कार्यक्रम में। अब श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के फिल्मी गाने।

आपने सुना बदलते रिश्ते फिल्म का गीत? आवाजें थी किशोर कुमार, अनुराधा पौडवाल और साथियों की। गाने को सुनना चाहा था गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मास्टर मनीष और इनके साथियों ने। आपके साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको गुड्डू फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं कुमार सानू और देवकी पंडित की। मजरूह सुल्तानपुरी ने जिस गाने को लिखा है, गाने के लिए संगीत नौशाद का है। गीत को सुनवाने का अनुरोध हमें प्राप्त हुआ मालवीय नगर जयपुर से शैलेश सोमानी का।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आपके साथ कार्यक्रम में श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुन रहे हैं। श्रोताओं, आप भी अपनी पसंद का कोई फिल्मी गाना हमारे इस कार्यक्रम में सुनने की ख्वाहिश रखते हैं तो आप इसके लिए हमें फ़ोन करके अपनी पसंद का फिल्मी गाना नोट करवा सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर से 2200600, दूसरा नंबर है 2200700। इन नंबर से पहले जयपुर का एसटीडी कोड आपको लगाना है 0141। तो चलिए, अब हमें इंतज़ार है आपके टेलीफोन कॉल्स का। फ़िलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको मन की आंखें फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। साहिर लुधियानवी के लिखे गाने के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। गीत को सुनवाने के लिए फ़ोन कॉल हमें प्राप्त हुआ खलीफा की बावड़ी बाड़मेर राजस्थान से खुदाबख्श खलीफा और इनके साथियों का।

आपके साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको कुछ कुछ होता है फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। इस गाने को समीर ने लिखा है, गाने के लिए धुन जतिन ललित ने बनाई है, गीत में आवाजें उदित नारायण, अलका याग्निक और मनप्रीत अख्तर की हैं। गाने को सुनना चाहते हैं अलवर राजस्थान से कैलाश चंद सैनी।

आपके साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको चमत्कार फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आवाजें आशा भोसले और कुमार सानू की हैं। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने के लिए संगीत अन्नू मलिक ने दिया है। गाने को सुनवाने का अनुरोध हमें फ़ोन से प्राप्त हुआ। रामगंज बाज़ार जयपुर से फरदीन कुरैशी, बाबूदीन कुरैशी और इनके साथियों का।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आपके साथ कार्यक्रम में श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको नारायण पटेल और कांतिलाल पटेल की पसंद पर अमीर गरीब फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे। इस गाने के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। आपका फ़ोन कॉल हमें प्राप्त हुआ जौहरी बाजार जयपुर से।
1: खड़ी हो जा।

आपके साथ कार्यक्रम में अब हिदा की मोरी जयपुर से आफरीन की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। आपने सुनना चाहा है बेवफा फिल्म का गाना। इस गाने को गुलाम अली ने गाया है, गीत रचना समीर की है, गाने के लिए संगीत नदीम श्रवण ने दिया है।

आपके साथ कार्यक्रम में जो गीत अब आप सुनेंगे उसे हमने फूल और कांटे फिल्म से लिया है। आवाजें कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की हैं। रानी मलिक के लिखे इस गाने को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। गीत को सुनवाने का अनुरोध है बाबू का टीबा गलता गेट जयपुर से सानिया और हियापू का।

फरमाइशी फिल्मी गानों के कार्यक्रम आपके साथ में आगे बढ़ते हैं और अब आपको मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ हकीकत फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। कैफ़ी आजमी साहब के लिखे इस गाने के लिए संगीत मदन मोहन ने दिया है। गीत को सुनवाने के लिए फ़ोन कॉल हमें प्राप्त हुए सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास, कोठी कोलियान जयपुर से लाला, सांगनेरी गेट जयपुर से मंजूरन और तसीरन।

आपके साथ कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए खुददार फिल्म का गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। जमीर काजमी के लिखे इस गाने के लिए संगीत अन्नू मलिक का है। गाने को सुनवाने का अनुरोध हमें प्राप्त हुआ शिमला से राकेश और इनके साथियों का।

प्यार झुकता नहीं फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। SH बिहारी ने इस गाने को लिखा। गाने के लिए धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई है। गीत को सुनवाने का अनुरोध हमें चाकसू से प्राप्त हुआ, राम सिंह चौहान और अंकित भाटी का।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपके साथ आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आप सभी के फेवरेट शो युववाणी में, और मैं हूँ आप सभी की दोस्त आशी। रोज़ की तरह हम आज भी आप सभी से करने वाले हैं ढेर सारी चर्चा और सुनने वाले हैं खूबसूरत खूबसूरत से गाने। श्रोताओं, आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है, आज है क्विट इंडिया मूवमेंट डे, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे शो में। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ में।

आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूँ आशी। दोस्तों, आज का दिन हमें याद दिलाता है एक ऐसे चैप्टर की जब एक पूरी जनरेशन ने फ्रीडम के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942, वो वक्त जब देश के लोगों के अंदर आज़ादी की होप और डिटर्मिनेशन दोनों स्ट्रांग हो रहे थे। इसी मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी ने एक पावरफुल मैसेज दिया, डू और डाई। लेकिन दोस्तों, आज के यूथ के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट का मीनिंग क्या है? ऑब्वियसली आज हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हैं, लेकिन एक चीज़ सेम है, चेंज की पावर। आज हमारे पास एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, आइडियाज़ है और अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म्स भी हैं। तो क्यों ना हम अपनी इस पावर को कुछ पॉजिटिव करने में यूज़ करें। पैट्रियोटिज्म सिर्फ देशभक्ति सॉन्ग सुनना या स्पेशल डेज पर स्टेटस लगाने तक सीमित नहीं है। पैट्रियोटिज्म तब भी है जब हम अपने काम को ऑनेस्टली करें, किसी की हेल्प करें, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझें और सोसाइटी को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। एक ब्यूटीफुल थॉट है, द यूथ आर नॉट जस्ट द फ्यूचर ऑफ ए नेशन, दे आर द एनर्जी ऑफ इट्स प्रेजेंट। और महात्मा गांधी जी ने भी एक खूबसूरत बात कही है, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। तो आज क्विट इंडिया मूवमेंट को याद करते हुए हम भी एक स्मॉल प्रॉमिस करें, अपने ड्रीम्स को सीरियसली लेंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, डिफरेंसेस के बावजूद एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी एनर्जी को किसी मीनिंगफुल काम में लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आज़ादी सिर्फ एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और याद रखिए, देश की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी बाउंड्रीज में नहीं, उसके यंग माइंड्स के ड्रीम्स और एक्शंस में भी होते हैं। तो अपने ड्रीम्स को चेस कीजिए, अपनी वॉइस को पॉजिटिव रखिए और जहाँ पॉसिबल हो वहाँ एक छोटा सा डिफरेंस क्रिएट कीजिए। आप सुन रहे हैं युववाणी।

श्रोता, हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, एक ऐसी चीज़ की जो हमारी डेली लाइफ का ऑलमोस्ट परमानेंट पार्ट बन चुका है, सोशल मीडिया। सुबह आँख खुलती है, नोटिफिकेशन चेक, फ्री टाइम मिला स्क्रॉल, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ स्टोरी, और कभी कभी तो बिना किसी रीज़न के भी बस स्क्रॉल। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास करने के लिए है? बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया एक टूल है, और कभी भी टूल की वजह से इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उसका यूज़ कैसे करते हैं। आप एक स्टूडेंट हो तो सोशल मीडिया से न्यू स्किल सीख सकते हो, किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो एक्सपर्ट्स को फॉलो करके नॉलेज गेन कर सकते हो, कोई टैलेंट है तो अपना वर्क दुनिया तक पहुंचा सकते हो, और अगर किसी सोशल इशू के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करनी है तो एक सिंपल पोस्ट भी किसी तक मीनिंगफुल मैसेज पहुंचा सकती है। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस समझना ज़रूरी है, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना और सोशली मीनिंगफुल होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हर ट्रेंड फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, हर ओपिनियन पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, हर वायरल इन्फॉर्मेशन को बिलीव करना भी ज़रूरी नहीं है, कभी कभी पॉज करना भी स्मार्टनेस है। पोस्ट करने से पहले सोचिए, क्या ये सच है, क्या ये यूज़फुल है, क्या ये किसी को अननेसेसरी हर्ट तो नहीं करेगा, बिकॉज और डिजिटल फुटप्रिंट भी हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन रहा है। तो यूथ, सोशल मीडिया को अपने डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं, डायरेक्शन बनाइए। स्क्रॉल कीजिए बट कुछ सीखने के लिए, कनेक्ट कीजिए बट कुछ मीनिंगफुल शेयर करने के लिए, क्रिएट कीजिए सिर्फ कंज्यूम नहीं। बिकॉज द गोल शुडंट बी टू बिकम फेमस ऑन सोशल मीडिया, द गोल शुड बी टू मेक योर प्रेजेंस मीनिंगफुल। आज एक स्मॉल चैलेंज, अपनी फीड में एक ऐसी चीज़ ऐड कीजिए जो आपको कुछ सिखाए, इंस्पायर करे या आपके किसी काम है। बिकॉज चेंज के लिए हमेशा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, कभी कभी एक स्मार्टफोन, एक आइडिया और एक रिस्पॉन्सिबल यूथ ही काफ़ी है। बस इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ में शो को आगे बढ़ाते हैं, पर उससे पहले सुनते हैं खूबसूरत सा गाना।

श्रोताओं, अब वक्त है इंपॉर्टेंट सेगमेंट रोजगार सूचना का। आज की पहली रोजगार सूचना BPSSC की तरफ से फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए 16 पद पे आवेदन निकाले गए हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख रहने वाली है 16 अगस्त 2026 तक, और इसके लिए आयु सीमा रखी गई है 21 से 35 साल। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर। वेबसाइट एक बार फिर से bpssc.bihar.gov.in पर। श्रोता, रोजगार सूचना का सिलसिला जारी रहेगा, उससे पहले सुनिए ये खूबसूरत सा गाना।

0: श्रोताओं, आज की अगली और आखिरी रोजगार सूचना हाईकोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन निकाले गए हैं, जिसके लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है और आयु सीमा रखी गई है 18 से 40 वर्ष, और इसके लिए आखिरी तारीख रहने वाली है 10 अगस्त 2026। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें। आज के लिए रोजगार सूचना में इतना ही।
1: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
0: श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम युववाणी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम युववाणी। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं थानेदार फिल्म का गीत, बपी लहरी, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत से सजाया है बपी लहरी ने।

0: वंस अपॉन ए टाइम इन द मुंबई दोबारा, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जावेद बशीर की आवाज़ में। रजत अरोरा का लिखा गीत है और इसे संगीत से सजाया है प्रीतम ने।
1: इश्क वो

जन्नत टू, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं निखिल डिसूजा की आवाज़ में। सईद कादरी के लिखे बोल हैं, प्रीतम का संगीत।

द डर्टी पिक्चर, यह है फिल्म का नाम। सुनिधि चौहान की आवाज़ में जिसका गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, रजत अरोरा का ये गीत लिखा हुआ है और संगीत है विशाल और शेखर का।

रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस,

0: AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल, साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
4: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 6:05 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। शाम 6:43 पर कार्यक्रम होगा जिले की चिट्ठी।

कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन हम आपको सुनवाएंगे रात 8:30 पर। रात 9:30 पर सुनिए राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती

0: रात 10 बजे सुनिए संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर शाम के 6 बजने को है। अब से थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया है। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक प्रमुख संगठन है। उन्होंने मुंबई फोर्ड क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नाविकों, नौवहन कंपनियों, बंदरगाहों, सेवा प्रदाताओं और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों को पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि ये आंकड़ा दर्शाता है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति कर रहा है। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कोर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
3: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हूती विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं हम दोनों फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। साहिर के लिखे बोल हैं, जयदत्त का संगीत।

पाकीज़ा फ़िल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। कमाल अमरोही ने इस गीत को लिखा है, संगीत से सजाया है गुलाम मोहम्मद ने।

दिल एक मंदिर, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है, संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं गाइड फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है, संगीत से सजाया है एस डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर के गाए गाइड फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। आपसे कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियात और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्का इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोरा इकराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहिसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग।

0: تشہیر جس کا مقصد ہے وہ ہے آپ کا اپنا ڈی ڈی اردو چینل۔
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति को विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बताया। सोशल मीडिया के युग में विद्यार्थियों से दूसरों से तुलना करने से बचने को कहा। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार। पिछले 12 सालों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 400% बढ़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी को 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर मॉनसून सक्रिय, कल सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है। श्री मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के दौर की चुनौतियां अलग है। हालांकि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन सहित अन्य क्षेत्र देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। युवाओं की आत्मनिर्भरता की यह पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा। लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में नजर आने वाले विकर्षणों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
2: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में भारत ने 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 12 सालों में देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की बढ़ोतरी हुई है। श्री जोशी ने कहा कि गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी का ये आंकड़ा बताता है कि भारत स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल भविष्य के निर्माण में वैश्विक प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि न्याय व्यवस्था को प्रभावी और मजबूत बनाने में अधिवक्ताओं, विधि अधिकारियों और लोक अभियोजकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सशक्त न्याय व्यवस्था की आधारशिला है। श्री शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर विधि और विधिक कार्य विभाग की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में विधिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार कानून और न्याय व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विधिक क्षेत्र से जुड़े सभी कार्मिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
3: हम सभी जानते हैं कि हमारे लोक अभियोजकों का न्याय प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। न्याय व्यवस्था पर आमजन का विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति को समय पर न्याय मिले, कानून का शासन मजबूत हो। इस दिशा में आप सभी का योगदान, संवेदनशीलता, प्रभावी न्याय व्यवस्था मिले।
1: मुख्यमंत्री निवास पर इसी समय विभिन्न जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग

0: जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि रैली के निर्धारित मार्ग पर सुरक्षा और यातायात प्रबंधन सहित अन्य इंतजाम किए गए हैं। उधर सभी जिलों में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में बाड़मेर में तिरंगा प्रभात फेरियां निकाली जाएगी। उधर जालौर में भी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए नागरिकों में देशभक्ति का संचार किया जाएगा। आज भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ है। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था, जो स्वाधीनता संग्राम का ऐतिहासिक और निर्णायक पड़ाव बना। इसने देश की आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा प्रदान की। महात्मा गांधी के करो और मरो के आह्वान ने देश भर के लाखों भारतीयों को एकजुट करने की प्रेरणा दी। ये आंदोलन आज़ादी की लड़ाई में जन जन का आंदोलन बना। इस आंदोलन की वर्षगांठ सिर्फ इतिहास को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन महान स्वाधीनता सेनानियों के आदर्शों को भी आत्मसात करने का समय है, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। राज्यसभा में कल भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बूंदी में 100 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान श्री बिरला ने कहा कि हाड़ौती क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत देश दुनिया में अपनी खास पहचान रखती है। उन्होंने कहा कि विरासत के साथ विकास के नए आयाम स्थापित करने के संकल्प के साथ बूंदी को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए आधुनिकता और विरासत के समन्वय के साथ बूंदी में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने खेती किसानी और उससे जुड़े कारोबार को देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने युवाओं से कृषि को केवल परंपरागत व्यवसाय के रूप में नहीं, बल्कि इसे आधुनिक तकनीक, नवाचार और उद्यमिता से जोड़कर सशक्त बनाने का आह्वान किया है। श्री बागड़े आज उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नॉर्थ वेस्ट जोन कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में तकनीक, अनुसंधान, स्टार्टअप, फूड प्रोसेसिंग सहित व्यापक अवसर मौजूद हैं। युवा इन्हें पहचान कर कृषि को उद्यमिता से जोड़ सकते हैं। इस मौके पर श्री बागड़े ने एग्री विजन स्मारिका का भी विमोचन किया। राज्यपाल ने कृषि महाविद्यालय परिसर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। श्रम कल्याण संगठन की प्रशासक रश्मि रेखा ने बताया कि ITI पॉलिटेक्निक और डिग्री कोर्स के विद्यार्थियों को 6,000 रुपये तथा प्रोफेशनल डिग्री के विद्यार्थियों को 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्र 31 अगस्त तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
1: बीड़ी श्रमिकों और चुना पत्थर डोलोमाइट खदान श्रमिकों के बच्चों के लिए वर्ष 2026-27 के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू हो गई है और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप देते समय यह होता था कि सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप मिलती थी। इस बार ऐसा है कि अगर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप उनको किसी और विभाग से मिल रही है तो भी श्रम कल्याण संगठन की स्कॉलरशिप उनको मिलेगी।
0: प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक अधिकतर स्थानों पर मॉनसून के सक्रिय रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कल सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने, भरतपुर, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसी दौरान पूर्वी भागों में 1-2 जगह भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं।
2: देखिए, पिछले 2 दिनों से साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। 8 से 10 अगस्त के दौरान भी यदि देखें तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के

0: सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इनमें अभी भी कुछ इलाकों में बारिश की कमी आगामी दिनों में जारी रह सकती है।
1: आज अजमेर, किशनगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में कुछ देर तेज बारिश हुई। वहीं चूरू के सरदुलपुर और धौलपुर के राजाखेड़ा में कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। डांग क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से पार्वती नदी में भी पानी की आवक बढ़ गई है। भरतपुर के बंद बारेठा बांध का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर डाकघर ने राखी से रक्षा अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत बहनें सीमा पर तैनात जवानों को राखी और सम्मान पत्र भेज सकेंगी। पाली डाकघर अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि कई जवान रक्षाबंधन पर छुट्टी के कारण घर नहीं आ पाते, ऐसे में बहनें डाक के माध्यम से उन्हें राखी भेज कर अपना स्नेह और सम्मान पहुँचा सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति को विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बताया। सोशल मीडिया के युग में विद्यार्थियों से दूसरों से तुलना करने से बचने को कहा। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार। पिछले 12 सालों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 400% बढ़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी को 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर मॉनसून सक्रिय, कल सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख चिंतन जोशी ने तैयार किया है। श्रावण मास के चलते इन दिनों जिले का माहौल धार्मिक बना हुआ है। विभिन्न शिवालयों में कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। शहर के प्रसिद्ध नया महादेव मंदिर में नाव महोत्सव आयोजित किया गया। इसके तहत सुबह मंदिर में पूजा अर्चना और अनुष्ठानों के बाद शाम को नाव महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। भगवान को नाव में विराजित कर श्रद्धालु नाचते गाते भजन कीर्तन कर रहे हैं। वहीं जिले के प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम, देव सोमनाथ महादेव मंदिर और भुवनेश्वर शिवालयों में भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। इन दिनों मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है। जिले में पिछले दिनों अच्छी बरसात हुई। आसपुर, सागवाड़ा, डूंगरपुर शहर, सीमलवाड़ा और बिछीवाड़ा क्षेत्रों में अच्छी बरसात से जलाशयों में पानी की आवक भी बढ़ी। वहीं संभाग के बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में बारिश की वजह से जिले के प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम की तीनों पुलिया पर पानी बहने लगा, जिस वजह से बेणेश्वर धाम पिछले दिनों टापू में तब्दील हो गया। हालांकि दो दिनों बाद पानी उतरने से फिर से आवाजाही शुरू हो गई। इन दिनों आसमान में बादल देखे जा रहे हैं और किसानों ने खरीफ की बुवाई शुरू कर दी है। अच्छी बरसात के साथ ही किसानों को बेहतर पैदावार की उम्मीद भी जगी है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हाल ही में डूंगरपुर जिले के देवल स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंचे। उन्होंने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से व्यक्ति को कमजोर करता है। उन्होंने किसानों, गरीबों और आदिवासी परिवारों से आयुष्मान कार्ड सहित सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। जिले में इन दिनों शहरी और ग्रामीण फॉलोअप शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों के जरिए लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है। शिविरों में बिजली, पानी और सड़क से जुड़े मामलों के साथ साथ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पट्टा वितरण और नामांतरण जैसे काम किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर, देशल दान सहित अधिकारी शिविरों का निरीक्षण कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना की ओर से सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना को लेकर संवाद कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों और आमजन से सहयोग की अपील की। उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण ने समयबद्ध और व्यवस्थित कार्य करने पर जोर दिया। 5 अगस्त को जिला स्तरीय युवा संबल रोजगार शिविर लगाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैरिज हॉल में हुए इस शिविर में 40 से अधिक कंपनियों ने 670 युवाओं के साक्षात्कार लिए और चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। विभिन्न योजनाओं के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 58,41,000 रुपए के ऋण भी वितरित किए गए।

0: आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत झोथरी ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्रों और पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विकास नगर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पोषाहार, मध्यान्ह भोजन, पेयजल, स्वच्छता, विद्यार्थियों के नामांकन और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की गई। विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया गया। बाद में पंचायत समिति में हुई बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिले के सतीमपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बीते दिनों बालिका जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को महिला सुरक्षा, पॉक्सो कानून, साइबर अपराध, नशे से बचाव और आत्मरक्षा की जानकारी दी। छात्राओं को डिजिटल सुरक्षा, महिला हेल्पलाइन, राजकॉप सिटीजन ऐप और सखी सेंटर के बारे में भी बताया गया। डूंगरपुर में नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारी की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर देशल दान ने मतदान केंद्र, कानून व्यवस्था, प्रशिक्षण, मतदाता सूची, परिवहन, चिकित्सा और नियंत्रण कक्ष से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने डूंगरपुर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 43 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से 181 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 85 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। डूंगरपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौजवाना ने विकसित भारत बनावन री मजबूत बुनियाद बतायो। सोशल मीडिया रा जमाना माए विद्यार्थियां दूजाओं तुलना करनू बचपासारू कहो। साफ ऊर्जा रा हलका माए देश 300 गीगावाट रो आंकड़ो पार कीनो। लारला 12 साल माए नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करन रो बूतो 400% बध्यो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी ने विकास रा 100 करोड़ रुपया रा कामारी सौगात तीनी। और प्रदेश माए घन खरठोड़ा चौमासारी बिरखा, काल सगला जिला माए बिरखा सारू चेताईचियो। समाचार सागे में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि हर पीढ़ी वारी बगतरी खास चुनौतियां और सामो करता थका राष्ट्रीय जिम्मेदारी पूरी करे है। वे आज आईआईटी दिल्ली रा 57वां दीक्षांत समारोह माय बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि मौजूदा दौर री चुनौतियां न्यारी है, हालांकि देश माय नुआ हलका रा विकास नौजवाना सारू नुआ मौका बन रहा है। वह कहो कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन समेत न्यारा न्यारा हलका देश ने खुद रे पान उबो करन री दिशा माय काम कर रहा है। प्रधानमंत्री कहो कि नौजवाना रे खुद रे पान उबा भेवन री आ पहल विकसित भारत बनावन सारू मजबूत बुनियाद रो काम करेला।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा।
1: श्री मोदी सोशल मीडिया रा जमाना रो जिक्र करता था का कहो कि विद्यार्थियों ने तनख्वाह, नौकरी या कार्यक्षेत्र रा आधार दूजों तुलना करनू बचनो चाहिए।
2: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: भारत गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली बनावन रा हलका माय खास उपलब्धि हासिल करता था का 300 गीगावाट रो आंकड़ो पार कर लीनो है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीनी। वह बतायो कि लाडला 12 साल माय देश रो नवीकरणीय ऊर्जा बूतो 400% बध्यो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि न्याय

0: आ रैली मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा री अगुवाई माए अल्बर्ट हॉल नु शुरू फेर बड़ी चौपड़ ताई चावेला। जयपुर रा जिला कलेक्टर संदेश नायक बतायो कि रैली रा गेला माथे हिफाजत और आवन जावन समेत न्यारा न्यारा इंतजाम करी चिया है। राज्य रा सगला जिला में आई हर घर तिरंगा अभियान री जोरदार तैयारियां करी जा रही है। बाड़मेर में तिरंगा प्रभात फेरियां निकाली जावेला। जालौर में आई भांत भांत रा कार्यक्रम रे जरिए जनता में देशभक्ति री भावना जगाई जावेला। देश आज भारत छोड़ो आंदोलन री 84वीं वर्षगांठ मना रहा है। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी री अगुवाई में शुरू करी जो ओ आंदोलन देश री आजादी री लड़ाई रो ऐतिहासिक और निर्णायक पड़ाव बनियो। महात्मा गांधी रा करो या मरो रोनारो देश भर रा लाखां लोगां ने एकजुट फेवन री सीख दीनी। ओ आंदोलन आजादी री लड़ाई में जनता रो आंदोलन बनियो। भारत छोड़ो आंदोलन री वर्षगांठ रा सिलसिला में राज्यसभा में काल स्वतंत्रता सेनानिया ने श्रद्धा भाव सागर याद करी चिया। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदी में विकास रा 100 करोड़ रुपया रा खर्च वाला न्यारा न्यारा कामारी नींव रखी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपया। इस मौके वे कहो कि हाड़ौती हलका री सांस्कृतिक विरासत देश दुनिया में खास पहचान रखे है। लोकसभा अध्यक्ष कहो कि विरासत सागे विकास रा नुआ आयाम बनावन रा संकल्प सागे बूंदी ने आगे बधायो चावेला। इसारो आधुनिकता और विरासत रा तालमेल नु बूंदी में बुनियादी सुविधा बधाया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े खेती किसानी और वाऊ जुड़िया कारोबार ने देश री माली व्यवस्था सारू खास बतायो है। वह नौजवानाओं खेती ने केवल परंपरागत कारोबार रा तौर देखण री बजाय नुवी तकनीक नवाचार और उद्यमिताओं जोड़ और मजबूत बनावण बाबत कहो। राज्यपाल आज उदयपुर रा महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राखी जी नॉर्थ वेस्ट जोन कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है। वह कहो कि खेतीबाड़ी रा हलका में तकनीक अनुसंधान स्टार्टअप और फूड प्रोसेसिंग समेत मोकला मौका मौजूद है। इस मौके श्री बागड़े एग्री विजन स्मारिका को विमोचनीय कीनो। राज्यपाल इंदिरा परिसर में हरियाणा राजस्थान अभियान रा तहत पौधोई रोप्यो। खाना माए काम करने वाला मजूरां रा बच्चा ने श्रम और रोजगार मंत्रालय री ओरु वजीफो दियो चावेला। श्रम कल्याण संगठन री प्रशासक रश्मि रेखा बतायो कि आईटीआई पॉलिटेक्निक और डिग्री कोर्स रा विद्यार्थियों ने 6,000 रुपया और प्रोफेशनल डिग्री सारू पढ़ाई करने वाला ने 25,000 रुपया री मदद दी चावेला। पात्र उम्मीदवार 31 अगस्त ताई नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल माथे अर्जी दे सके है।
1: बीड़ी श्रमिकों और चूना पत्थर डोलोमाइट खदान श्रमिकों के बच्चों के लिए वर्ष 2026-27 के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू हो गई है और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम

0: तिथि 31 अगस्त 2026 है। प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप देते समय यह होता था कि सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप मिलती थी। इस बार ऐसा है कि अगर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप उनको किसी और विभाग से मिल रही है तो भी श्रम कल्याण संगठन की स्कॉलरशिप उनको मिलेगी।
1: अरे मौसम, प्रदेश में आवता 3-4 दिन ताई घन खटोड़ा चौमासारी बिरखा वेवन रो अनुमान है। मौसम विभाग काल सगला जिला सारू बिरखा रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के आवता 2 दिन माए बिरखा माए बढ़ोतरी सागे। भरतपुर, उदयपुर और जयपुर संभाग रा कुछ हल्का माए मझलाऊ तेज दर्जारी बारिश वह सके है। इस दौरान प्रदेश रा उगणी हल्का माए 1-2 ठौड़ जोरदार घनी जोरदार बिरखा वेवण रा आसार है।
2: देखिए, पिछले 2 दिनों से साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। 8 से 10 अगस्त के दौरान भी यदि देखें तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र हैं इनमें अभी भी कुछ इलाकों में बारिश की कमी आगामी दिनों में जारी रह सकती है।
1: इस बीच आज अजमेर और किशनगढ़ समेत कई हल्का माए थोड़ी देर ताई चोखो में बरसियो। चूरू जिला रा सादुलपुर और धौलपुर जिला रा राजा खेड़ा माए काल हुई झमाझम बिरखा पाछे कई हल्का माए पानी फरकियो। डांग हल्का माए भया चोखा मैं पार्वती नदी माई पानी री आमद बध गई है। भरतपुर जिला रा बारेठा बांध माई पानी रो लेवल लगातार बध रियो है। कर्नाटक माए भी राष्ट्रीय जिम्नास्टिक होड़ माए हनुमानगढ़ जिला रा बेहरवाला गांव रे कल्पना महिला चांदी रो तमगो जीत्यो है। कल्पना इनु पहली राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय होड़ा माए कई तमगा जीत चुकी है। दूजगानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लारला दिना ग्लासगो माए पूरा फिया राष्ट्रमंडल खेलना री मुक्केबाजी होड़ माए सोना रो तमगो जीतन वाली कोटारी अरुंधति चौधरी रा रहवास माथे पूगर माना परिवार वाला ने शुभकामनावां दीनी। ई मौके श्री बिरला कहो के कोटा बूंदी माए अंतर्राष्ट्रीय मानका ने मुजब खेलना रा सुविधा विकसित करन री कोशिश करी जा रही है। राखी रा त्यौहार रे मौके डाक विभाग री ओर राखी से रक्षा अभियान शुरू करी चियो है। इन तेत बहना सरहद माथे तैनात फौजियां ने राखी और मान पाना भेज सकेला। पालीरा डाक घर अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा बतायो कि कई जवान राखी रे मौके घरा नहीं जा सके है। इन कारण बहना डाक रे जरिए वाने राखी भेजर प्रेम और मान पूगा सके है। पाली माए राखी भेजन वाली बहना सारू डाक घर माए न्यारी खिड़की री व्यवस्था करी जी है और ऑनलाइन चुकारा रो सुबितोई मुहैया कराई चियो है। काल विश्व आदिवासी दिवस मनायो जावेला। ओ दिन आदिवासी समाज री संस्कृति परंपरा और गौरव रो उत्सव है। ओ आदिवासी अस्मिता और हकाना प्रति एकजुटता और संकल्प रो दिन है। इस साल री थीम आदिवासी पारंपरिक दाइयों का सम्मान जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा राखी जी है। आदिवासी दिवस रे मौका दौसा जिला रा नांगल प्यारी वास माए खास कार्यक्रम राख्यो जावेला। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौजवाना ने विकसित भारत बनावन री मजबूत बुनियाद बताया। सोशल मीडिया रा जमाना माए विद्यार्थियों दूजाओं तुलना करण बचबा सारू कहो। साफ ऊर्जा रा हल्का माए देश 300 गीगावाट रो आंकड़ो पार कीनो। लारला 12 साल माए नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करण रो बूतो 400% बधियो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी ने विकास रा 100 करोड़ रुपया रा कामारी सौगात तीनी। हर प्रदेश माए घन खर ठोड़ा चौमासारी बिरखा काल सगला जिला माए बिरखा सारू चेताई चियो। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी सुनबा वाला सभी किसान भाइयों ने और सुनबा वाला सभी श्रोताओं ने अनिता की घनी घनी राम राम सा, और प्रभु भाई आपने भी घना घना राम राम सा।
7: बिल्कुल अनिता बहन, थाने और सुनबा वाला अपना जगह हितड़ू श्रोता है, दूर दराज गांव ढाणी रमाई ने बैठा हुआ कार्यक्रम सुने है। आप सगला ने घने मानसू प्रभु दयाल वर्मा रो भी राम राम सा।
6: प्रभु भाई, भाई देखो सा, अपने किसान भाई तो खेतीबाड़ी करे ही छे और शुरू से अपने बड़का भी देखो करता ही आया छे, और आज आप देख भी रहा छा की तरीका से जो नई पीढ़ी छे वा खेती की किसानी से थोड़ो सो उनको लगाव छे ने जो कम हो तो दिख रहा।
7: बिल्कुल सही बात कह रहे हो, देखो खेतों का मायने जहाँ चौमासा की फसल ले लियो चाहे सियाड़ा की फसल ले लियो, टाबरियन जहाँ कई बार आप पूछा तो भाई का गेहूं की फसल खड़ी है या जहाँ चौमासा में आप बाजरा की बात करा या तिल की बात करा मूंग की बात करा तो वो टाबरिया जगह बता नहीं सके भाई आ कौन सी फसल है। तो अब बात था कि सांची है भाई आज को जो टाबरियो है वो बनाई लिखाई में तो आगे बढ़ रही है लेकिन जो खेत को और जमीन को जो ज्ञान है वो भी करने थोड़ा सा कम हो रही है।
6: पर देखो सा, आप जो अपनी नई पीढ़ी छे अपना युवा छे वो पढ़े लिखे छे ने तो आपने जो या पढ़ाई लिखाई छे नौकरी में तो सही छे, पर आजकल देखो बहुत ज्यादा जो छे मतलब वह छे कि भाई नौकरी के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है गो, तो ई तकनीक ने जो अपनी पुरानी पीढ़ियां करती आ रही छे खेतीबाड़ी उन्हें अपने जो पढ़े लिखा युवक छे ने वह भी उ चीज ने आगे बढ़ा सके छे। वह किया भाई देखो पढ़े लिखे तो वह छे ही, साथ ही साथ नई तकनीक वाने मालूम छे तो वैज्ञानिक तरीका से खेतीबाड़ी क्या कर सके छे, क्या ज्यादा मुनाफा पा सके छे, तो इसू आपने खेती बाड़ी में तो बढ़ोतरी होली, नई तकनीक आवली और आपनो मुनाफो बहुत ज्यादा होलो।
7: बिल्कुल आप देखा आज यहाँ कई किसान भाई करे ही है और आज को जो युवा है जो बेरोजगार न रेवे तो बिग कने सासू बढ़िया तरीको उसके अपना बड़का जो काम करते आया है अपनो पुछते नहीं काम जी खेती बाड़ी अपना जमीन से जुड़े रेवला और अपनो स्वास्थ्य है अपनो मन तन दोनों चोखा रेवला बिक लिए। देखो आप अगर युवा जगह पढ़े लिखे है रोजगार नहीं है वहां करने तो बे आधुनिक खेती की अगर आप बात करना अनिता बहन तो बिग मान लीजिए जैविक खेती है प्राकृतिक खेती है या संरक्षित जगह खेती है बिग सागे सागे जहाँ पोली हाउस लगार भी आप बढ़िया जगह आई है, हाइड्रोपोनिक्स एक जगह विदेशी जगह तकनीक है वह भी आई है।
6: बिल्कुल, पर देखो ये चीज ऐसा ना अपनी नई पीढ़ी ने पतो चे आपने जो बड़का कर खेती कर रहा था तो वह तो पुरानी ऊपर ही चल रहा है, पर जो नई पीढ़ी अगर उस जुड़े ली तो नई तकनीक ले रावली नया चीजा ले रावली नया विचार ले रावली तो उसू हर चीज में ही बढ़ोतरी होली जोखिम कम हो वाला, तो ये चीजा आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे की जो या बहुत ज्यादा बेरोजगारी आजकल आपने दिख रही है वह भी एक हद तक कम रेवली, और जो युवा छे आपकी जो मातृभूमि छे मात्र वह छोड़ भी कौन पावलो आपका परिवार के साथ रेवलो और आपका परिवार ने भी सही तरीका से चला सके छे।
7: बिल्कुल देखो और जगह को यहाँ खेती के अलावा जहाँ कोई भाई लोग है तो खेती के मायने कई प्रकार का जगह औजार है उपकरण है खेती से संबंधित बांधने भी जहाँ कोई भाई लोग चाहे तो थोड़ी जानकारी ले किराए के ऊपर जहाँ जगह कृषि से संबंधित जहाँ ट्रैक्टर है रिपर है सीड ड्रिल है हार्वेस्टर है यानी कि मशीना है बन किराए के ऊपर भी भाई लोग अगर चाहे तो खरीद बन देश के है
6: जी। और देखो सर खेती के साथ साथ ही और दूसरे तरीका से भी आपके आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके चाहे भाई केवल पारंपरिक फसला पर निर्भर न रह बाकी बजाय बागवानी सब्जी को उत्पादन मक्खी पालन मशरूम पालन और मशरूम को उत्पादन पशुपालन और प्रसंस्करण जैसा काम खेती में जोड़ सके चे या आपकी नई पीढ़ी ही बहुत बेहतर तरीका से कर सके।
7: बिल्कुल सही बात की के देखो प्रसंस्करण जहाँ भाई का अचार बना लियो मसाला जहाँ ये भी कह सके जहाँ आटो है, दाल है, पापड़ है, ये यहाँ की चीज़ें की कृषि उत्पाद है बसू अन थोड़ा सो बढ़िया तरीका से बना अन बाजार का मान ले जाओ तो भी को मुनाफा और ज्यादा कमा सके।
6: बिल्कुल सा। और देखो सा आपने तो खबर यो ही चाहे भाई पढ़े लिखे युवा खेती से दूर जावा की बजाय आपका ज्ञान और तकनीक ने खेत तक लियावे तो खेती केवल एक परंपरा को नहीं बल्कि आधुनिक और लाभदायक व्यवसाय बन सके छे।
7: बिल्कुल।
6: और जो आपने यहाँ खेती बाड़ी के रुझान प्रति रुझान कम होते जा रहे छे उन्हें बढ़ा सके छे नया और युवा ई के साथ साथ जुड़ सके छे तो और जो आपने खेती बाड़ी छे उनको स्तर बहुत बढ़िया है वेलो।
7: बिल्कुल बढ़िया होलो निश्चित रूप से। और किसान भाई थोड़ी सी जानकारी लेर और भी कह पचे आ खेती की तरफ अगर आवे तो निश्चित रूप से फायदो ही फायदो है।
6: बिल्कुल सा। और देखो सा अब टाइम हो चालो छे थोड़ी सी जानकारी लेबा को और अपना विशेषज्ञ भी कार्यक्रम में पधार चुका छे उद्यानिकी में पादप प्रति नियामकों को प्रयोग के बारे में बताओला राकेश कुमार जी। तो प्रभु भाई अब आप जानकारी दिलाओ सा।
7: बिल्कुल सा। किसान भाई और बहनों कार्यक्रम में जानकारी देवा के वास्ते पधार चुका है राकेश शर्मा जी। आप फार्म मैनेजर है कृषि विज्ञान केंद्र सोमू टांकड़ा सो कार्यक्रम में पधारिया है और आज अपन जानकारी दे वाला पादप वर्धी नियामक का कृषि में महत्व है इस विषय पर। तो सबसे पहले तो राकेश शर्मा जी आपको कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत है सा। राम राम सा।
8: राम राम सा किसान भाइयों।
7: आपसे सबसे पहले सवाल वही रहे लोग पादप वर्धी नियामक हुए कहीं है।
8: किसान भाइयों पादप वृद्धि नियामक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वो कार्बनिक यौगिक है जो पौधे के भीतर ही बनते हैं सूक्ष्म मात्रा में। और किसान भाइयों ये बीज का जब से अंकुरण होता है उसका जरावस्था आती है तब तक ये कार्य करता है। पादप वृद्धि नियामक सभी फसलों में अंकुरण से लेकर जरावस्था तक सभी क्रियाओं को प्रभावित करता है जिसमें अंकुरण आ गया उसकी वृद्धि आ गई उसका विकास आ गया उसका पुष्पन आ गया उसका फलन आ गया इन सभी क्रियाओं को ये नियामक पूरी तरह प्रभावित करता है और उसके विकास में सहयोग प्रदान करता है।
7: जी का आप बता रहे हैं इतना सारा कारक है जिसका प्रभावित करे तो आप मुख्य मुख्य जो कारक की बात करें तो पादप वृद्धि नियामक ने प्रभावित करवा वाला कौन कौन सा कारक है।
8: किसान भाइयों पौधों की वृद्धि के लिए दो तरह के कारक होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। एक होता है बाह्य कारक जिसमें जल वायु प्रकाश और मृदा इन सब का प्रभाव पड़ता है
7: जी।
8: साथ में एक आंतरिक कारण होता है जो पादप वृद्धि नियामक के द्वारा प्रभावित होता है। उसमें आता है ऑक्सिन उसमें आता है जिब्रेलिन उसमें आता है साइटोकाइनिन उसमें आता है एब्सेसिक एसिड और उसमें इथाइलिन। ये सभी आंतरिक कारण है जो सूक्ष्म रूप से पौधों के अंदर विकसित होते हैं और पूरी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं।
7: और आप बात करें भाई के पादप वर्धी नियामकों का प्रकार की तो आपका कोई प्रकार भी हुएगा।
8: बिल्कुल प्रभु जी। किसान भाइयों ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो उनकी विकास में सहायक हो जिसको कहते हैं अपन वृद्धि नियामक जो रेगुलेट कर रहा है। दूसरा होता है वृद्धि बाधक जो उसकी वृद्धि में रुकावट पैदा करता है जैसे नाम से ही जाना जा रहा है। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं तो एक वृद्धि को रोकता है एक वृद्धि को बढ़ाता है।
7: बिल्कुल। आप वृद्धि ने बढ़ा वाला की अगर आप बात करें तो वृद्धि नियामक कत्ता प्रकार का वर आपको कहीं कहीं काम है।
8: किसान भाइयों जो वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं
7: जी।
8: जिसमें पहला आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन प्राकृतिक रूप से इंडोल एसिटिक एसिड का यौगिक है और इसके जो प्रमुख कार्य हैं किसान भाइयों जैसे जड़ों में फुटान करना सिक्का प्रधानता मतलब सिक्का को ऊपर बढ़ाता है। अगर अपने को सिक्का को ऊपर से कटिंग नहीं करेंगे तो पार्थ सिराएं नहीं बढ़ेगी। तो ये जो काम करता है ऑक्सीजन ये सिक्का को सीधी ऊपर ले जाने का काम करता है और कोशिकाओं की सीधी वृद्धि करता है। दूसरा किसान भाइयों होता है साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन वो हार्मोन से जो नई पत्तियों का विकास करता है नई पत्तियों में क्लोरोफिल बनाता है पार्श्व शाखाओं को बढ़ाता है। अभी मैंने ऑक्सीजन में आपको बताया था कि यह सीधी पार जो सिक्का है ऊपरी सिक्का उसको बढ़ाता है, अगर ऊपरी सिक्का को काट दें तो वहाँ फिर साइटोकाइनिन काम करता है और वो साइड की जो शाखाएं हैं उनकी वृद्धि कराता है, पत्तियों को जरावस्था को बढ़ाता है। जरावस्था का मतलब है कि जो पुरानी पत्तियां हो गई उनको नीचे गिराने का काम भी ये करता है
7: जी।
8: अगर फल भी पक गए तो उनको गिराने का काम भी साइटोकाइनिन करता है। तो किसान भाइयों इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि साइटोकाइनिन है तो जरावस्था बढ़ जाएगी उसकी, जरावस्था मतलब उसकी वहाँ रहने की क्षमता बढ़ जाएगी
7: जी।
8: क्योंकि ये जो पोषक तत्व है अपने उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं और ये सक्रिय रूप से विभाजन को भी दर्शाता है
7: जी।
8: ये मुख्यतः मूल शीर्ष और कलिकाओं में मिलता है कि साइटोकाइनिन जहाँ बनता है वो अपना जो जड़ों का मूल है लास्ट कोना है या तो वहां डेवलप होता है या जो कलिकाएं होती है वहां डेवलप होता है। किसान भाइयों साथ में जो वृद्धि को बढ़ाने वाला हार्मोन है तीसरा है जिब्रेलिन, और जिब्रेलिन का कार्य साइटोकाइनिन से थोड़ा सा अलग है। ये तने की ग्रोथ को बढ़ाता है, ऑक्सिन जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा रहा था, साइटोकाइनिन फलन और पत्तियों की जरावस्था को बढ़ा रहा था और जिब्रेलिन ये तने की ग्रोथ को बढ़ा रहा है। फलों के आकार में वृद्धि करनी हो अपने को तो भी जिब्रेलिन काम आता है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि सेब में या अपना तरबूज होता है उसमें जिब्रेलिन का इंजेक्शन दे दें तो वो तुरंत उनका आकार बढ़ जाता है। साथ में फलों के पकाव के समय को बढ़ाता है, मतलब फल सड़े कि मतलब कीपिंग कैपेसिटी उसकी बढ़े ये काम भी जिब्रेलिन करता है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है कि वो रोक सके उसे कुछ दिनों तक ताजा फल को रख सके अपन। माल्टिंग को भी बढ़ाता है और सुसुप्त अवस्था को तोड़ता है, जैसे डोरमेंसी में कोई चीज गई हो बीज डोरमेंस पड़ा हो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा हो तो उसके लिए जिब्रेलिन काम आता है, उसकी डोरमेंसी तोड़कर वो उसमें अंकुरण पैदा कर देता है। किसान भाइयों ये तीन तो हैं जो वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन हैं, और अब जो आगे अपन चर्चा करेंगे वो वृद्धि को रुकावट में डालने वाले हार्मोन हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी बीज जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, प्रतिकूल कंडीशन होती है
7: जी।
8: पानी की कमी है, मौसम अनुकूल नहीं है, ताप पूरा नहीं मिल रहा है तो बीज जर्मिनेट नहीं हो पाता है। उस समय एब्सेसिक एसिड नाम का हार्मोन काम करता है और वो उसको पूरी डोरमेंसी में ले जाता है कि वो बीज खराब नहीं हो। कई बार आपने देखा होगा कि बारिश नहीं हो रही है तो उस समय एब्सेसिक एसिड उन रंध्रों को बंद कर देता है जिससे वाष्पोत्सर्जन ज्यादा नहीं हो तो भी ग्रोथ चेक हो जाती है। ये उपापचय की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको भी रोक देता है। ये डोरमेंसी को बढ़ाता है इसलिए कि बीज और पौधा अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य कर सके। अगर अनुकूल परिस्थिति उनको मिल जाएगी तो तुरंत यह सुसुप्त अवस्था को तोड़कर जर्मिनेट हो जाएगा, पानी पूरा मिल जाएगा, रंध्र खुल जाएंगे और साथ में किसान भाइयों ये वृद्धि को भी रोकता है। किस लिए रोकता है कि प्रतिकूल कंडीशन में जब पौधे को जीवित रखने के लिए अनुकूल कंडीशन नहीं है उस समय उसकी वृद्धि को ये रोक देता है तो पौधा जिंदा रह जाता है। किसान भाइयों लास्ट जो हार्मोन है अपना वो है एथिलीन। ये ऐसा हार्मोन है जो दोनों में अपन काउंट कर सकते हैं, इसको वृद्धि को बढ़ाने वाले में भी काउंट कर सकते हैं और वृद्धि को रोकने वाले में भी काउंट कर सकते हैं
7: जी।
8: जैसे कि ये फलों के पकाने में सहयोग करता है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताता हूँ। मौसमी के साथ में या संतरे के साथ में अगर कच्चे केले रख दिए जाए तो वो पक जाते हैं। ये क्यों पकते हैं? क्योंकि संतरे से एथिलीन गैस निकलती है उससे केला पक जाता है
7: जी।
8: तो सीधा सा व्यवहार देश का कि कहीं तो ये फायदा कर रहा है साथ में कहीं ये नुकसान भी करता है। नुकसान ये करता है कि सड़ाव पैदा होते हैं एथिलीन, मतलब जैसे पकता है एथिलीन ज्यादा होने से उसमें सड़ाव आ जाता है। पत्ती में अगर पकाव आ गया तो एथिलीन डेवलप होकर पत्ती झड़ जाती है। और एक इसका बेनिफिट दूसरा बेनिफिट ये है कि मूंगफली में ये जर्मिनेशन जल्दी कर देता है, ये एथिलीन के कारण ही होता है। आलू की स्प्राउटिंग बढ़ा देता है, आलू में देखा होगा आप लोगों ने कि जगह जगह से जर्मिनेशन सा हो जाता है, उनको काट कर कंधों को ऊपर लगा देते हैं तो आलू पैदा हो जाता है। वो स्प्राउटिंग एथिलीन के कारण ही किसान भाइयों हो पाती है। पुष्परण और फलन दोनों की वृद्धि को भी प्रेरित करता है। और कई जगह ये कुकुम्बर, स्पेशली कुकुम्बर की बात करूंगा मैं, कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं, खीरे स्पेशली, उसमें ये मादा फूलों की संख्या बढ़ा देता है जिससे उसकी उत्पादन क्षमता और उत्पादकता बढ़ जाती है।
7: जी।
8: किसान भाइयों, ये पांचों हार्मोन्स हैं जो पौधों की वृद्धि भी कराते हैं, वृद्धि को रोकते भी हैं, और इनमें से एक हार्मोन ऐसा है एब्सेसिक एसिड जो कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, वो प्रकृति प्रदत्त है। बाकी के चारों हार्मोन्स को अपन लोगों ने कृत्रिम रूप से भी बना लिया है।
7: बिल्कुल, आप बड़ा विस्तार से जगह पादप वृद्धि नियामक एवं कृषि के मायने जो उपयोग है के बारे में आप जानकारी दे रहे हो। ए जी, आप बड़ा वाला और घटा वाला आगे ते बात करी, किसान भाई जब पादप वृद्धि नियामकों को प्रयोग करे तो कौन कौन सी मोटी मोटी बातें हैं वो ध्यान रखना चाहिए, कोई यहाँ की कोई मात्रा हुए या किस प्रकार से उनको प्रयोग करना चाहिए, बी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी किसान।
8: जैसे किसान भाइयों, अपन देखते हैं कि अपना फलन तो गया लेकिन वो झड़ रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं
7: जी।
8: तो अपन प्लेनोफिक्स नाम के एक हार्मोन का अपन स्प्रे करते हैं, उसकी डोज अपने को 3 ml के लगभग प्रति 15 लीटर में रखनी है। किसान भाइयों अच्छी तरह समझ लीजिएगा, 3 ml अगर अपन डालेंगे 15 लीटर में तो पत्तियों को और फलों को वो रोकेगा
7: जी।
8: और अगर अपन ने 5 ml उसको कर दी तो किसान भाइयों वो पत्तियों फलों के साथ में पत्तियों को भी नीचे गिरा देगा। इथिलीन मैंने कहा था कि दोनों काम आती है, ये रोकने के काम भी आती है और जरावस्था के लिए भी काम आती है, जरावस्था मतलब उसे झाड़ने काम भी आती है। तो इस डोज का विशेष ध्यान रखेंगे किसान भाइयों।
7: और कोई फलन पक्का पका वास्ते कौन कौन सा हार्मोन काम आवेगा?
8: पकाने के लिए केवल एथिलीन ही काम आती है जो गैसीय फॉर्म में होती है, एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय फॉर्म में होता है।
7: और आप कई बार सुना भाई के कटिंग या जगह लेयरिंग करे भी के मायने जड़ा को विकास करवा के वास्ते भी या कोई हार्मोन से जगह प्रयोग करे किसान भाई, तो वह कौन कौन सा है?
8: किसान भाइयों, बहुत सारे लोग गुलाब की, गुड़हल की, ये बहुत सारी कटिंग होती है जो डेवलप करते हैं, लेयरिंग करते हैं, तो वहाँ जड़ों का विकास करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन काम में लेनी पड़ेगी। ऑक्सीजन का अगर हार्मोन का काम में लेंगे तो वहाँ जड़ें विकास विकसित हो जाएगी और एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो अपने को ध्यान रखना है ऑक्सीजन ही काम में लें।
7: और फलाने या झड़बा की जगह समस्या हुए भी सो अगर अपन बचाना है किसान भाई की कोई समस्या आएगी तो बी के वास्ते भी कोई हार्मोन है जो काम में लियो जा सके, कहीं लियो जा सके तो कौन सो है?
8: किसान भाइयों, जैसे अपन ने पूर्व में भी चर्चा की है, इथिलीन एक ऐसा ही हार्मोन है जो फलों को पकाव तक ले जाता है। इसको कृत्रिम रूप से भी अपन काम में ले सकते हैं और प्रकृति प्रदत्त भी होता है। प्रकृति प्रदत्त तो प्रकृति ने दिया ही है, कृत्रिम रूप से काम मिले तो एथिलीन गैस को अपन जहाँ स्टोर किया है उसमें छोड़ देते हैं तो वो फल सारे पकाव पे आ जाते हैं। एक उदाहरण तो मैंने दिया कि अगर एक फल सड़ा हुआ है
7: जी,
8: उस फल के चारों तरफ फल रख दीजिए आप, वो सारे सड़ जाएंगे। क्यों सड़ जाएंगे? क्योंकि वो फल सड़ा हुआ है जो एथिलीन का गैस का रिसाव कर रहा है या एथिलीन गैस डेवलप कर रहा है, वो एथिलीन सबको पका देगी और एक अपर लिमिट तक पका देगी कि वो सब सड़न की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो एथिलीन गैस ऐसी है किसान भाइयों जिससे हम फलों को पकाव पे ले जा सकते हैं।
7: और चलता चलता कोई मोटा मोटी रूप में कोई बात छूट गई किसान भाइयों तक पूर्ती करनी चाहिए?
8: किसान भाइयों, ये पादप वृद्धि नियामक जो चीज है ये एक आधुनिक शब्द है, पहले अपन हार्मोन्स के नाम से जानते थे इन सबको, अब लेकिन इसको पादप वृद्धि नियामक के नाम से जानने लग गए हैं। मेरा ये निवेदन है कि आप जब भी अनुकूल कंडीशन में कोई क्रॉप लगाएं तो ये ध्यान रखें कि तापमान, प्रकाश, मृदा की स्थिति और हवा पानी ये एकदम प्रॉपर रहे तभी फसल लगाएं। क्योंकि पहले जब लगाते थे अपने पूर्वजों जब खेती करते थे तो वो चंद्रमाओं की कलाओं के आधार पर खेती करते थे
7: जी।
8: वो सारी कलाएं साइंटिफिक थी लेकिन अपन उन चीज़ों को भूल गए हैं और अपन मन में आए उसी समय सोइंग करने लग गए, मन में आए जब ही अपन बिजाई कर देते हैं तो उससे अपने को नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा कम हो रहा है। तो मेरा तो किसान भाइयों यही निवेदन है कि आप जब भी सोइंग करें एक प्रॉपर समय को देखते हुए सोइंग करें, सायंकालीन सोइंग करें तो ज़्यादा फायदा होता है। तो ये सारे हार्मोन्स भी काम करेंगे, अपना भाग्य भी काम करेगा और किसान सफल भी होगा
7: जी। पादप वृद्धि नियामकों का कृषि के मायने महत्व है ई विषय पर किसान भाई और बिना अपन जानकारी दे रहा। राकेश शर्मा जी, आप फार्म मैनेजर है कृषि विज्ञान केंद्र चोमू टांकरडा सो आज अपने कार्यक्रम के मायने पधारिया और किसान भाइयों ने अत्ता महत्व विषय पर जानकारी दी। तो शर्मा साहब आपको मोकड़ो मोकड़ो धन्यवाद।
9: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
10: पुतला बोल रहे
9: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
10: मतलब
9: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
10: पर हम तो सब यही डाले हैं।
9: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
10: सच है?
9: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
10: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
11: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: प्रभु भाई बहुत ही घना घना धन्यवाद आपका, जो राकेश कुमार जी से इतनी चौकी जानकारी दिलाई। और देखो साहब, बहुत सारी बातें ऐसी राकेश जी बताया कि भाई की तरीका से खेती किसानी में कसी बातें ध्यान में राख बाड़ी चर कसी बातें कौन ध्यान है राख बाड़ी। और सबसे मोटी बात यह है कि समय पर अगर आपा काम कर ला ना, तो सभी चीज़ को समय अनुसार सही तरीका से फायदो मिले लो।
7: बिल्कुल, तो और सही समय फायदा की बात करें तो अब आप कार्यक्रम ने सीधो एक मीठी सी लोक रचना की तरफ ले चला।
6: बिल्कुल साहब,

0: બિલકુલ સા ભાઈ, દેખો ચોમાસા કો ટાઈમ છે, અરિયો અસો બઢિયા ટાઈમ છે, જો આપણે પાણીને બચત કરવા કી સહેજ બાકી સબસે સહી સમય છે.
1: बिल्कुल सही समय। यार देखो सही समय बरसात की हो रही है कि मैंने आज को जो मौसम की अगर आप बात करें भाई लोगों, थोड़ा ध्यान रहे भाई की प्रकार को मौसम रहे लो। तो भाई लोग आज जयपुर के मैंने जो अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रही, और न्यूनतम तापमान है जो 25 डिग्री, और बीकानेर के मौसम की अगर आप बात करें तो लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान रही है और न्यूनतम जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जोधपुर के मायने अगर बात करें तो 35 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 27 डिग्री, और लगभग पूरा राजस्थान का मायना या आज क्षेत्र की जगह की आप बात करें बैठे बिजली चमक बाकी या बरसात हो बाकी गरज के साथ पूरी पूरी संभावना भी रहेगी।
0: बिल्कुल साहब, और देखो साहब मौसम की जानकारी है बस, वो आप थोड़ी सी आपने खेती बाड़ी में सही तरीका सुसार संभाल करवो, या कोई काम करवो, या कोई बचाव करवो, वह सब सही समय पर कर सका छा.
1: बिल्कुल सही समय की बात करी तो देखो अपन सही समय पर अब अपन कार्यक्रम ने किसान वाणी ने विराम भी देना पड़ लो,
0: जी
1: तो घड़ी सारो करण लाग रही आज का किसान वाणी कार्यक्रम को टाइम अठे ही पूरा हो रही है। तो भाई लोग थे था भाई प्रभु दयाल वर्मा,
0: और अनीता ने देव इजाजत, चालान करा,
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम सा.
1: सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा.

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी।
1: खेती बाड़ी

0: खेतीबाड़ी की बाढ़ जोता सभी किसान भाई ने सुनवा वाला सभी श्रोताओं ने अनिता की घनी घनी राम राम सा। और प्रभु भाई आपने भी घना घना राम राम।
1: बिल्कुल अनिता बेन थाने और सुनवा वाला सगला अपना जगह हेतालु श्रोता है। दूर दराज गांव ढाणी रमाई ने बेट तित बंदिया वो कार्यक्रम सुने है। सगला हेतालु ने गणे मानसु प्रभु दयाल वर्मारो भी राम राम एर निवन प्रणाम सा। देखो अनिता बेन बिरखा रोज को टेम है वो चालन लाग रहे है। अस्या का मायने किसान भाई है जगह तो आपका खेतों का मायने जहाँ इस टाइम रमाने जगह जगह काम धंधा करना है वे करवा लाग रहा है। और काम धंधा की अगर आप मोटा मोटी रूप से बात करें तो भाई देखो एक तो खेत के मायने या खड़ी फसल है तो भी मायने निराई गुड़ाई है जी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सा भाई देखो सा निराई गुड़ाई ना करेला खरपतवार ना निकालेला ना तो जो फसल की बढ़वार छे वह रुक जावली और जी तरीका से वह बढ़वार करनी चाहिए जी उम थोड़ी सी कमी दिखली।
1: बिल्कुल तो जहाँ बाजरो है गुआर है मोट है मूंग है तिल है जिका भाई लोग जहाँ फसल ले रखी है तो बाँ का मायने टाइम का मायने जहाँ खड्डे भी खरपतवार दिखे तो अपन भाई खसी हो है या खुरपो है बी के माध्यम से अपन निकाल देनी चाहिए।
0: और देखो सा समय पर अगर यहाँ को नियंत्रण कर लिया तो फसलों में पोषक तत्व और नमी बनी रहेली और अपन निराई गुड़ाई करा ला तो जो जमीन में नमी छे वह भी सही तरीका से बनी रहेली। और खड़ी फसल की स्थिति ने देखा तो कोड़ा पौधा घना छे तो आवश्यकता के हिसाब से पौधा ने पर्याप्त जगह मिले इसकी लिए वहाँ ने थोड़ी जगह के हिसाब से पौधा को वो कर दे।
1: बिल्कुल कई जगह जी आपने देखा भाई बीज जो ज़्यादा गिर जाए तो भी कमाने किसान भाई जी भाई हमेशा खेत कमाने जहाँ जटे कम पौधा है तो बरसात के मायने बटू जहाँ बाजरू है तो भी उखाड़ अपना दूसरी जगह लगा दें तो वो बाजरू आराम से लग जाए वो काम भी कर सके।
0: और देखो सर अबार फसल चाहे गंवार की मूंग मोट की जमा कीट रोगों की भी निगरानी अपना किसान भाई ने करती रहनी चाहिए। और किसी भी फसल हो आपका खेत में बीच बीच में किसान भाई टेम सारू माने संभालता रहे और देखता रहे कि कोई कीड़ो मकोड़ो कोई कीड़ो तो लागे कौन से क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप संभाल लेवा तो उनको नियंत्रण करवो सही रहे चाहे। और देखो सर रोग फैलिया पाचे तो परेशानी आवे छे।
1: बिल्कुल परेशानी आवर परेशानी आ जाए तो देखो किसान भाई है थोड़ा सो ई बात को तो जरूर ध्यान रखे कि वो मनमर्जियों कोई भी कीटनाशक बाजार से लेर वो छिड़काव नहीं करे विशेषज्ञ की सलाह ले ले जी कृषि परिवेशक है या और कोई जो कृषि खेतीबाड़ी से संबंधित कोई जानकारी जुटार भी के बाद में भी वो जखी दुआ मन बतावे भी कोई भी छिड़काव करे।
0: और देखो सर कीट रोग सब अलग अलग तरीका करे छे जहां पत्तियां पर धब्बा लागबो पत्तियां मुड़बो छेद या कीट दिखाई देवे तो उन रोग की पहली अपने पहचान करनी चाहिए बी के पछे ही जी अपना प्रभु भाई बताया दवाई को प्रयोग करनी चाहिए। और बाजार में विशेष ध्यान रखे भाई की तरीका से फसल की बढ़वार और पौधा की संख्या देखा पानी भराव वाला खेता में जल निकास की व्यवस्था करा तो यहाँ सब जो छोटी छोटी चीजें चेन है वहाँ को अपना किसान भाई ने टेम सारू ध्यान रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल थे पानी की जगह बात करिएगा एक अपन बाजरा की जगह खड़ी फसल जो है बी कमाने विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बाजरों कई बार जहाँ पानी भर जाना बटे आडो गिर जाए और आडो गिरता है जगह फसल जहाँ सिट्टो वो ऊपर लागना चाहिए वो सिट्टो भी बने को नहीं और पैदावार अपन चौकी मिल कौन सके तो खट्टे पानी भरे अगर खेत कमा जाए डेयरी वालों खेत हुए तो भी पानी निकाल वो पूरा जतन अपन करना चाहिए।
0: बिल्कुल सा। और देखो सर सब्जियां में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखा भाई खेतों में लौकी कद्दू भिंडी मिर्ची टमाटर ये लाग रहे थे तो वहाँ को नियमित रूप से फल और पत्तियां की जांच करता रहे और वहाँ की भी खरपतवार हटाता रहे।
1: बिल्कुल खरपतवार हटाता रहे और सागे सागे देखो आपने खेती के सहायक सागे सागे देखो अपनो सहायक धंधो है पशु धन आप जहाँ रखा तो वहाँ के लिए भी चारा की जहाँ अब वाला टाइम का मायने जहाँ चौमासा को टाइम है तो एक मायने चारो आप के लिए पर्याप्त मिल रहा है अपन तो वो भी अपन बिकी भी फसल लेर और चारा की व्यवस्था आगे के लिए अपन कर लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल सा। और देखो सबसे मोटी बात यह छे भाई दवाई या कीटनाशक को प्रयोग केवल फसल के कीट रोग की सही पहचान और उनका जो विशेषज्ञ सलाह देवे उनका हिसाब से ही देनी चाहिए। या नहीं कि मन मर्जी से ही मात्रा तो थोड़ी सी है लेकिन आप सोच रहे कि नहीं थोड़ी सी और ज़्यादा दे दें तो कीट रोग जल्दी खत्म है जलो फसल चौकी उली तो उनसे तो फायदा की बजाय नुकसान ही है बोलो इसलिए हर चीज को समय सारू और सही मात्रा में ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल ध्यान और किसान ने इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए भाई आप की टेम कौन सी फसल बोई भी कमाने कौन सो रोग लगियो भी कमाने कौन सी अपना दवाई दी तो वो भी किसान का कने भी को जो रिकॉर्ड है वो होना चाहिए ताकि जब भी कोई समस्या आवे तो आप आगामी टाइम में जब कोई समस्या आवे तो भी को आप सही तरीका से समाधान ले सका।
0: बिल्कुल सही बात किया प्रभु भाई बहुत ही चोखी बात बताया भाई फसल को ब्यूरो भी आपांगन रहनी चाहिए जिसको किसी भी टाइम कोई भी अगर

0: भाई का आपने जब पशुधन की आप बात करी तो बार बार जहाँ गाय है भैंस है ये फिर जावे है, इसका कारण का ही है, निवारण का ही उसका आपने जो पशुधन जो रखा तो भी कमाना अपन ज्यादा लाभ ले सका, तो इस विषय पर जानकारी अपन देवला। तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में गुणों गुणों स्वागत है सर, राम राम सर।
1: राम राम सर, धन्यवाद। मेरा भी सभी पशुपालकों का राम राम।
2: जी सर, डॉक्टर कृष्णानंदन बंसल जी, आपसे सबसे पहली जी हाँ बात कराना भाई गाय भैंस को, फिर वो और वहाँ का कारण निवारण का बारे में। तो सबसे पहली यह जानवो चाहला भाई गाय भैंस को जो फिर वो हो चे वो काई हो चे और इनकी पहचान क्या कर सके छे।
1: जी, इसमें क्या होता है कि जैसे कि अपनी जो गाय भैंस होती है तो वो दिखने में तो हष्ट पुष्ट नजर आती है
2: जी
1: और समय समय पर वो पाप में भी आती रहती है, 20 से 21 दिन के अंदर ना। लेकिन यदि अपन उसको कृत्रिम गर्भाधान या मेटिंग करवाते हैं, सांड से क्रॉस करवाते हैं, तो उसके बाद वो प्रेग्नेंट या गर्भित नहीं हो पाती है।
2: जी
1: तो इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि दिखने में तो हष्ट पुष्ट है लेकिन वो गर्भित नहीं हो पा रही है।
2: जी
1: ये 3 या 3 से अधिक बार यदि गर्भित नहीं हो पा रही है तो समझो वो जानवर अपना रिपीट ब्रीडर जिसको बोलते हैं, यानी कि बार बार वो फिर रही है। जी
2: तो सा इसे जो अपना पशुपालक भाई छे वन काई तरीका का नुकसान हो सके छे उनका बारे में बताओ।
1: इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि जो दूध का बड़ा भारी नुकसान होता है, एक गाय या भैंस अगर सही समय पर गाभिन हो जाए तो साल में एक बछड़ा या पाड़ा दे देती है और समय पर दूध चालू रहता है। लेकिन अगर वो 6 महीने लेट हो गई तो समझो 6 महीने का दूध या पैसा उसका पानी में गया। अगला होता है कि इसमें चारे या बाटे का दाने का फालतू खर्च होता है। राजस्थान में जैसे कि सूखा चारा सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पर क्या सूखा चारा तो मिल जाता है बट जो हरा चारा होता है उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है और हरा चारा की समस्या की वजह से ये रोग उत्पन्न होता है। दूसरी बड़ी बात है कि जो इसके अंदर यदि पशु गाभिन नहीं हुआ तो इसमें डॉक्टर का सुई का बार बार का खर्चा भी बढ़ता जाता है। जैसे कि हर बार जब पशु फिरता है तब आप डॉक्टर को बुलाते हैं, सुई या कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं और दवाइयों का खर्च भी और डॉक्टर का खर्च भी बार बार आने से बढ़ता जाता है। और दूसरी चीज़ ये नेक्स्ट ये है कि पशु की कीमत कौड़ियों के भाव हो जाती है ले देके। जैसे कि जो गाय बाजार में 60 से 70 हज़ार या लाख रुपए की बिकती है,
2: जी
1: यदि वो बार बार फिरने लग गई तो उसकी जो बाजार में वैल्यू है, कीमत है, वो कम हो जाती है। तो अंत में क्या करता है, किसान उसको औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हो जाता है। जी
0: तो अपन बात करें डॉक्टर साहब का, जी गाय और भैंस है जी बार बार फिरवागा जगह मुख्य मुख्य कारण है बे कहीं उसके है।
1: इसका सबसे बड़ा चार जो कारण है वो राजस्थान में तो अपने है सूखे चारे की अधिकता और खनिज तत्वों की कमी ना। जैसे अपने यहाँ पे जो चारा होता है वो सूखा चारा जिसके अंदर पशु पोषण के जो तत्व होते हैं उनकी भारी मात्रा में कमी होती है। जैसे कि हमारे यहाँ सालों भर हरा चारा नहीं मिलता रहता है, जैसे कुट्टी पर या तूड़ा तूड़ी पर डिपेंड करते हैं, अपन निर्भर रहते हैं और हरा चारा या खनिज तत्व उसको नहीं मिल पाते हैं। दूसरी बात है कि जो बच्चेदानी का संक्रमण होता है, कई बार क्या होता है बच्चेदानी में संक्रमण हो जाता है तो जब पशु ब्याता है या बच्चा देता है तब जेर नहीं गिर पाता कई बार समय पे, तो जेर नहीं गिरने से उसके अंदर गर्भाशय में संक्रमण हो जाता है और उस संक्रमण की वजह से जो दोबारा उसको गाभिन करवाना चाहते हैं तो वह गाभिन नहीं हो पाती है। नेक्स्ट चीज़ है कि हार्मोन, हार्मोन का कुप्रभाव, मतलब जो हार्मोन इम्बेलेंस हो जाते हैं बॉडी के अंदर ना, जैसे कि जैसे इंसानों के अंदर भी हार्मोन होते हैं उसी प्रकार जानवरों में भी कुछ हार्मोन होते हैं, उससे अंडा सही समय पर नहीं बनता है और बनता भी है तो वो निकलता नहीं है अंडा सही समय पर ना। दूसरा है गर्भाधान का गलत समय, जैसे कि मान के चलो गाय अपनी ताब में आई है सुबह की टाइम ना, तो अपन का जो सही समय होता है उसका कृत्रिम गर्भाधान का वो होता है शाम के समय ना, सुबह यदि हीट में आता है तो, और यदि शाम को हीट में आता है तो सुबह करवाना चाहिए। तो पशुपालक क्या करते हैं सही तरीके से ताप को नहीं पहचान पाते हैं और गलत समय पे कृत्रिम गर्भाधान कर लेते हैं जिससे कि गाय फेल हो जाती है, बार बार फिरने लग जाती है।
0: जी और यहाँ की समस्या कोई बार बार फिरवा की कोई अपना पशुधन के मायने है गाय या भैंस के मायने, तो भी कोई समाधान की प्रकार से उसके है।
1: जी इसका समाधान बिल्कुल हो सकता है, उदास होने की किसान भाइयों को कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मिनरल मिक्सचर्स, बाजार में कई प्रकार के मिनरल मिक्सचर पाउडर आजकल मिलते हैं, तो उचित सर्टिफाइड कंपनी का आप मिनरल मिक्सचर पाउडर लेके रोजाना उसको जो दाना पानी आप देते हो उसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम का आप मिनरल मिक्सचर उसमें मिला सकते हो। इससे क्या होता है जो मिनरल मिक्सचर अपन मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या है कि जो सूखे इलाके होते हैं राजस्थान के वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी से होता है, तो जो अपने मिनरल मिक्सचर पाउडर है उसके अंदर सारे पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम, कोबाल्ट, फॉस्फोरस, आयरन, ये सब प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं जो बच्चेदानी के ढीलेपन को दूर करता है। दूसरी चीज़ है पेट के कीड़ों के मारने की दवाई ना, तो हर पशुपालक को खासतौर से बरसात के मौसम में ना साल में 3 बार कम से कम उसको कीड़े मारने की दवाई देनी चाहिए। अगली बात है कि हर 12 घंटे में जब

0: जानवर ताप के लक्षण दिखाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मुख्य बात कि किसान भाई ताप को कैसे पहचानेंगे। तो ताप को पहचानने के लिए क्या होता है, जब पशु बार बार रंबाता हो या फिर वो एक ट्रांसपेरेंट यानी कि एक पारदर्शी कांच की तरह का एक म्यूकस स्राव करता है, तो म्यूकस यदि स्राव होने लग जाए और बार बार रंबाना शुरू कर दे और उसके जो बाहर का जो अंग है वो यदि सूज जाए, तो पशुपालक को समझना चाहिए गाय ताप में आ चुकी है। तो ताप में आने के तुरंत 12 घंटे के बाद किसी उत्कृष्ट वेटनरी डॉक्टर को बुला के और कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए। दूसरी चीज़ है, यदि गंदा पानी अगर पीछे से बच्चादानी से स्राव हो रहा है गंदे पानी का, तो डॉक्टर को बुला के या फिर पशु पालक को खुद हॉस्पिटल ले जाके पशु चिकित्सालय में, वहाँ पर बच्चेदानी की सफाई नियमित अंतराल में करवानी चाहिए।
1: जी
0: जी
2: डॉक्टर साहब, अब आपसे यह जानवो चाहला कि भाई जिया गाय छे भैंस छे बार बार फिर जाओ छे, उनका प्रमुख कारण भी आप बात बताया, तो कहीं इमें जो आप बात करा भाई उनके आहार में खनिज मिश्रण को या और कोई दूसरा दूसरी चीजा को भी कितो प्रभाव रहे छे, तो उनके बारे में बताओ।
0: खनिज तत्वों में सबसे ज़्यादा प्रभाव इसमें रहता है, इस बीमारी के अंदर ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब खनिज तत्व क्या करते हैं, जो बच्चेदानी होती है जानवर की ना, उसको ढीला होने से रोकती है। यदि बच्चेदानी ढीली हो गई तो समझो वहाँ पर जो अपन कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो वहाँ पर बच्चा नहीं रुकता, जो गर्भ होता है वो ठहरता नहीं है, तो वहाँ पर क्या गर्भ गिर जाता है, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है। और पोषक तत्वों का बहुत बड़ा इसमें इसका रोल होता है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि रोजाना अपने आहार के अंदर 100 ग्राम कम से कम न्यूट्रिशन का जो पाउडर होता है वो जरूर जानवरों को दें अपना।
2: तो आसान मौसम से जिया कि अबार छे बरसात को मौसम, तो ई मौसम में जो गाय भैंस फिर जाओ छे या उनकी समस्या रहो छे, तो ई समय जो पशुपालक भाई छे वन कसी बातों को ध्यान रखनी चाहिए।
0: सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो बरसात का मौसम होता है तो इस समय पे जो गाय भैंसे के पेट होते हैं, पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं,
2: जी
0: तो यदि आप उसको खनिज तत्व उपलब्ध भी करवा रहे हो जानवर को, तो वो खनिज तत्व गाय को या भैंस को ना जाके वो कीड़े उसको ले जाते हैं,
2: जी
0: न्यूट्रिशन को ना, तो उसके बचने के लिए आपको जो बच्चा क्या बोलते हैं कीड़े मारने की दवाइयाँ होती है, इसको बोलते हैं अपन ना डिवॉर्मिंग, किसान भाइयों ने सुना होगा डिवॉर्मिंग के बारे में ना, तो डिवॉर्मिंग की टेबलेट भी मिलती है पशु चिकित्सालय में, उसका पाउडर भी मिलता है और पिलाने की दवा भी मिलती है। तो पशु चिकित्सक की सलाह पे उसको हर साल में 4 बार या 3 बार, कम से कम 3 या 4 बार उसको जरूर पिलाएं, और खास तौर से बरसात के मौसम में, ताकि वो कीड़े मर जाएं।
2: तो अगर कोई पशुपालक भाई के गाय भैंस की ऐसी स्थिति हो रही है, तो वो पशुपालक भाई आपके पशु ने चिकित्सक ने कब दिखानी चाहिए या कब उनकी जांच करवावे?
0: जब किसान भाई को पता चले या पशुपालक को पता चले कि उसकी भैंस या गाय कई बार वो दिखने में ठीक लग रही है, खाना भी अच्छे से खा रही है, पानी भी ठीक से पी रही है,
2: जी
0: और यदि वो 3 या 3 से अधिक बार उसको उसने ले जाके कृत्रिम गर्भाधान करवाने का प्रयास किया या करवाया, लेकिन इतनी बार भी कृत्रिम गर्भाधान या क्रॉस करवाने के बाद वो ठहर नहीं रही है, यानी कि वो गर्भित नहीं हो रही है, तो तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें, क्योंकि रोजाना इसके अंदर तकरीबन 150 से 200 रुपये का पशुपालक को नुकसान होता है,
2: जी
0: क्योंकि गाय यदि 51 हो या ना हो वो खाना तो खाएगी, तो उससे क्या मान के चलो कोई गाय 1 साल में 1 बच्चा दे देती है, यदि वो 6 महीना लेट हो गई तो 6 महीना ना तो दूध मिला, लेकिन गाय को तो खाना खिलाना पड़ेगा, तो उससे
2: जी
0: बड़ी सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल नुकसान होता है किसान को ना।
1: तो नुकसान की अगर बात करें तो इयां को कोई जिया पशु है वो कोई किसान या चाहो भाई अपन इन बेच दें जाए दूसरा दे दें, तो या दूसरों जो कोई भाई लोग खरीदे तो वो भी थोड़ा सा सावधान भी रहे, तो कोई भी का लक्षण भी होगा डॉक्टर साहब?
0: उसका लक्षण तो यही मिलेगा जब आप किसी जानवर को खरीद रहे हो, तो उससे एक बार आप मतलब हिस्ट्री को ले सकते हो कि लास्ट इसका जो इससे पूर्व में बच्चा कब दिया था और इतने दिनों से कब आपने कृत्रिम गर्भाधान इससे पहले कब करवाया था, यदि आप उसका मालूम कर लोगे पशु चिकित्सक से जो रिकॉर्ड रहता है पशु चिकित्सालय में कि आपने कहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान करवाया, तो उस पर्ची के माध्यम से आप पता कर सकते हो कि इतनी बार कृत्रिम गर्भाधान कराया फिर भी यह 51 नहीं हो रही है, तो उस प्रकार उस चीज का ध्यान रखें खरीदने से पहले ना।
2: तो डॉक्टर साहब अब यह भी बताओ साहब, भाई राजस्थान सरकार छे, आपने सरकार इस संदर्भ में कसी कसी योजनावां चला रखी छे जिकी की अपना जो पशुपालक भाई छे वाने नुकसान भी हो छे तो वाना थोड़ा सा उनको फायदा मिल सके।
0: आजकल क्या अपनी राजस्थान सरकार ने हर जगह पे लगभग हर पंचायत समिति पे पशु चिकित्सालय पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले हुए हैं, वहाँ पे या तो पशुधन निरीक्षक या पशु चिकित्सा अधिकारी हर जगह आजकल अपन को उपलब्ध आसानी से हो जाते हैं। तो इस प्रकार की यदि कोई समस्या पशुपालक को दिख रही है जानवर के अंदर, तो वो हॉस्पिटल लेके जाए, वहाँ पे पशु पशु के लिए जो निःशुल्क आरोग्य योजना जो चल रही है इसकी भारत राजस्थान सरकार की ना, उसके तहत उनको निःशुल्क दवाइयां मिलती है, तो उसका जरूर से जरूर लाभ उठाएं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब जी पशुओं के संदर्भ में बात करा तो

0: टाइम का मायने जहाँ पशुओं के मायने को टीकाकरण की अगर मोटा मोटी रूप से
1: हाँ,
0: बात करें तो उनका क्या?
1: टीकाकरण जी, इस टाइम पे टीकाकरण अपन को जैसे कि FMD हो गया, जो खुरपका मुंहपका बीमारी सुना होगा किसान भाइयों ने, या ब्रुसेलोसिस हो गया, तो खास तौर से जो बरसात का मौसम है उसमें FMD का टीकाकरण अवश्य करवाएं। ये साल में एक बार होता है और इसको जरूर करवाना चाहिए,
2: जी।
1: खुरपका मुंहपका का टीकाकरण।
0: और अब चलता चलता कार्यक्रम को मैंने कोई ऐसी जानकारी जी कि किसान भाई तक आप पूर्ति करनी चाहो जबकि छूटगी और थाने लगे कि आ ये टाइम का मैंने बहुत ही महत्व है और जो अपनो विषय है विश्व जुड़ी है तो भाई लोग पूर्ति करनी चाहो तो
1: इस टाइम पे किसान भाइयों को सबसे जरूर ध्यान रखने की चीज़ है, जो बरसात का मौसम है, सबसे पहले तो अपने पशु का, जितने भी पशु घर में है, चाहे गाय हो, भेड़ हो, भैंस हो, बकरी हो, तो उसका पहले तो कृमिनाशक दवा, जिसको डिवॉर्मिंग बोलते हैं, उसका जरूर ध्यान रखें और उसको कृमिनाशक दवा जरूर खिलाएं। दूसरी चीज़ है कि अपने जो पशु पोषण में जो चारा दे रहे हो आप, हरा चारा या कुट्टी तूड़ा भूसा, तो उसके अंदर पशु पोषण का ध्यान रखते हुए कम से कम उसको न्यूट्रिशन जो पाउडर होता है वो जरूर उसकी डाइट के अंदर खिला सकते हो आपने। इससे क्या होगा, पशु की जो बच्चादानी है गर्भा से वो भी स्वस्थ रहेगा, उससे दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और पशुपालक की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
2: वासावार डॉक्टर साहब, कृष्णा डॉक्टर कृष्णानंद बंसल जी, आप बहुत ही बेहतर तरीका से बार बार गाय भैंस को फिरवो और उनका कारण और निवारण का बारे में बहुत ही बेहतर तरीका से बताया। आप सहायक आचार्य PVIVER और जयपुर में आप विराजे से आप कार्यक्रम में पधारा और बेहतर तरीका से किसान भाई ने जानकारी दिया, इके लिए आपको घणो घणो धन्यवाद सा।
1: धन्यवाद
2: और सा धन्यवाद स्वरूप। अब आपने सुना देवा एक लोक रचना और आपा सब भी सुना सा।
0: बिल्कुल एक मीठी सी लोक।

0: देखो सा अनिता बहन, बहुत ही मीठी सी जगी आपने राजस्थान की, देखो माटी री जगी लोक रचना है भाई, लोगों तक पूगती हुई जरूर भाई लोगों ने दाई आई इसी थानक सीख लगी।
1: भाई मैंने तो खूब दाई आई। और देखो जदी अपना राजस्थान की लोक रचना आपा कोई सुना चाहना है तो मन निशान खिल उठे छे बिल्कुल।
0: बिल्कुल। और देखो चौमासा का मायने यहाँ की लोक रचना के छप्पर पुराना पड़ गया रे, यानी पुराना टाइम का मायने जदे छान झोंपड़ा होया करता, तो बी टाइम का मायने कवि है यहाँ को गीत है जो लिखियो भाई के आपका।

0: पति देव न जगा विदेश का मैंने बसे है, बन जगी गोरड़ी है याद करता था या केवे भाई गए। देखो आपकी मन की जगी भावनाओं है भाई, कागज के मायने मांडर या आपकी भावनाओं के माध्यम से कि भाई कह कागज वे तो बाँच लूँ पर कर्म नहीं बाँचो जाए। देखो अनिता बहन वो टेम ही हो जाए चिट्ठी पत्री के माध्यम से जगह मन की भाव है वे मांडर कागज के ऊपर भेजा जाता है, बन कत्ता सहेजर लोग बाग है जगह रखा करता
1: वह मनसु लिखा जाता और मनसु पढ़िया जाता और मन पे ही मंड जाता और ऐसी छह जो मतलब वह हमेशा ही उम बने रहता। आजकल आपा एक कितना ही बात कर लिया, कितना ही मैसेज कर लिया, पर वाच जो मन की भावना चे वह आ कौन सके
0: बिल्कुल
1: जो कि पहलिया थी।
0: बिल्कुल कागज के ऊपर जो हाथ उन लिख रिया कागज जा तो बी के माने देखो हेत अपनाए तर सने जगो तो ने वो देखण जोग तोर जद गांव के माने कोई की चिट्ठी पत्री आती ने कागज ना कहता भाई फलाना को कागज आए जना कई समाचार लिखे ना अड़ोसी पड़ोसी जगह भी वे बट बेटर बाद में कोई पढ़ बाल लिख बाल हो तो भी बुला था कि अगर सगड़ा शिक्षा को तो प्रचार प्रसार हो को नहीं बनाई लिखाई ही को नहीं तो देखो पढ़ो तो वो कागज बांच तो जना देखो भी आसे पासे लोगों का नाम आता तो बेबी बन भी अलग प्रकार की राजी होता बन खुशी होती।
1: और देखो ये सब चीजा मन से जुड़ेड़ी ही, पहले को अलग ही टाइम छो आज अलग टाइम छे, पर वे छे जो चीजा छे ना वो भुलाया कौन भूले।
0: बिल्कुल भुलाया कौन भूले, देखो तकनीक को दौर है बिल्कुल आप तकनीक अपने कहना आप भी को इस्तेमाल करा तो आप आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से तकनीक ना अपन इस्तेमाल सकारात्मक तरीका से इस्तेमाल करनी चाहिए। पर बिक सके सके अनिता बहन जकी अपनी परंपरा ही पुरानी जगी संस्कार है वे अपनी जगी पीढ़ी है ने बिन भी बताना चाहिए।
1: बिल्कुल सा बताना चाहिए और जब आप अपनी पीढ़ी ने बतावाला जदी तो वह आगे बढ़ेला और संस्कार भी जो पुराना अगर अपना जो रूढ़िवाद्या चे वन भी आपन ले न चालनी चाहिए, वन आपने पीछे छोड़नी चाहिए और जो सकारात्मक चे आगे बढ़ावा लायक चे वह चीजा नहीं आपने अपनी आबा वाली पीढ़ी ने बतानी चाहिए।
0: बिल्कुल देखो सावन को मीनू चाल रही है आबा वाला टाइम को मैंने तीज को जो होते तो यहाँ महिला शक्ति है नारी शक्ति है वहां तो देखो सावन को मीनू यहाँ विशेष हुए भी मुलहरी हुए है तीज है भी का मायने तो देखो सावन महीनो सातरोर हरिया हरिया खेत ठंडो चल रहे बायरोर मुर्दर मुड़के रेत मुर्दर मुड़के रेत बालमरी याद आवे और नाचे बन में मोर मींड का गीत सुनावे कहता प्रभु कविराय तीज हिंडा मन भवन और मनड़ो करे किलोड़ बरसे झमाझम सावन।
1: बिल्कुल सावा सावा प्रभु भाई बहुत ही चोखी बात बताया आप और पूरा सावन को आनंद आप चार लेना में ही सुना दिया। पण सा अब चे जो भगत हो चालो चे कार्यक्रम को तो आज्ञा लेवा देव आज्ञा अनिता ने
0: और प्रभु दयाल ने
1: चालार करा
0: राम राम, राम सा।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर रात्रि के 8 बजने को हैं। ठीक 8 बजे से कार्यक्रम संसद की साप्ताहिक समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये तीसरा सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग तथा अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि इस दौरान कुछ अहम विधेयकों को बिना चर्चा के या संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य

0: हंगामा करने लगे। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही, जिस कारण से कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन ही 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2:10 पर ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर सभापति ने आपत्ति जताई। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा और नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखने को कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियां आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की बैठक 12 बजे शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को और संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी पहले जैसी स्थिति ही रही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग दोहरा रहे थे। हंगामा देखते हुए अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा और पारित करने के लिए बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। सदन ने हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक होते ही विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे और अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। सुबह 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा थमते न देख सभापति ने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्रवाई दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराहन 2:45 पर बैठक दोबारा शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलू उठाए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति पीएसी की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग दोहराते हुए नारे लगाने लगे। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतनराम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में यह विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार 15वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल शुरू नहीं हो सके। राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद शून्यकाल शुरू कराना चाहा। विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद सदन में हंगामा जारी रहने पर करीब 5 मिनट के भीतर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे संसद की साप्ताहिक समीक्षा। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं धुरंधर द रिवेंज फिल्म का गीत खान साहब और शाश्वत सचदेव की आवाज़ों में। नुसरत फतेह अली खान का लिखा गीत है और संगीत से सजाया है शाश्वत सचदेव ने।

फिल्म का नाम डॉन, जिसका गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलीशा चिनॉय, महालक्ष्मी और सोनू निगम की आवाज़ों में। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है, संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत क्वीन फिल्म से लब जंजुआ और सोनू कक्कर और नेहा कक्कर की आवाज़ों में यह गीत है। अन्विता दत्त का लिखा हुआ और संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है, मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर। अब से थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद समाचार प्रसारित किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, फिर उर्दू में प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश और मेरे साथ हैं प्रशांत। प्रशांत नमस्कार।
1: नमस्कार धर्मेंद्र।
0: तो स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज और एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात और शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
1: यूजीन में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों के जैवलिन थ्रो में आशीष यादव ने रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में

0: पहुंची कोलंबो में। श्रीलंका क्रिकेट 11 के साथ 3 दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 6 विकेट खोकर 357 रन बनाए। डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में ग्रुप ई में लाजुंग एफसी ने मुंबई एफसी को 5-0 से हराया और नाखोन पाथुम में एशियन पिकलबॉल जूनियर ओपन एशियन जूनियर चैंपियनशिप में भारत ने 3 मेडल जीते।
1: तो सबसे पहले चलते हैं एथलेटिक्स के मैदान पर। अमेरिका के यूजीन में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों के जेवलिन थ्रो में आशीष यादव ने रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला। आशीष ने तीसरे दौर में 74.09 मीटर का थ्रो फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: जब हौसला बुलंद हो तो हवा का रुख भी मोड़ा जा सकता है और यही साबित किया भारत के जेवलिन थ्रो की नई उम्मीद आशीष यादव ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में दबाव चरम पर था लेकिन अपने तीसरे प्रयास में 19 वर्ष के जांबाज आशीष ने ऐसा आसमानी थ्रो किया कि सभी देखते रह गए। उनके 74.09 मीटर के थ्रो ने भारत की झोली में इस साल का पहला मेडल डाल दिया।
3: Here's Yadav.
4: Into the javelin then, Yadav in sixth at the moment. He's capable of more than sixth and that has leapfrogged him up to second. Much, much more like it. 74.09 and he'll be feeling much better about that one.
2: ये सिर्फ एक सिल्वर मेडल नहीं एक बड़ी विरासत की गूंज है। इसी प्रतियोगिता में 2016 में नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक प्रदर्शन के ठीक 10 साल बाद आशीष यादव अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के पोडियम पर खड़े होने वाले दूसरे भारतीय जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं। नीरज 2016 वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर का थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक जीता था और रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक नहीं टूटा है। खुद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भी ट्वीट कर आशीष को इस बड़ी सफलता की बधाई दी। भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारतीय एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करते और जीतते देखना हमेशा एक बहुत अच्छा एहसास होता है। एक जेवलिन थ्रोअर के तौर पर यह मेरे लिए थोड़ा और खास है। अंडर 20 में आपके रजत पदक पर मुझे बहुत गर्व है आशीष। आशीष का रजत पदक जेवलिन की दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे का प्रतीक है। जेवलिन देश में सबसे तेजी से उभरता हुआ खेल है। नीरज चोपड़ा के अलावा भी कई युवा थ्रोअर इस खेल में आगे आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीत रहे हैं। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश में जेवलिन के प्रति नई जान फूंकी थी। इसके बाद पेरिस ओलंपिक में नीरज ने रजत पदक जीता। उत्तर प्रदेश और भारतीय सेना के इस युवा खिलाड़ी ने साबित कर दिया कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली उड़ान तो अभी बाकी है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: उधर धर्मेंद्र, इसी प्रतियोगिता में पुरुषों की 400 मीटर दौड़ के फाइनल में भारत के मोहम्मद अशफाक 46.20 सेकंड का समय निकालकर 8वें स्थान पर रहे। अमेरिका के जेडन डेलॉन ने 44.47 सेकंड के साथ स्वर्ण और किन्सी विल्सन ने रजत पदक जीता। महिलाओं की हाई जंप में पूजा ने 1.79 मीटर के साथ फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों की लॉन्ग जंप में शाहनवाज खान और जितिन अर्जुन ने फाइनल में जगह बना ली है। उधर महिलाओं की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में पूनम अपने क्वालिफिकेशन ग्रुप में 8वें और कुल 13वें स्थान के साथ फाइनल में जगह नहीं बना सकी।
1: जी, और अब ट्रैक एंड फील्ड से चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट की तरफ। भारत की अश्मिता चालिया कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। आज सेमीफाइनल में अश्मिता ने अपनी साथी खिलाड़ी रक्षिता रामराज को शिकस्त दी। ये रिपोर्ट सुनते हैं।
5: भारत के दो युवा खिलाड़ियों के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिली। सेमीफाइनल मुकाबले का पहला ही गेम रोमांच से भरपूर रहा। कड़े संघर्ष के बाद अश्मिता पहले गेम को 21-13 से अपने नाम करने में सफल रही। दूसरे गेम में रक्षिता ने जोरदार वापसी की और गेम को 21-16 से जीतते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे गेम में अश्मिता ने रक्षिता को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और उन्होंने गेम को 21-13 से अपने नाम करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। फाइनल मुकाबले में अश्मिता चालिहा के भिड़ंत कल चीन की हान किया नक्सी से होगा। अश्मिता के लिए यह मुकाबला कठिन हो सकता है। हालांकि इस टूर्नामेंट में उन्होंने कांटे के मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। अश्मिता ने कल जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हीना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। उधर पुरुष डबल्स में पृथ्वी के रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशिया जोड़ी के सामने पराजित हो गई। मलेशिया के

0: धर्मेंद्र, अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। दक्षिण कोरिया 18 और 19 सितंबर को भारत के खिलाफ डेविस कप टेनिस के दूसरे दौर के क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। भारत इस समय डेविस कप रैंकिंग में 19वें और कोरिया 16वें स्थान पर है। कोरिया का भारत के खिलाफ जीत हार का रिकॉर्ड 6-5 का है। इस मुकाबले के लिए टीम का चयन सोमवार को किया जाएगा। दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला 1 दशक पहले हुआ था, जब भारत ने चंडीगढ़ में एशिया ओशियाना ग्रुप 1 के मुकाबले में 4-1 से जीत दर्ज की थी। दूसरे दौर में विजय रहने वाली टीम नवंबर में होने वाले अंतिम 8 मुकाबले में जगह बनाएगी। कोरिया 2022 और 2023 में 16 टीमों के डेविस कप फाइनल में पहुंच चुका है।
1: और प्रशांत, टेनिस की ही बात को और आगे बढ़ाते हैं। मॉन्ट्रियल में कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लेला फर्नांडीज ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में रूस की मीरा आंद्रीवा को 6-1, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ ही 23वीं रैंकिंग वाली फर्नांडीज अब राउंड ऑफ 16 में पूर्व यूएस ओपन विजेता और जापान की खिलाड़ी नौमी ओसाका से भिड़ेंगी। ओसाका ने बेल्जियम की एलिस मर्टिस को 6-1, 6-4 से हराया। इसके साथ ही फर्नांडीज ने 1 साल से भी ज्यादा समय में टॉप 10 खिलाड़ी के खिलाफ अपनी पहली जीत भी दर्ज की।
0: धर्मेंद्र, चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट 11 के साथ 3 दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 6 विकेट खोकर 357 रन बना लिए हैं। मेहमान टीम मेजबान टीम की पहली पारी से सिर्फ 6 रन पीछे हैं। सुनते हैं जया भारती की रिपोर्ट।
2: टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 363 रन पर घोषित की। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार ने 2-2 विकेट लिए, जबकि गुरनूर बरार ने 1 विकेट हासिल किया। इसके जवाब में भारत को पारी की दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल के रूप में झटका लगा, यशस्वी खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने कप्तान केएल राहुल के साथ 2 विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी करते हुए भारत को संभाला। केएल राहुल 1 छक्का और 5 चौकों के साथ 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पडिक्कल ने बेहतरीन पारी खेली और शानदार शतक लगाया। पडिक्कल ने 121 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिसमें 14 चौके शामिल रहे।
3: शॉर्ट बॉल पुल्ड अवे, दैट्स द अंडरट। व्हाट अ नॉक फ्रॉम देवदत्त पडिक्कल, बैटेड ब्रिलियंटली टुडे कमिंग इनटू द टेस्ट मैच प्रैक्टिस गेम। यस, डिलीवर्ड परफेक्टली। Outstanding. It's about temperament.
2: शतक पूरा करने के तुरंत बाद देवदत्त रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि मोहम्मद सिराज के आउट होने के बाद पडिक्कल दोबारा बैटिंग करने उतरे। इस पारी में देवदत्त पडिक्कल ने 18 चौकों के साथ नाबाद 142 रन बना लिए हैं। पडिक्कल ने शतक जड़कर नंबर 3 पोजीशन के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की है। साई सुदर्शन टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, ऐसे में गोल टेस्ट मैच में पडिक्कल का भारत की ओर से नंबर 3 पर खेलना लगभग तय हो गया है। भारत की इस पारी के रविंद्र जडेजा 63 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। मानव सुथार ने 41 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। श्रीलंकाई खेमे से रमेश मेंडिस और असंका मनोज ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि विश्वा फर्नांडो और केशरा नुआनाथा 1-1 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। इस वार्म अप मैच के बाद भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मैच 15 अगस्त से गाल में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और हम आपको बताएं कि भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बी साई सुदर्शन दाएं पैर के अंगूठे में लगी चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला से बाहर हो गए। सुदर्शन को यह चोट भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे के दौरान लगी थी। भारत ए की तरफ से 2 मैच में शतक लगाने वाले सुदर्शन दूसरे मैच के दौरान चोटिल हो गए थे और तब से बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सलेंस में चोट से उबरने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। सुदर्शन की चोट पर निगरानी रख रही खेल विज्ञान टीम के अनुसार वे श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। चिकित्सकों ने उन्हें पूरी तरह फिट होने के लिए और समय देने की सलाह दी है। उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए पूरी तरह फिट नहीं है।
0: उधर भारतीय महिला टीम की प्रमुख बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिक्स सदर्न रेप की तरफ से खेलते हुए मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मौजूदा द 100 क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। इसके चलते उनका आगामी महिला 2020 एशिया कप में खेलना भी संदिग्ध है। सदर्न रेप ने आज पुष्टि की कि टूर्नामेंट के शेष मैचों के लिए जेमिमा की जगह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर चार्ली नॉट को टीम में शामिल किया गया है। और श्रोताओं, आपको बता दें कि महिला 2020 एशिया कप 28 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें भारत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा।
1: और अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इस समय ग्रुप एफ में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और कार्बी आंगलोंग

0: मॉर्निंग स्टार एफसी का मैच चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी 2-1 से आगे है। इससे पहले शिलोंग ने आज के एक अन्य मैच में ग्रुप ई मैच में मुंबई एफसी को 5-0 से करारी शिकस्त दी। सुनते हैं रिपोर्ट।
1: एवर ब्राइट संसाना के 2 गोल की मदद से शिलोंग लाजोंग एफसी ने मुंबई एफसी पर 5-0 की बड़ी जीत दर्ज की। मैच का पहला गोल अभय गुरंग ने पहले हाफ के इंजरी टाइम के पहले मिनट में किया। अभी इस झटके से मुंबई की टीम उबर भी नहीं पाई थी कि 2 मिनट बाद ही शिलोंग की तरफ से एक और जोरदार हमला हुआ। इस बार टेमिक्री लामुरोंग ने गोल कर अपनी टीम को 2-0 से आगे कर दिया। हाफ टाइम तक ये बढ़त कायम रही। हाफ टाइम के बाद मुंबई की टीम ने वापसी के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन एक बार फिर मेजबान टीम की तरफ से गोल आया। ये गोल 52वें मिनट में एवर ब्राइट संसाना ने किया। 3 गोल से पिछड़ने के बाद मुंबई की टीम के हौसले पूरी तरह से पस्त हो गए। इसका फायदा साना ने जमकर उठाया। उन्होंने 64वें मिनट में अपनी टीम के लिए 4th गोल किया। मुंबई की टीम गोल करने और मैच में वापसी के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन इरादा कामयाब नहीं हो सका। साना ने 84वें मिनट में टीम के लिए 5वां गोल करते हुए अपनी हैट्रिक पूरी की। इस जीत के साथ शिलोंग लाजोंग ने टूर्नामेंट में अपनी शानदार शुरुआत को बरकरार रखा है और अभी तक खेले गए मैचों के आधार पर वो ग्रुप ई में सबसे ऊपर है। उधर मुंबई दोनों मैच हारकर 4 टीमों के ग्रुप में सबसे नीचे है। लैंगसिंग एफसी 4 अंक के साथ दूसरे और नॉन्कसे है SS&CC 1 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन।
2: और अब बात पिकल बॉल पर। थाईलैंड के नाखोन पाथोम में एशियन पिकल बॉल जूनियर ओपन एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मेडल जीते। एशिया फेडरेशन ऑफ पिकल बॉल AFP की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में एशिया के कई उभरते हुए जूनियर पिकल बॉल खिलाड़ी अलग अलग आयु वर्गों में शामिल हुए। इस टूर्नामेंट ने युवा खिलाड़ियों को मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ खेलने, बहुमूल्य अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल करने और कॉन्टिनेंटल स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान किया। भारत के लिए मेडल जीतने की शुरुआत स्तुति और अंजलि ने की, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 18 गर्ल्स डबल्स में गोल्ड मेडल जीता। अंजलि पोल ने अंडर 18 गर्ल्स सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीतकर भारत की मेडल टैली में एक और मेडल जोड़ा, जबकि आद्या और कीर्ति ने अंडर 12 गर्ल्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। एशियन पिकल बॉल जूनियर ओपन एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2026 एशिया में जूनियर पिकल बॉल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा।
0: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल के मैदान की हर खबर के साथ आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथी प्रशांत को अनुमति दीजिए।
2: नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
3: 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
4: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा। लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को

0: परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
2: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with news at 9.
4: The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian president says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters tournament. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory, addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. Mr. Modi urged the students to keep national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
5: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है. यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है. इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है.
4: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said production has begun at India's first semiconductor unit.
5: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है. जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा. लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा. और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया.
4: यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आईआईटी दिल्ली हरीश सालवे एंड डायरेक्टर आईआईटी दिल्ली प्रोफेसर रोंगन बैनर्जी वर आल्सो प्रेजेंट इन द सेरेमनी. On the occasion, the Prime Minister inaugurated a high-performance computing facility, Param Pragya, at IIT Delhi. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has stressed the need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Addressing the Sahakar Navkranti program in Mumbai today, Mr. Shah said digital transaction frauds are on the rise and called for stronger forensic support to ensure banking safety. The National Urban Cooperative Finance and Development Corporation, NUCFDC, and the National Forensic Sciences University signed a memorandum of understanding in the presence of Mr. Shah. The Home Minister highlighted the importance of collaboration with the National Forensic Science University in tackling cyber and financial crimes.
6: Today, an agreement was signed between our umbrella organization and the National Forensic Sciences University, NFSU. Through this agreement, the umbrella organization will work to provide all these facilities at a very low cost, even to the smallest bank branches. This will cover cybersecurity, digital forensics, employee training and research. All these facilities will be made available together through a single bank in a box solution.
7: A bank in box se ho jayegi.
4: The Home Minister also launched a security operations center which will provide round the clock cyber surveillance and security support to urban cooperative banks. The government today announced a series of strategic memoranda of understanding MOUs with key industry leaders and ecosystem enablers, which are Cash Free Payments, Darwin Dynamics, Valtra India, Cars 24 and the Council for Startup India, CSI. The MOUs have been signed by the Ministry of Commerce and Industries Department for Promotion and Industry and Internal Trade, DPIIT. The Ministry of Commerce and Industry informed that the MOU signed with Cash Free Payments aims to strengthen digital infrastructure support for startups. The MOU signed with Ultra India Private Limited focuses on strengthening the technology infrastructure available to DPIIT recognized startups. Furthermore, the DPIIT has partnered with Cars 24 Services Private Limited to foster innovation, entrepreneurship and capacity building in India's mobility and automotive technology ecosystem. Meanwhile, the MOU signed with the Council for Startup India aims to strengthen support for DPIIT recognized startups by facilitating access to investment, strategic partnerships, mentorship, leadership development and global markets. India has achieved a major milestone in its clean energy journey, with the country crossing 300 gigawatts of installed non-fossil fuel-based electricity capacity. In a social media post, New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi highlighted that India's renewable energy capacity has surged by 400% over the last 12 years. Union Minister of Parliamentary Affairs Kiran Rijiju has welcomed the demand of Shiromani

0: आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के 57वें तकसीम असनाद के जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों में मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखें और अपने आप से सवाल करें कि किस तरह उनके काम से मुल्क को फ़ायदा हो सकता है और उसकी ज़रूरियात पर तवज्जो दी जा सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं और नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे शोबों का हवाला दिया और कहा कि भारत सभी शोबों में खुद कफील बनने की सिमत काम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुद किफालत की सिमत यह मुहिम एक विकसित भारत की तामीर के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर शोबे में भारत की कोशिशों का तस्करा करते हुए कहा कि भारत के पहले सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: उधर तालीम के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी IIT दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन हरीश सालवे और IIT दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बनर्जी भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने IIT दिल्ली में आला कारकर्दगी वाले कंप्यूटिंग मरकज परम प्रज्ञा का इफ्तिताह भी किया। उम्र दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों के इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफ़ुज़ात की जरूरत पर जोर दिया है। वह आज मुंबई में सहकार नव क्रांति प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि डिजिटल लेन देन के फ्रॉड के मामलात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बैंकारी सेफ्टी को यकीनी बनाने की खातिर और ज्यादा मजबूत फॉरेंसिक मदद पर जोर दिया। उन्होंने साइबर जराइम और माली उमूर से मुतालिक जराइम से निमटने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ इश्तराक की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर दाखला ने एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का आगाज भी किया जो शहरी इलाकों के इमदाद बाहमी बैंकों के लिए दिन रात साइबर निगरानी और सिक्योरिटी फराहम करेगा।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: हुकूमत ने आज अहम सनअतकारों और इको निजाम तैयार करने वालों के साथ सिलसिलेवार कलीदी मुफाहमतनामों का ऐलान किया, जिनमें कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वाल्टर इंडिया, CAS 24 और स्टार्टअप्स इंडिया काउंसिल शामिल हैं। इन मुफाहमतनामों पर तिजारत और सनत के सनती और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे ने दस्तखत किए हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने मुतला किया है कि कैश फ्री पेमेंट्स के साथ दस्तखत किए गए मुफाहमतनामे का मकसद स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करना है। डार्विन डायनामिक्स के साथ दस्तखत किया गया मुफाहमतनामा एंटरप्रेन्योरशिप की तरक्की और स्टार्टअप्स इको निज़ाम को मजबूत करेगा। वजारत ने मजीद कहा कि शराकतदारी का मकसद Tier 2 और Tier 3 और देही खित्तों में छोटे कारोबारों को फरोग देकर स्टार्टअप्स इंडिया पहल को वसत देना है। सरकार ने यह वजाहत की है कि सार्फिन के लिए UPI और एक शख्स से दूसरे शख्स के दरमियान लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صارفین کو یو پی آئی کے ذریعے رقم کی ادائیگی کرتے وقت لین دین پر کسی طرح کے چارج کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، ساتھ ہی بیشتر کاروباری لین دین پر بھی کوئی چارج عائد نہیں ہوگا۔ وزارت نے کہا ہے کہ اگر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ایم ڈی آر چارجز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کا اطلاق ایک مخصوص حد کے اوپر محدود کاروباری لین دین پر ہی ہوگا اور یہ بہت معمولی شرح ہوگی۔ وزارت نے کہا ہے کہ ادائیگی اور تصفیے کے نظام سے متعلق ایکٹ میں ترمیم ایک ایسا بندوبست ہے جس کا مقصد یو پی آئی کے طویل مدت تک پائیدار رہنے، تکنیکی پیش رفت اور ابھرتے ہوئے خطرات کے تناظر میں استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ بھارت نے اپنی ماحول کے لیے سازگار توانائی کے سلسلے میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ ملک میں نصب شدہ غیر روایتی ایندھن پر مبنی بجلی کی صلاحیت 300 گیگاواٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر نئی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر پرہلاد جوشی نے اجاگر کیا کہ بھارت کی قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں گزشتہ 12 برس میں 400% کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ غیر روایتی ایندھن پر مبنی نصب شدہ بجلی کی صلاحیت کے 300 گیگاواٹ کے سنگ میل سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ بھارت کی ماحول کے لیے سازگار توانائی کی منتقلی مقرر کردہ عالمی اہداف کے مطابق جاری ہے۔ جناب جوشی نے اجاگر کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت حکومت ایک صاف ستھرے ماحول کے لیے سازگار اور زیادہ پائیدار مستقبل تشکیل دے رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجوجو نے ملک میں خواتین ریزرویشن بل پر فوری طور سے عمل درآمد کے لیے شیرومنی اکالی دل کے مطالبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب ریجوجو نے کہا کہ سبھی کو ایک منصفانہ اور مساویانہ حد بندی کے ساتھ خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے مل کر آگے آنا چاہیے، جس میں برابر کی نمائندگی کو یقینی بنایا گیا ہو۔ شیرومنی اکالی دل نے چنڈی گڑھ میں اپنے سرکردہ رہنماؤں کی میٹنگ میں یہ مطالبہ کیا تھا۔ شیرومنی اکالی دل کے صدر سکھبیر سنگھ بادل نے کہا کہ پارٹی نے ایک ایسی منصفانہ اور مساویانہ حد بندی کی بھی مانگ کی ہے جس میں سبھی ریاستوں کے لیے برابر کی نمائندگی ہو۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے زور دے کر کہا ہے کہ شہریوں سے یہ امید رکھنے کے بجائے کہ وہ نظام انصاف کی جانب قدم بڑھائیں گے، انصاف خود شہریوں تک پہنچنا چاہیے۔ وہ آج اندور میں قانونی خدمات سے متعلق قومی اتھارٹی کی مغربی زون کی علاقائی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب سوریہ کانت نے کہا کہ انصاف تک بامقصد رسائی کا تقاضا ہے کہ قانونی ادارے ان لوگوں تک پہنچیں جو ان سے رجوع کرنے سے قاصر ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کانفرنس کے 3 اہم ستونوں مذاکرات، عظمت اور شمولیت سے مساویانہ انصاف کے آئینی وعدے کے لیے عملی معنی میسر ہوتا ہے۔
3: میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ نیائے پالیکا کو، چاہے اس میں ہمارا نیائک ادھیکاری ہے یا کوئی بھی کرمچاری ہے، میں نے آج کہا ہے کہ ہم جیسے ہاسپٹل میں ایک مریض جب جاتا ہے، ایک ہماری وہاں پر بہن نرس کے ساتھ ہمارا کوئی جو ٹیکنیشین ہے، کوئی ڈاکٹر ہیں، تو جیسے وہ ان سے ویوہار کر کے ایک مریض کے ساتھ پیار سے بات کر کے اس کی آدھی بیماری کو اس وقت جیسے اس کو انبھو ہوتا ہے کہ میں شاید ٹھیک ہو جاؤں گا، ایسی ہی بھاونا ایک ہمارے یہاں پہ نیائک مندر میں اگر کوئی آتا ہے تو اس کو یہ ہونا چاہیے کہ میرا جو ادھیکار ہے جس سے مجھے ونچت کیا گیا ہے وہ ادھیکار مجھے ملے گا۔
0: جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی، جے ایس ایس سی اور دیگر مسابقتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر طلباء کے احتجاج میں تیزی آ گئی ہے۔ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے، جبکہ ریاستی حکومت اور مختلف طلباء تنظیموں کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
4: سپریم کورٹ میں ایک عذرداری داخل کی گئی ہے جس میں 14ویں جے پی ایس سی ابتدائی امتحان کو مبینہ بے ضابطگیوں کی وجہ سے منسوخ کیے جانے اور اسے دوبارہ کرائے جانے کی درخواست کی گئی ہے۔ اس دوران جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں کئی دنوں سے احتجاج کر رہے طلبہ مسلسل اپنی مانگوں پر زور دے رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ صرف لفظی یقین دہانی کافی نہیں ہے اور یہ مظاہرہ تب تک جاری رہے گا جب تک پختہ نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ ریاستی حکومت نے مختلف طلبہ تنظیموں کے ساتھ اپنی بات چیت بھی تیز کر دی ہے۔ انہوں نے طلبہ امیدواروں، والدین اور سماجی کارکنوں سے 10 اگست کو مجوزہ اسمبلی گھیراؤ میں بڑی تعداد میں شرکت کرنے کی اپیل کی، تاہم انتظامیہ نے احتجاج کے مقام کے آس پاس سیکورٹی سخت کر دی ہے۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत के बहरी तरक्की के सफर में मल्लाहों का अहम रोल रहा है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के सरकार के अहद को दोहराया कि हर मल्लाह महफूज रहे, उसका ख्याल रखा जाए और मदद की जाए। जनाब सोनोवाल ने आज मुंबई में मल्लाहों की सिक्योरिटी तहफ्फुज़ और बहबूद के मौजू पर एक कौमी मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत मल्लाहों के ताल्लुक से दुनिया के एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर उभरा है। ईरान के सदर मसूद पजिशकियान ने मुल्क के कौमी मफादात का तहफ्फुज़ करने के लिए सफारतकारी के तई अपने मुल्क के अहद का इआदा किया है और जोर देकर कहा है कि ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जनाब पेजिश्कियान ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर एक इंटरव्यू में अमेरिका के साथ बातचीत और एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है, जिसका मकसद जंग खत्म करना है। उन्होंने कहा कि जब तक अमरीका मस्कूरा समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, ईरान भी अपने वादों पर अमल करता रहेगा। ईरान के सदर ने कहा कि अगर अमरीका अपने अहद की तकमील में नाकाम रहता है तो इस अमल को जारी रखने के लिए ईरान पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भारतीय मौसमियाती महकमे IMD ने कल उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और शुमाल मशरक के हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार जजायर में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। आज दिल्ली के हिस्सों में शदीद बारिश हुई। IMD ने कल सुबह कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई की है। असान में कल कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में भारत की अश्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की किहान से होगा। अश्मिता सेमीफाइनल में अपनी हमवतन रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21 और 21-13 से हराकर फाइनल में पहुंची हैं, जबकि किहान ने दूसरे सेमीफाइनल में जुनूबी कोरिया की जिकिम को शिकस्त दी थी। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों में इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफुजात की जरूरत उजागर की है। सरकार ने स्टार्टअप इदारों को मजीद तकवियत पहुंचाने की खातिर बड़े सनअती इदारों के साथ कलीदी मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। ईरान के सदर ने कहा है कि उनका मुल्क सिफारतकारी के तई अहदबंद है, लेकिन वो दबाव में आकर नहीं झुकेगा। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने के तनाजुर में फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और बैडमिंटन में आसान में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में अश्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की क्युहान से होगा। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: संस्कृति केवल हमारी स्मृतियों में सुरक्षित अतीत का नाम नहीं, वो उन विचारों, मूल्यों, कलाओं और अनुभवों की एक निरंतर यात्रा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए हमारे वर्तमान को अर्थ देती है और भविष्य की दिशा तय करती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और समृद्ध ज्ञान परंपरा में स्वतंत्रता का विचार भी कुछ ऐसा ही है। केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपनी परंपराओं को समझने की स्वतंत्रता। इसी विषय पर आज की पत्रिका के संपादकीय में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैचारिक धरोहर है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी एक रूढ़ी, डॉग्मा या संकीर्ण विचारधारा से बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसके मूल में स्वतंत्रता का एक ऐसा गहरा, व्यापक और बहुआयामी मूल्य निहित है जो मनुष्य को न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे आंतरिक और आध्यात्मिक धरातल पर भी परम स्वतंत्र बनाता है। आधुनिक युग में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा ध्यान राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आजादी, नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर ही अधिक जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारतीय चिंतन में स्वतंत्रता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व के चरम लक्ष्य और उसके लोक परलोक के कल्याण से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता शब्द दो पदों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र, जिसका अर्थ है अपने तंत्र या अपने नियम के अधीन होना। यहाँ स्व का अर्थ व्यक्ति की वह अंतर्निहित चेतना है जो समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जिसका लक्ष्य है वासनाओं, विकारों, अज्ञान और इंद्रियों की अधीनता से मुक्ति। इस स्वतंत्रता की सिद्धि तब होती है जब मनुष्य अपने विवेक और धर्म के अनुशासन में रहकर आचरण करता है। इसीलिए भारतीय चिंतन धारा में स्वतंत्रता का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जिसे सभी आस्तिक दर्शनों में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकारा गया है। स्वतंत्रता का यह बोध भारतीय ज्ञान परंपरा की पहचान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जहां वेदों को परम प्रमाण मानने वाली आस्तिक परंपराएं जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन हैं, तो वहीं वेदों की सत्ता को खारिज करने वाली नास्तिक परंपराएं जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन भी समानांतर रूप से हैं। विचार और अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें उपनिषदों के संवादों में भी मिलता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र माहौल में संवाद मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता में भी जब अर्जुन विषाद से घिर जाते हैं और किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, प्रकृति, कर्म और आत्मा का गहनतम ज्ञान देते हैं और पूरे 18 अध्यायों के बृहत उपदेश के बाद अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान दिया है, अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, इसका विश्लेषण करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय लेने की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक गुण है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में भी धर्म के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों से है जो समाज के विनियमन के लिए आवश्यक हैं। इसी धर्म का प्रभाव है कि भारतवर्ष में कभी भी राजा की सत्ता को निरंकुश और असीमित नहीं माना गया है। ऋग्वेद का संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम का उद्घोष सामाजिक स्वतंत्रता और समता का एक ऐसा ही प्रमाण है जो सभी को अपने साथ चलने, साथ बोलने और सभी के मनों को समान रूप से समझने के भाव पर केंद्रित है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सामूहिक चेतना के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परस्पर संवाद को कितना अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार भारत ही नहीं विश्व में समादृत रामचरितमानस के उत्तरकांड से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जहां राज्याभिषेक के बाद राम प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मुहि बर जहु भय बिसराई। जिसका अर्थ है कि वही मेरा सच्चा सेवक है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। हे भाई, यदि मैं कभी कोई अनुचित या अनीति बात कह दूं, तो तुम सारा भय भुलाकर मुझे टोक देना। अपने शुद्ध विचार को निर्भीक भाव से रखना ही भारतीय चिंतन धारा का स्वतंत्रता चिंतन

0: तो इस स्वातंत्र्य बोध की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज का व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, उसे मतदान का अधिकार है। बाजारवादी संस्कृति ने उसे अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने की असीमित आजादी भी दी है। वह समाज, प्रकृति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बिखराव जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्वार्थ सिद्धि प्रमुख है। स्व का बोध या स्वातंत्र्य बोध का विचार यहाँ दूर दूर तक नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस एकांगी स्वतंत्रता के स्थान पर एक पूरक और समग्र स्वतंत्रता मॉडल प्रस्तुत करती है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और प्रकृति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक पर्यावरण चेतना और सतत विकास का मूल मंत्र भी यही कहता है कि हमारी उपभोग की स्वतंत्रता तब तक ही न्याय संगत है जब तक वह दूसरों के अस्तित्व और प्रकृति के संतुलन को खतरे में न डाले। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता का मूल्य अत्यंत व्यापक, गहन और शाश्वत है। यह काल और भूगोल की सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करता है। विश्व को यह समझने की आवश्यकता है कि आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को यदि अधिक मानवीय, संवेदनशील, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाना है तो उन्हें स्वतंत्रता की केवल बाहरी व कानूनी अवधारणाओं तक ही सीमित रहने के बजाय भारतीय चिंतन धारा के चेतना और कर्तव्य आधारित स्वतंत्रता मूल्य को आत्मसात करना होगा।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता के मूल्य, इसी विषय पर आज के संपादकीय में अभी आपने सुना दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक को। भारतीय ज्ञान परंपरा की यही विशेषता है कि वो हमें केवल उत्तर नहीं देती, वो प्रश्न करने का साहस भी देती है, और शायद यही किसी भी जीवंत संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। साहस अज्ञानता के विरुद्ध प्रश्न करने का हो या किसी अन्याय के विरुद्ध। हमारे देश में ऐसी प्रबुद्ध और साहसी आवाजों की कमी कभी नहीं रही।

0: मंत्र वंदे मातरम तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम।
1: आज जब हम भारत की आजादी की कहानी याद करते हैं तो हमारे सामने कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े आंदोलन और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उभरती हैं। लेकिन आजादी की ये कहानी सिर्फ उन्हीं नामों की नहीं थी, ये उन अनगिनत स्त्री पुरुषों की भी कहानी थी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ही एक आवाज को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज।
2: चौदह जनवरी 1902, दक्षिण सिक्किम के संगमू गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। लेप्चा समुदाय के एक परिवार में जन्मी हेलेन उनके माता पिता की 7 संतानों में तीसरी थी। बाद में उनका परिवार कर्सियांग आ गया, वो पहाड़ी इलाका जहां चाय के बागान और शिक्षा के नए अवसर उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन हेलेन की राह आसान नहीं थी। कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, मगर पढ़ाई छूटने का अर्थ ये नहीं था कि सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला भी रुक गया। सन 1917, पहाड़ियों में चरखे और खादी का आंदोलन चल रहा था। कलकत्ता से आए एक वक्ता के भाषण ने युवा हेलेन के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तय कर लिया उनका जीवन अब देश की सेवा के लिए होगा। अगले ही वर्ष 1918 में वो कलकत्ता पहुंची, चरखा प्रशिक्षण केंद्र में सूत काटना सीखा। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें मुजफ्फरपुर बिहार में आयोजित खादी और चरखा प्रदर्शनी में कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया। फिर आया वर्ष 1920, बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में था, हजारों लोग

0: हुए थे। ऐसे समय में हेलेन लेपचा राहत कार्यों में जुट गई निस्वार्थ भाव से लगातार, और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। हेलेन की सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने उनके व्यक्तित्व और देशभक्ति को करीब से देखा। यहीं गांधी जी ने उन्हें नया नाम दिया, सावित्री देवी। लेकिन जिस आवाज में इतनी दृढ़ता हो, वो सत्ता को भला कैसे सुहाती? ब्रिटिश सरकार की निगाहें अब उन पर थी। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी से बचते हुए वो इलाहाबाद पहुंची और कुछ समय आनंद भवन में रही। वहां उनका संपर्क कांग्रेस के कई नेताओं से हुआ, लेकिन पहाड़ उन्हें पुकार रहे थे। वो वापस करसियांग लौटी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में जुट गई। घर घर जाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान, ब्रिटिश प्रशासन की पाबंदियां और उनके सामने एक दृढ़ निश्चय, वो पीछे नहीं हटी। 29 जनवरी 1922, हेलेन लेपचा गिरफ्तार कर ली गई। दार्जिलिंग सदर जेल में 3 महीने, फिर करसियांग में नजरबंदी। समय आगे बढ़ा। सन 1939 और 40, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करसियांग में नजरबंद थे। हेलेन लगातार उनके संपर्क में रही। कहा जाता है कि वो संदेश पत्रों के माध्यम से पहुंचाती थी।
1: मैं दिलीराम दुलाल, एक पत्रकार और इतिहास के विद्यार्थी।
2: कोलकाता में मोहम्मद अली पार्क में आयोजित सभा में हेलेन लेपचा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी। उन्होंने धारिया कोयला क्षेत्र के 10,000 से अधिक मजदूरों का नेतृत्व करते हुए आदिवासी श्रमिकों को शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था। उनको इसी आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। और बाद में जब उन्होंने दार्जिलिंग में अपने साथियों के साथ सदर जेल में 3 महीने तक, बाद में 3 वर्षों तक फर्शंग में जब उनको नजरबंद रखा गया था, उस समय में भी उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया था। जैसे कि 1939-40 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खारसंग में नजरबंद थे, तब उन्हें उनके साहसिक पलायन में महत्वपूर्ण सहायता की थी। बताया जाता है कि पठान की भेष तैयार करने में हेलेन लेपचा ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। उनके योगदान के कारण सिक्किम सरकार ने हाल ही में सरकारी मेडिकल कॉलेज को उनके नाम पर रखने के लिए हेलेन लेपचा मेडिकल कॉलेज निर्णय लिया है।
3: मैं सोमनाथ पांडे, सिक्किम से। मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हूं। हेलेन लेपचा के खोज में हम लोग ने सक्रियता से काम किया। उनका सभी इष्टजन थे, उनका जो मित्रों था, उनका परिवारजन था, उनसे मिलके उनका जो पेपर्स वगैरह ताम्र पत्र सब हम लोग ने निकाल के अभी पूरा ऑडियो विजुअल्स पूरा इतिहास हम लोग ने समेट लिया है। सिक्किम में 1973 से पहले उस समय में भी सिक्किम के लोग भारत के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भाग लिया करते थे, इस प्रश्न में हम लोग पूछ करते हैं। इसी दौरान में सावित्री देवी जो हेलेन लेपचा है उनका संदर्भ में हम लोग ने काम किया है। वो विशेष करके मजदूरों को इकट्ठा करना, मजदूरों को स्वावलंबी कैसे बनाना, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो बीमारियों को देखा, दवाई औषधियां किया, उसके बाद में उन्होंने स्वावलंबी बनाने का काम किया। तब ये तब वो बड़ा स्वाभिमानी, वो एक तो निडर माता के रूप में परिचित है। उनका 3 नाम है। एक तो सबसे पहले नाम उनका हेलेन लेपचा था। तो बाद में जाके ये नाम थोड़ा सा अंग्रेज का जैसा लगा, अंग्रेजी स्कूल से ये शिक्षित हुई थी, तो अंग्रेज का जैसा नाम होने के बाद में महात्मा गांधी ने उनको सावित्री देवी नाम दे दिया। तब उनका गाँव में जो खरसांग और सिक्किम में उनका नाम साइली दीदी करके परिचित था। साइली मतलब होता है नेपाली भाषा में थर्ड, तीसरा होता है। तब साइली करके थर्ड करके साइली दीदी करके ऐसा नाम उस प्रसिद्ध हुई। तो उनको ताम्र पत्र भी मिला उस समय में स्वाधीनता संग्राम के। लेकिन वो थोड़ा सा समाज में वो ओझल हो गई, क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो आगे निकल गए उनका इतिहासकारों ने समेट दिया, लेकिन जो ट्राइबल तो उन्होंने विशेष करके दुर्गम क्षेत्र में ही काम किया, तो उनका नाम थोड़ा इतिहास में थोड़ा सा पीछे रह गया था, तो अभी बहुत अच्छा से उनका नाम आगे आ रहा है। सिक्किम में तो उनका नाम से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो और उनका कई रास्ता का नाम हेलेन लेप्चा का नाम से अभी बन रहा है।
0: वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का काम जारी रखा। 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें ताम्रपत्र प्रदान किया। 18 अगस्त 1980 को हेलेन लेप्चा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है।
4: हेलेन लेप्चा, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज। अभी आपने ये लघु रूपक सुना। आलेख अंकुश रोनियार का था, वाचन स्वर प्रांजल।

स्वतंत्रता संग्राम केवल रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये घरों में लड़ी गई, विद्यालयों में लड़ी गई, लेखन और पत्रकारिता में लड़ी गई, गीतों और कविताओं में लड़ी गई। और इस संघर्ष में भारतीय महिलाओं ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों की सहायता की, तो किसी ने अपने लेखन और विचारों से राष्ट्र की चेतना को जगाया। ऐसी ही कुछ साहसी महिलाओं की स्मृति को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां। आलेख और स्वर है प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का।

0: जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन चुका है। अंग्रेजी सत्ता के सामने उनका यह संकल्प, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष प्रतीत होता है। इसी संघर्ष की एक और तेजस्वी कड़ी बेगम हजरत महल। अवध की इस वीरांगना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में विदेशी सत्ता को खुली चुनौती दी। स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाली एक सशक्त आवाज थी सरोजनी नायडू। अपनी वोजस्वी वाणी और राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से उन्होंने हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। वे मानती थी स्वतंत्र भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।
1: I believe that I must disprove the age-old proverb that the woman has the last word and the longest word. I have the last word, no doubt, not because I am a woman, but because I am acting today as the hostess of the Indian National Congress.
0: महात्मा गांधी के संघर्ष में एक मौन किंतु अत्यंत सशक्त शक्ति थी, कस्तूरबा गांधी। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सेवा के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया और जेल यात्राएं भी की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे त्याग, धैर्य, समर्पण की एक शांत धारा भी बहती है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब अधिकांश राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। उनका साहस उस दौर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जन जन तक पहुंचाने में साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान अविस्मरणीय है। वो केवल एक कवित्री ही नहीं बल्कि सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल यात्रा की और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी अमर कविता खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी ने भारतीय जनमानस में देशभक्ति और स्वाभिमान की ऐसी लौ प्रज्वलित की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। इसी आंदोलन के दौरान एक युवा महिला ने अपनी आवाज को स्वतंत्रता का हथियार बना लिया। यह थी उषा मेहता। उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर पूरे देश में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाया। जब अंग्रेजी सरकार समाचारों और सूचनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी, तब उनके साहसिक प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।
2: This is the Congress radio calling on 42.34 meter. Today we shall read to you a stupid reasoning of the CNC.
0: सुचेता किपलानी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए भूमिगत आंदोलनों को सशक्त बनाया। बाद में वे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और यह सिद्ध किया कि संघर्ष से निकला नेतृत्व राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। बंगाल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 73 वर्ष की आयु में भी वे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजों की गोलियां लगने के बाद भी उनके हाथों में तिरंगा नहीं छूटा और उनके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष निरंतर निकलता रहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व संभाला। उन्होंने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर यह स्थापित किया कि राष्ट्र रक्षा और बलिदान के क्षेत्र में स्त्रियां किसी से कम नहीं हैं।
3: नेताजी हमसे 5 घंटे बात किया, हमारे देश का और दुनिया का आधा हिस्सा को कैसे नजरअंदाज करें, यानी महिलाओं को। अगर महिलाओं को भी देश का प्रेम है, उन लोगों को आजादी का जरूरत है, इसलिए आप महिलाओं को भी हम लेने के लिए तैयार है, उनका भी एक फौज बनाएंगे।

अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं। आलेख और स्वर था प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का। इन दीपशिखाओं ने अपने समय को तो रोशन किया ही, आज भी उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर एक अकेले साहस भरे कदम से होती है। संस्कृति का संसार बहुत विस्तृत है। कभी वो करघे पर आकार लेता है, कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, और कभी उन समुदायों की स्मृतियों में जीवित रहता है जिन्होंने प्रकृति और परंपरा के साथ सह अस्तित्व की अनूठी संस्कृति रची है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय हथकरघा परंपरा और देश के बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन की उस ऐतिहासिक भावना की स्मृति से भी जुड़ा है जब 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था।

किताबें हमारी स्मृति हैं और पुस्तकालय उस स्मृति का सार्वजनिक घर। हर वर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है।

दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एसआर रंगनाथन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, और डिजिटल युग में भी वो पढ़ने, शोध और विश्वसनीय ज्ञान तक पहुंचने की संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। भारत की आदिवासी परंपराएं अपनी भाषाओं, लोक कथाओं, संगीत, नृत्य, कला और प्रकृति केंद्रित जीवन दृष्टि से बेहद समृद्ध हैं। हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। करघे के धागों में बुनी हमारी हस्तशिल्प परंपरा, पुस्तकालयों में संरक्षित ज्ञान की दुनिया और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये तीनों मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद सुंदर और समृद्ध चित्र रचते हैं। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, राम किंकर बैज, वी एस गायतोंडे, जहांगीर सभावाला, फिरोज शाह मेहता, प्रफुल्ल चंद्र रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और अभी हाल ही में दिवंगत हुए पंडित जगन्नाथ बेहरा, इन विभूतियों का स्मरण उन विचारों, कर्मों और सृजनात्मक ऊर्जा को याद करना है जिनसे हमारा सांस्कृतिक वर्तमान निर्मित हुआ। इन महान विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए

0: ये आकाशवाणी है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री शहनाई की प्रारंभिक शिक्षा श्री रंगाचारी काकंडिकी से प्राप्त की। उसके बाद श्री चन्वीर बन्नूर के मार्गदर्शन में लगातार 9 वर्ष तक शहनाई वादन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री चन्वीर बन्नूर डॉक्टर पंडित पुटराज गवाई के प्रमुख शिष्य थे। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, जैसे कि कलाश्री पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार इत्यादि। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री देश विदेश के कई प्रमुख संगीत सम्मेलन में अपना शहनाई वादन प्रस्तुत कर चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे हैं।
1: This is Akashvani. In tonight's national program of music, we bring you a Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri. Shri Girimallappa Bhajantri started his initial training in Shahnai from Shri Rangachari Kakandaki. Later, for 9 years, he was under the able guidance of Shri Channaveera Bannur, a prominent disciple of Pandit Puttaraja Gavayi of Gadag. Shri Girimallappa Bhajantri is a recipient of many awards like Kalashri Award, Karnataka Rajyotsava Award, etc. He has performed in many important music festivals of India and abroad. In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Male Mallesh Hugar Desai Kallur.
0: Shri Girimallappa Bhajantri apne karyakram ka prarambh rag Rageshri se kar rahe hain. Isme do bandishe जपताल और द्रुत तिंताल में निबद्ध है। सुनिए राग रागेश्री।
1: श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री बिगिन्स हिज शहनाई रिसाइटल विद राग रागेश्री इन विच ही इज प्रेजेंटिंग टू कंपोजिशंस सेट टू जपताल एंड द्रुत तिंताल।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग रागेश्री, आइए अब सुनते हैं राग जोग।
1: That was राग रागेश्री। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री विल नाउ प्रेजेंट राग जोग।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग जोग। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री गिरिमल्लपा भजंत्री का शहनाई वादन। आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे थे।
1: That was राग जोग। With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri, and he was accompanied on the tabla by Shri Male Malesh Hugar Desai Kallur.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
4: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
2: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

0: किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स डार्विन डायनेमिक्स, वॉल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।